ऑपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है, इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं, लेकिन जो हमने पानी पिया होता है वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है, और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन

करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह 1 केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन
और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए।

वणक्कम, नमस्कारम, सुप्रभात दोस्तों। जब पहली किरण धरती को छूती है तो सिर्फ रोशनी नहीं, एक नई उम्मीद भी लाती है। ये उजाला हमें याद दिलाता कि चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। आज की पहली किरण का विषय है वही प्रकाश, रोशनी और उजाला। चलिए आज जानें कैसे हर सभ्यता, हर धर्म और हर युग ने इस रोशनी को ईश्वर की सबसे पवित्र निशानी माना।

प्रकाश सिर्फ दिए की लौ नहीं, वो ज्ञान की वो चमक है जो अंधकार मिटा दे। ईश्वर ने हमें आंखें दी देखने के लिए, पर प्रकाश दिया समझने के लिए। ऋग्वेद में कहा गया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से उजाले की ओर ले चल। यह सिर्फ भौतिक रोशनी की नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मबोध के प्रकाश की बात है। हमारे ऋषि मुनि दीपक को दीप प्रज्वलन से जोड़ते थे, जो ये दर्शाता है कि हर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान से मिटाए।

प्रकाश ज्ञान, सत्य, दिव्यता और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। ये अज्ञानता और अंधकार को दूर करने वाली शक्ति है और अक्सर ईश्वर या चेतना के रूप में देखी जाती है, जो आंतरिक दृष्टि और दिव्य समझ से पहचानी जाती है। प्रकाश में जीना, इसका अर्थ है आनंद, जागरूकता और एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। दोस्तों, आध्यात्मिक प्रकाश के विभिन्न पहलू हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

प्रकाश को विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है, जैसे ज्ञान और सत्य। यानी प्रकाश को सत्य के रूप में देखा जाता है, जो अज्ञानता और झूठ को नष्ट करता है। ये हमें जीवन के सत्य के प्रति जागृत करता है। दूसरा है दिव्यता और ईश्वरीय उपस्थिति। ये ईश्वरीय शक्ति या चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जो कभी कभी दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ये ईश्वर और आत्मा, इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। इसके बाद बात करेंगे आत्म जागरूकता और मुक्ति की। यहाँ पे प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति में आत्मज्ञान और जागृति आती है। ये आत्मा के पुनरुत्थान और आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। किसे? हमें, हम सभी को, हम सभी जीवों को। फिर बात करेंगे मार्गदर्शन की। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्गदर्शन। कई बार होता है हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता होता है, फिर भी यदि हमें किसी गुरु का सानिध्य ना मिले, उचित मार्गदर्शन ना मिले, तो हम अपने पथ से भटक जाया करते हैं। तो प्रकाश जीवन के पथ को रोशन करने वाली एक आंतरिक शक्ति है, जो हमें गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के द्वारा मिलती है। ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।

अब हम बात करेंगे प्रकाश के उन पहलुओं पर जो कि हैं भौतिक और आध्यात्मिक संबंध और इसके अलावा एक अनुभव के रूप में प्रकाश। जिस प्रकार प्रकाश भौतिक दुनिया को देखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश हमें सूक्ष्म और अदृश्य दुनिया को देखने की क्षमता देता है। ध्यान जैसी आत्मिक क्रियाओं से ये प्रकाश जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति प्रकाश में आता है तो उसका अर्थ है कि वो दिव्य ज्ञान और सत्य के प्रति जागरूक हो गया है, जिससे उसके चरित्र में स्थायी परिवर्तन आता है। एक ही प्रकाश के विभिन्न व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये प्रकाश ही है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव प्रदान कराता है, जैसे उपचार, मार्गदर्शन या प्रेम। इन सभी में कुछ भी हो सकता है। तो हम चलते हैं उस प्रेम की ओर जो हमारे अंदर का प्रकाश हमें दिखाता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा और आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश की। चलिए आपको ले चलते हैं, कुछ धर्मों से रूबरू कराते हैं जिनमें प्रकाश का माने क्या है, यह हम आपको बताते हैं। बाइबल में लिखा है लेट देयर बी लाइट और प्रकाश हो गया। ईश्वर का पहला सृजन था लाइट यानी प्रकाश। ईसाई परंपरा में लाइट यानी लाइट ऑफ क्राइस्ट वो दिव्य शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। क्रिसमस पर जलती हुई मोमबत्तियां इस बात का संकेत है कि अंधकार में भी ईश्वर का प्रकाश सदैव साथ रहता है। कुरान शरीफ में नूर ये शब्द बार बार आता है। अल्लाहु नुरुस्मावाती वल अर्ज यानी अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। यहाँ नूर मतलब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और रहमत का प्रकाश है। इस्लाम सिखाता है कि जो दिल का साफ है उसके चेहरे पर खुदा का नूर झलकता है।

गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपु भव, यानी स्वयं दीपक बनो। बौद्ध धर्म में प्रकाश का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से मुक्ति। जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है तो करुणा, शांति और ज्ञान की रोशनी फैलती है। यहूदी धर्म में हनुक्का पर्व प्रकाश का उत्सव है। 8 दिनों तक दीप जलाने की परंपरा इस बात की याद दिलाता है कि विश्वास का प्रकाश हमेशा भय पर जीत पाता है। जब तेल सिर्फ 1 दिन का था पर वह 8 दिन तक जलता रहा, यही तो चमत्कार है प्रकाश का। यानी जब दीपक में सिर्फ 1 दिन मात्र का तेल बचा था, फिर भी वो विश्वास, प्रेम और आस्था के बल पे पूरे 8 दिन तक जलता रहा। और तभी से ये पर्व जिसका नाम है हनुक्का यहूदी धर्म में बहुत प्रचलित है।

श्रोताओं, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है एक दीपक की यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटा दीपक मंदिर में रखा था। हर रात वो मंदिर को जगमग करता, पर दिन में बुझा दिया जाता। उसे लगता कि शायद उसका कोई महत्व नहीं। दिन के उजाले में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक दिन आंधी आई, सब दीपक बुझ गए, पर उसी ने अपने छोटे से शिखा से पूरे मंदिर को फिर रोशन कर दिया। तब उसे एहसास हुआ, प्रकाश का काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सच्चे इरादे से जलना जरूरी है। और जो सच्चे इरादे से जलता है वो अपने आसपास प्रकाश कर देता है, खुद जलकर, खुद को जलाकर, और जलने के बाद वो खुद भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है।

दोस्तों, आज विज्ञान ने हमें बिजली, लेजर, सोलर एनर्जी दी। ये सब आधुनिक प्रकाश हैं, पर असली रोशनी तो तब होगी जब मानवता, सहानुभूति और प्रेम का उजाला हमारे दिलों में फैलेगा। स्मार्टफोन की स्क्रीन चमक सकती है, पर दिल की रोशनी वही जलाएगा जो दूसरे के दुख में भी मुस्कुराए। हर धर्म, हर युग, हर इंसान का मकसद एक ही रहा, अंधकार मिटाना, चाहे वो बाहर का हो या भीतर का। पहली किरण हमें यही सिखाती है कि हर सुबह एक नई रोशनी है और हम सब उस ईश्वर के अंश हैं जो प्रकाश के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है।

श्रोताओं अब बात करेंगे प्राचीन काल की। प्राचीन काल में प्रकाश को क्या माना जाता था? प्राचीन काल में प्रकाश ईश्वर का स्वरूप और ज्ञान का प्रतीक था। प्राचीन भारतीय सभ्यता में प्रकाश को परम सत्य का प्रतीक भी माना गया। वेदों में कहा गया, तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। यहाँ अंधकार का अर्थ अज्ञान, भ्रम और मोह से है, जबकि प्रकाश का अर्थ ज्ञान, आत्मबोध और सत्य की अनुभूति से है। दीपक जलाना केवल कर्म नहीं था, उस वक्त आत्मा के जागरण का प्रतीक था। सूर्य को साक्षी और ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना गया। उपनिषदों में कहा गया, ना ही सूर्य तप्ति तेन तस्य तेजः, अर्थात आत्मा की ज्योति सूर्य से भी महान है। इस प्रकार प्राचीन काल में प्रकाश ब्रह्म यानी सत्य की अभिव्यक्ति करता था।

बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल में प्रकाश भक्ति और प्रेम की रोशनी था। मध्यकाल भक्ति आंदोलन का युग था। आप चाहे हिंदी में चले जाएं, इतिहास उठा के देख लें या फिर अंग्रेजी लिटरेचर की बात कर लें, सभी में भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था। कबीर, तुलसी, नानक, मीरा, रूमी आदि संतों ने कहा कि सच्चा प्रकाश हृदय में है, मंदिरों या दियों में नहीं। कबीर कहते हैं, मन के भीतर जो दीप जले वही असली ज्योति है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सूरज एको रुति अनेक, यानी प्रकाश एक ही है पर रूप अनेक हैं। सूफी मत में नूरे इलाही, यानी ईश्वर का प्रकाश, वे आत्मा में बसते हैं जो सच्चे प्रेम और इबादत से छलकता है। यानी मध्यकाल में प्रकाश का अर्थ है भक्ति, प्रेम और आत्मा की एकता का प्रतीक, जो कहीं ना कहीं आज भी हम अपने मन में टटोलते हुए पाए जाते हैं।

अब बात करेंगे आधुनिक काल में प्रकाश की, जो हमारा आज का युग है। आज के युग में प्रकाश चेतना, मानवता और आत्म जागरूकता की ऊर्जा की बात करता है। आज का युग यानी तकनीक और ज्ञान का युग, पर सच्चा उजाला वही है जो मन और समाज को प्रकाशित करे। आधुनिक आध्यात्म कहता है, आउटर लाइट ब्रिंग्स कंफर्ट बट इनर लाइट ब्रिंग्स क्लैरिटी। यहाँ प्रकाश का अर्थ है सकारात्मक सोच, मानवता का उजाला और आत्म चेतना। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम अपने भीतर की रोशनी को जलाएं, तो बाहरी अंधकार हमें कभी छू भी नहीं सकती। यानी आधुनिक काल में प्रकाश मानवता, आत्म जागरूकता और करुणा का प्रतीक है।

तो श्रोताओं, प्राचीन काल में प्रकाश ज्ञान था, मध्य काल में प्रेम बना और आधुनिक काल में वो मानवता बन गया। युग बदलते गए पर ईश्वर का उजाला कभी नहीं बदला और ये प्रकाश यूं ही निरंतर चलता रहेगा, जलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ में, पहली किरण के साथ में। अपने मन की पहली किरण को और ऊर्जावान करें, उसमें और आँच भरें और अपने मन को प्रकाशमान करें। मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज। जय जिनेंद्र। रब रखा। राधे राधे।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक का अर्जुन नान. आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्तरी 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन. और भाई साहब आज है थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल शो विद योर मॉर्निंग जॉक का अर्जुन नान. और आज काफ़ी सारी बातें हैं जो हम आपसे कहने आए हैं, साझा करने आए हैं, और खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन अपने संग लेकर के आए हैं आपके थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल शो में. सो चलिए पहले इस गाने को सुन लेते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद बताते हैं कि भाई साहब आखिर क्या कुछ है आज के

0: सुबह ही गुलाबी आंखें देखी हो या ना देखी हो, लेकिन अभी हम जो आपको दिखाने उर्फ बताने वाले हैं आज का मॉर्निंग टॉक, वो ज़रूर आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो अब ज़रूर आप देख लेने वाले हैं। सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और अब आइए आपको सीधे ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

सो आज का थॉट इतना ज्यादा खूबसूरत है कि जब आपको लगेगा कि आप समझ गए तो डेफिनेटली आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि यार ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल आज का थॉट कहता है, आज का विचार कहता है कि एक ही विचार कितनी बार आपको दुख पहुंचा सकता है। ये सवाल है, एक ही विचार आपको कितनी बार दुख पहुंचा सकता है। इसका जवाब है, जब तक आप इसे सच मानते रहेंगे तब तक। एक ही विचार आपको कितनी बार दुख पहुंचा सकता है, जब तक आप इसे सच मानते रहेंगे तब तक। अब आप देखिए, जिस विचार से आपको तकलीफ होती है सोच सोच के, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या कहीं ये ऐसा तो नहीं था, या कुछ वैसा तो नहीं था, जितनी बार आप उस थॉट को, उस विचार को सच मानते हैं, उतनी बार आप तकलीफ का एहसास करते हैं, उसको महसूस करते हैं। और ये किसी वक्त को लेकर हो सकता हो, लाइफ में कभी कुछ ऐसा वक्त निकला हो, हो सकता हो अभी आप किसी को लेकर के प्रिटेंड कर रहे हैं, किसी को लेकर के सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आने का सोच रहे हैं करंट सिनेरियो को देखते हुए, और उसे सच मान रहे हैं। सो वो थॉट जिसको आप मानते हैं कि ये सच है, ये सच हो सकता है, तब तक के लिए वो आपको तकलीफ, आपको दुख पहुंचाता रहेगा। कोई भी चीज़ आप किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और उसके बाद आपको तकलीफ़ हो रही है, तो उसको भी अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो किसी न किसी सच से, यानी सच जो माना हुआ है उससे ही जुड़ा हुआ मिलेगा। और यही चीज़ सामने आएगी कि हाँ, आपको तकलीफ़ जो है कुछ ऐसे थॉट्स दे रहे हैं जिनको आप सच मान रहे हैं। सो अगर आप देखिए और ज़रा सोचिए गौर से, तो आपको आपकी लाइफ में ऐसे कई सारे पल, ऐसी कई सिचुएशंस, ऐसे कई सारे लोग मिलने वाले हैं। एंड यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट कहता है कि एक ही विचार कितनी बार आपको दुख पहुंचा सकता है। आंसर है, जब तक आप इसे सच मानते रहेंगे तब तक। अब कब तक मानते रहेंगे और कब तक पहुंचता रहेगा, मतलब जब तक मांगते रहेंगे, मानते रहेंगे, तब तक तो पहुंचता ही रहेगा, ये बात तो फैक्ट है। अब ये थॉट आपने किस तरह से समझा है, ये आपकी लाइफ में किस तरह से फिट हो रहा है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, इस पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है इसकी समझ। आई होप कि ये थॉट आप तक कन्वे हो गया है और आप भी अब इस पर विचार विमर्श करने लगे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल करिए। और ज़रा देखिए कि कौन कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जो किसी विचार के सच होने से आपने उसको जोड़ा था।

0: हाँ जी, लव जू। और फिलहाल गुड मॉर्निंग जू जू जू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन। और आइए चलिए, कुछ मैसेजेस आ गए हैं आपकी तरफ से चैट बॉक्स पर, लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुबह की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो ये दिन शुरू हो गया है, आज दिन है थर्सडे का और तारीख है 25 जून। देखते ही देखते नानी के घर जा कर के बिताए जाने वाला महीना और कहा जाने वाला छुट्टियों का महीना जून भी अब ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। इसी कड़ी में आइए, अब कुछ मैसेजेस आ गए हैं आपके चैट बॉक्स पर, यानी वो लोग जो सुनते हैं 89.6 एफएम को उसकी एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके। उसी चैट पर आपके कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं। क्या मैसेजेस आए हैं और आपने क्या कुछ लिखा है, आपको बताते हैं आपके ही मॉर्निंग स्पेशल शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो भाई कुछ मैसेजेस में प्रीति जी का मैसेज आया हुआ है और आपने लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, गुड मॉर्निंग, वेरी लवली मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। पूर्णिमा भी लिखती हैं गुड गुड गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे आप? 3 बार गुड बोला है एंड 3 ऑफ कोर्स इट्स माई लकी नंबर, सो थैंक यू सो मच टू यू पूर्णिमा। एंड यस ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया है, बहुत गजब के हैं, मज़ेदार हैं और गर्मी का मज़ा ले रहे हैं। इसके बाद प्रीति जी लिखती हैं ऑसम थॉट, जिस विचार से हमें कष्ट मिले उसे ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चिंतन मनन से ही स्वयं को हानि उठानी पड़ती है। अब इतनी सुबह सुबह हानि जैसा भारी भरकम शब्द आप क्यों उठाएंगे, इसीलिए आप उसको मत उठाइए और आप उठाइए अपने पास रखी हुई प्यारी सी स्माइल को, बस उसको ग्रहण कर लेना है और शुरू हो जाना है बाकी के कामों में। सो भाई दिन बहुत अच्छा है, शुरुआत बहुत अच्छी है और आने के बाद आपको बताने वाले हैं कि सिटी अपडेट्स में आज आपके लिए क्या है जो आप तक पहुंचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा से आप तक सीधे, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM। अब बढ़ रहा है पारा 89.6 FM के खुमार का।

तो फिलहाल गोंडा में भी 42 इंस्टीट्यूशंस को पावर कॉर्पोरेशन ने दे दिया है नोटिस। जी हाँ, सो लखनऊ के कोचिंग संस्थान में जो आग लगी थी उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखा जा रहा है और पावर कॉर्पोरेशन ने सख्ती बढ़ा दी है। फिलहाल जो भी एक्सेप्टेड लोडेड है उससे ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वाले कोचिंग सेंटर्स, स्कूल, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर संस्थान और जो बाकी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं अब पावर कॉर्पोरेशन की रडार पर हैं। सो देवी पाटन जोन में ऐसे 42 कंज्यूमर्स को नोटिस जारी करके 7 वर्किंग डेज के अंदर विद्युत सुरक्षा निदेशालय से NOC लेने और ज़रूरत के हिसाब से विद्युत का लोड बढ़ाने के निर्देश जो हैं वो फिलहाल दे दिए गए हैं। क्योंकि हम सभी को पता है एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसके बारे में जितना ज़्यादा सोचो उतना ज़्यादा अफसोस होता है। सो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल पावर कॉर्पोरेशन ने 42 इंस्टीट्यूशंस को जो है वो नोटिस थमा दी है ताकि उनके पास NOC होनी चाहिए। सो पावर कॉर्पोरेशन ने जांच में पाया है कि कई सारे ऐसे एजुकेशनल और ऐसे व्यवसायिक संस्थान हैं जो एक्सेप्टेड भार से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि उनके पास विद्युत सुरक्षा संबंधी ज़रूरी प्रमाण पत्र भी अवेलेबल नहीं है। सो विभाग ने स्पष्ट किया है कि NOC के बिना ज़्यादा भार का इस्तेमाल नियमों के विरुद्ध है और इसी तरह से नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है। सो फिलहाल 5 लाइब्रेरी बंद करने के आदेश भी DIOS की तरफ से दे दिए गए हैं। DIOS ने बताया कि कटरा बाज़ार में संचालित जो लाइब्रेरी है सुपर स्टडी सेंटर उसका निरीक्षण किया, पाया गया कि साल 2019 का रजिस्ट्रेशन था जो कि कालातीत हो गया था। सेंटर में कोई अग्निशमन यंत्र नहीं मिला, इस पर संचालक सूबेदार को तत्काल लाइब्रेरी बंद करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही NCM लाइब्रेरी और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, PCM कोचिंग सेंटर बंद मिला, ज्ञानधारा लाइब्रेरी में 2 कमरों में 8 बच्चे मिले, वहीं शहर के गुरु नानक चौक के पास में एक लाइब्रेरी में भी गड़बड़ी मिली जिस पर संबंधित को तत्काल संस्थान बंद करने का आदेश दे दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर मॉक ड्रिल कराया गया कि अगर आग लगती है तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स कैसे खुद को बचाएंगे। सो कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से सिखाया गया क्योंकि शहीद आज़म सरदार भगत सिंह कॉलेज के सामने संचालित एक कोचिंग सेंटर में इसका अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित की और सायरन बजते ही स्टूडेंट्स को बिना घबराहट के जो निर्धारित निकास मार्ग है उससे बाहर निकलने का कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कराया गया है और इस तरह से ही अब जो है वो मॉक ड्रिल करा करके उनको आगाह किया जा रहा है। इसके अलावा आपको अब हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो है मेडिकल कॉलेज से। सो मेडिकल कॉलेज से जो संबद्ध है ज़िला हॉस्पिटल इसकी कोविड बिल्डिंग में मंगलवार को स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के जो नव निर्मित प्रसव विंग और वार्ड का लोकार्पण किया गया है। सो फिलहाल जिलाधिकारी जी ने बताया है और विदेश राज्य मंत्री के प्रतिनिधि ने बताया कि इसका फीता काटकर शुभारंभ कर दिया गया है। साथ ही साथ मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। इससे जो सुरक्षित प्रसव है उसको बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को बेहतर उपचार की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। सो जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये प्रसव विंग मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई दिशा देगा। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन से मरीजों को संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसके अलावा आपको बता दें कि मंडल की 77 परियोजनाओं के लिए 39,80,00,000 रुपए मिले हुए हैं। सुशासन ने मंडल के चारों जिलों में चल रही 77 सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 39,80,00,000 रुपए की जो धनराशि है वो जारी की है और बजट मिलने से धनाभाव की वजह से प्रभावित जो निर्माण कार्य था उसमें तेज़ी आने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के हिसाब से जारी जो धनराशि है उससे गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर की कई सारी सड़कों को परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। विभागीय आंकड़ों के अगर माने तो गोंडा की 20,
बहराइच की 27, श्रावस्ती की 28 और बलरामपुर ज़िले की 2 परियोजनाओं के लिए बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा गोंडा में जिन प्रमुख परियोजनाओं को धनराशि मिली है उसमें वजीरगंज क्षेत्र के टिकरी मार्ग से पाठकपुरवा संपर्क मार्ग, अकोहरी से छोटी कॉलोनी होते हुए वंशीपुरवा से संपर्क मार्ग, कूड़ासन पेरा निहारा राजगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, रेनुआ दौलतपुर ग्रांट अल्लीपुर मार्ग और महुली खेरी काली मंदिर से प्रधान डी होते हुए इमलिया गांव तक जो सड़क निर्माण है उसका काम इसमें शामिल है। इसके अलावा नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र में बढ़ईपुरवा से रामस्वरूपुरवा जूनियर हाई स्कूल तक सड़क निर्माण के लिए बजट आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर पर हुई समीक्षा के बाद सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। अधिशासी अभियंताओं को परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं, जिसके चलते इस तरह से इसमें निर्माण कार्य में तेजी की बात बताई गई है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। 25 कॉलेजेस के 2,559 विद्यार्थियों ने परीक्षा भी दी है और इसके अलावा जनसुनवाई को लेकर के निर्माण कार्यों तक की आयुक्त ने जो है वो जनसुनवाई के दौरान समीक्षा भी की है। सो ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो कि गोंडा अपडेट्स से थी और आई होप कि आपको मिल गई हैं। अब फिलहाल हम चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि अगला म्यूज़िकल ब्रेक आपका इंतज़ार कर रहा है बहुत ही शिद्दत के साथ में। सुबह इस वक्त 9:32 हो गए हैं आपके 89.6 FM के स्टूडियो में और आरजे अदनान लाइव हैं आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी, एक बार वापस से आपका मॉर्निंग वाले शो में वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजेदनान। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। क्या आपको पता है नाइन्थ फेल से फेमस कहानीकार तक का सफ़र आखिर किसका रहा? क्या आपने इनकी मूवीज़ नहीं देखी? क्या आप इनकी कहानी को नहीं जानते? बेशक आपने मूवी देखी हो या ना देखी हो, लेकिन इनके गाने सुने होंगे और इनकी कहानियों के बारे में तो डेफिनेटली आप अवेयर होंगे।

नाइन्थ में फेल हुआ बच्चा बना एक बेमिसाल कहानीकार। तो आप सोच रहे हैं कि आखिर हम किसके बारे में बता रहे हैं। दरअसल हम बता रहे हैं इम्तियाज अली के बारे में, वही रॉक स्टार वाले इम्तियाज अली। झारखंड के जमशेदपुर में जन्मे एक साधारण से लड़के जिसको पढ़ाई में आसान नहीं लगता था कुछ भी। किताबें खोलते ही इनका भी मन जैसे आपका और मेरा भाग जाता था, वैसा ही इनका भी था। सो जब स्कूल में पहली बार फेल हुए तो इनको शर्मिंदगी हुई और दो दिन तक गेट से ही वापस लौट गए। यानी फेल होने के बाद जो शर्मिंदगी हुई उसकी वजह से ये दो दिन तक स्कूल के गेट से ही लौट गए। डर था कि भाई लोग हंसेंगे, जैसा कि सभी को होता है। सो यही शर्मिंदगी एक सवाल बनी इन्हीं के जहन में कि मुझे समझ क्यों नहीं आता है। यह सवाल था इम्तियाज अली का अपने ही मन में खुद से पूछने का। फिर क्या था, खुद को बदला, खुद से मुश्किल सवाल किए, धीरे धीरे दिखावा छोड़ करके समझना शुरू किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे यानी डीयू, और जो बच्चा कभी फेल हुआ था उसने वहां पर टॉप किया। पर असली खिंचाव इन्हें मिला कहानियों से। कई नुक्कड़ नाटक, कई कहानियां, स्टेज शोज लिखे और किए भी। सो कहानियां उन्हें मुंबई तक ले आई, यानी दिल्ली से मुंबई तक का सफर जो किया वो कहानियों ने किया। टीवी से शुरुआत की, इसके बाद फिर बारी आई इनकी फिल्मों की जो लोगों को लगी खुद किसी कहानी। सो लोग इन किरदारों में खुद को ढूंढने लगे। जी हाँ, अब जैसे जब वी मेट आपने देखा है, जाहिर सी बात है गीत एक ऐसी लड़की है जिसकी कहानी में कई सारी लड़कियां जो मूवीज देखती हैं वो खुद को पाती हैं। इसके अलावा रॉकस्टार, यस, नादान परिंदे घर आ जा। सो कहीं ना कहीं रॉकस्टार के रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर था उसको लोगों ने महसूस किया। तमाशा के रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर था वो लोगों ने महसूस किया। हाईवे की जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर था उसको भी लोगों ने महसूस किया। और अपनी इन्हीं फिल्मों से इम्तियाज अली ने बताया कि कभी कभी खुद को पाने के लिए खो जाना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में आप फेल होते हैं, आप फैसले गलत लेते हैं या आपके फैसले गलत होते हैं, पर जब लगे कि आपकी कहानी की एंड

सही नहीं है तो फिर एंडिंग सही नहीं है। तो कोई नई बात नहीं है, कहानी अपनी ही है और एंडिंग आप चेंज कर लेंगे। सो क्या आपने इम्तियाज़ अली खान की कोई ऐसी फिल्मों से ख़ुद को महसूस किया है? सो अगर आपने भी इनकी किसी मूवी से ख़ुद को महसूस किया है तो बता सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, जब वी मेट आपने देखा होगा, तमाशा आपने सुना होगा, हाईवे आप सुने होंगे, रॉकस्टार के कई गाने आज भी आप सुनते हैं, और इनकी ऐसी कई सारी मूवीज़ हैं जिनमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आम इंसान ख़ुद को उनमें पाता है, उस स्ट्रगल को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस कामयाबी की बात को, उस सुकून को, उस अपनी ख़ुद की पहचान को जो हर कोई ढूंढ रहा है वो पाता है। सो इम्तियाज़ अली की शायद कोई ऐसी मूवी हो जिसको कभी आपने देखा हो और आपको लगा हो कि भाई ये कहानी तो कुछ कुछ अपने जैसी है, एंड डेफिनेटली लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, अगर आपने भी कोई कहानी इनकी मूवी की देखी है तो ज़रूर लग सकता है, क्योंकि ऐसी कई सारी मूवी इनकी आई है जिसमें आपने अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा है और एक से एक लाजवाब कैरेक्टर्स, मतलब सभी कैरेक्टर्स अपनी अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसमें ज़रूर पाएंगे कि भाई इनकी कहानियों के जो कैरेक्टर्स हैं वो आम एक जो शख्स होता है उसकी लाइफ से कितना ज़्यादा मिलता है। लिटरली अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक आम इंसान की लाइफ से कितना ज़्यादा वो कैरेक्टर्स मिलते हैं, और यही वो बात है जो इनको अलग बनाती है। फ़िलहाल आइए इन्हीं की मूवी रॉकस्टार का एक ऐसा गाना जो आपके अंदर न सिर्फ जोश भरता है बल्कि कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन जो अलग अलग तरह से आपके अंदर भरी हुई है, जो आपकी चीज़ों को भरने का काम करती है, लेकिन कभी ना कभी आप अंदर से जाग रहे होते हैं और वो चीज़ आपको बुला रही होती है, कुछ ऐसी ही बेचैनी इस गाने में आपको नज़र आने वाली है। रॉकस्टार मूवी का ये सॉन्ग है, एंड कैसा लगा आप हमको ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन कौन सी ऐसी इनकी मूवी की कहानी है जिसके कैरेक्टर से आप ख़ुद को जोड़ते हैं? कुछ तो होगा, एंड डेफिनेटली होगा। फ़िलहाल मुझे लगता है कि इस गाने को सुन लेने के बाद अंदर एक जो टीस है वो शायद कुछ हद तक ज़रूर बाहर आ जाए। फ़िलहाल आइए इस गाने को सुनते हैं।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर

0: पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे नाना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल व्हाट्सएप यूज़र आप भी हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं सुना तो चलिए आपको व्हाट्सएप से जुड़ी एक नहीं दो दो बड़ी खबरें बताते हैं जिसको आप जानने वाले हैं। एक को तो हम ये बताने वाले हैं कि भाई शीर्ष नेतृत्व एक इंडियन अप कर रहे हैं, और दूसरा कि एक नया फीचर ऐड हो रहा है व्हाट्सएप में, क्या है आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

व्हाट्सएप का जो ग्रुप है मेटा, सो मेटा ने क्रेड सह संस्थापक पर ऑफ कोर्स भरोसा जताया और कुणाल शाह जो बने हैं ये बने हैं सह संस्थापक। सो भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड को 0 से 3,250 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व तक पहुंचाने वाले सह संस्थापक कुणाल शाह के को मेटा ने व्हाट्सएप का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। सो पूरी दुनिया के टेक और बिजनेस जगत में एक बात आई कि आखिर ऐसा क्यों है। हालांकि बहुत सारे इसके पीछे वजह भी बताई गई है और मार्क ज़करबर्ग ने बताया कि मेटा के सर्वे सर्वा मार्क ज़करबर्ग ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर कुणाल शाह की तारीफ करते हुए इस फैसले की वजह खुद साफ की। कहा कि कुणाल ने क्रेड को भारत की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक बनाया है। उनके पास क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं वैश्विक दृष्टिकोण को लेकर के जो समझ है वो बहुत ही और आसान बनाने वाली है। सो इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि व्हाट्सएप का नया फीचर ऐड हो रहा है और इस नए फीचर में क्या होने वाला है ख़ास, क्योंकि हम सभी लगभग लोग जो है वो व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं और हमको पता होना चाहिए कि भाई क्या नया फीचर आ रहा है। सो व्हाट्सएप जल्द ही ऐसा फीचर ला सकता है जिससे कि यूज़र्स बिना चैट खोले ही जान सकेंगे कि कौन कौन ऑनलाइन है। जी हाँ, सो रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉन्टैक्ट की जो प्रोफाइल फ़ोटो है उस पर हरा डॉट दिखाई देगा जो उसकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बताएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए नए बैकअप मैनेजमेंट फीचर की भी सेटिंग कर रहा है जिससे पुराने बैकअप को मैनेज और स्टोरेज को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। फ़िलहाल ये फीचर जो है टेस्टिंग के फेज़ में बताया जा रहा है और अभी सभी यूज़र्स के लिए फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, इस पर काम चल रहा है, लेकिन जल्द ही ये ग्रीन डॉट वाला फीचर ऐड होने वाला है और साथ ही साथ ऐड होगा एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बैकअप मैनेजमेंट की फैसिलिटी। यानी अभी भी हम जब कभी फ़ोन चेंज करते हैं तो सबसे बड़ा जो कंसर्न, जो चिंता होती है कि भाई व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस और सारे वीडियोस हमको एज इट इज़ मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। कई बार आप ऑप्शन में नो कर देते हैं या चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ से भी जो है वो बदलाव आता है और कई बार उतना अप्रोप्रिएट बैकअप हो नहीं पाता है। सो इसी को देखते हुए, इसके मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं व्हाट्सएप जो है वो इन फीचर्स को ला रहा है ताकि एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बैकअप लेना और भी ज़्यादा इजी हो जाए। एंड आई होप कि ये फीचर्स भी आपके काफ़ी काम के होने वाले हैं क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के यूज़र ज़रूर हैं और आप भी सोचते हैं कि हाँ ये बात सच है कि अगर ये फीचर्स ऐड होते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है और स्पेशली बैकअप लेते वक्त तो भाई साहब बहुत जान जाती है कि सारा का सारा बैकअप आ जाए। बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं हमारे पास। हाँ,

0: ताजा कर ले, लेकिन बस टीवी चालू मत करना।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो अगर अभी तक बैंक आपको डार्क पैटर्न में ले लेते थे और इससे आप फंस जाते थे, तो फिलहाल अब ऐसा रोकने की कोशिश की गई है जी। ऐसा कहना है RBI का, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सो आइए पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर ये डार्क पैटर्न क्या है और किस तरह से हम बैंक में इस मामले को लेकर के फंस जाते थे। लेट्स गो।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो भाई क्या है डार्क पैटर्न, पहले आइए इसको हम बताते हैं। दरअसल कंपनियों की ऐसी डिजिटल चाल जिससे यूज़र्स के फैसले प्रभावित होते हैं, पहली बात ये होता है डार्क पैटर्न। दूसरा होता है कि कस्टमर ना चाहते हुए भी उनकी सेवा लेने या ख़रीदने को मजबूर हो जाता है। सो ये दो पॉइंट्स हैं इस बात को समझने के लिए कि डार्क पैटर्न क्या है। पहली बात, कंपनियों की ऐसी डिजिटल चाल जिससे यूज़र के फैसले जो हैं वो प्रभावित होते हैं, एंड दूसरा, कस्टमर ना चाहते हुए भी उनकी सेवा या ख़रीदने को तैयार हो जाता है, मजबूर होता है। सो इस पर रोक आखिर क्यों ज़रूरी हुई? सो भ्रामक डिजिटल तरीकों पर रोक लगाने के लिए इसको रोका गया। दूसरा, ग्राहकों को साफ और सही ऑप्शन देने के लिए। तीसरा, बैंक ऐप और वेबसाइट पर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। सो डार्क पैटर्न जिन पर लगी है रोक क्या है? वो अभी ले ऑफर ख़त्म होने वाला है जैसे मैसेजेस तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाते हैं। दूसरा, बिन बताए एक्स्ट्रा सर्विस जोड़ना जैसे लोन के साथ इंश्योरेंस या फिर दूसरी फैसिलिटी।

तीसरा, नहीं मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए जैसे विकल्प देकर के ग्राहकों को शर्मिंदा करके मनाना। चौथा, पॉपअप बंद करने का भी ऑफर, पेज खोलना या गैर ज़रूरी परमिशन मांगना। पांचवा है, क्रेडिट कार्ड्स या सर्विस लेने में आसानी, कैंसिल करने में लंबा प्रोसेस। सो ये सारी चीज़ें जो है वो रोक लगानी थी। डार्क पैटर्न और कौन सी है, छठी है कि एक्सेप्ट को बड़ा दिखाना और डिक्लाइन को छिपाना, और अकाउंट बंद करने या डेटा हटाने का विकल्प जो है वो छिपाना। इसके अलावा कम ब्याज को ऑफर दिखाकर बाद में ज़्यादा चार्ज लेना, शुरुआत में पूरी लागत नहीं बताना, बाद में प्रोसेसिंग फीस जोड़ना, विज्ञापन को ज़रूरी सूचना की तरह दिखाना, मना करने के बाद भी बार बार ऑफर, परमिशन या फिर रिव्यू मांगना, भ्रमित करने वाले विकल्पों को गलत फैसले करवाना, जैसे कि अगर आप ऑफर नहीं चाहते तो इस बॉक्स को अनचेक करें, क्या आप डेटा शेयरिंग बंद नहीं करना चाहते। इस तरह से जो है वो डार्क पैटर्न पर रोक लगाने की बात कही गई है। सो नए साल से डिजिटल नियम आ रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे ये नए नियम। नए डिजिटल हथकंडे भी नियमों में जुड़ेंगे। बैंकों को ऐप और वेबसाइट की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन दिखे तो पहले बैंक में शिकायत करें, समाधान नहीं मिले तो RBI क्या अपना अलग से इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये है भाई डार्क पैटर्न जिन पर रोक लगी है, और आपको बताया कि किस तरह से जो भ्रामक जानकारियां हैं या जल्दी फैसला ले लेते हैं, कराने की कोशिश करते हैं, इस तरह के मैसेजेस को रोकने की बात RBI ने की है कि भाई बैंक के साइड से ऐसी कोई भी भ्रामक जानकारी ना हो। कई बार ऐसा होता भी है कि हाँ लोन लेने वाले ले लेते हैं और बाद में उनको बताया जाता है कि इस पे इतना नहीं, ये इन चीज़ों के भी चार्जेस जुड़ेंगे, जबकि जब शख्स लोन ले रहा होता है तो नहीं बताते हैं। या फिर इसके तरह से जैसे क्रेडिट कार्ड का ही देख लें, वैसे तो फ्री बताते हैं बट जो उसके टैक्सेस लगते हैं, जो उसके चार्जेस लगते हैं, जो उसके मेंटेनेंस का होता है, इस तरह से कई सारी चीज़ों की जानकारी हमको नहीं होती है और सीधे हमको वो अवेल करा दिया जाता है और बाद में हमको उसे बेयर करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ट्रांसपेरेंसी तो वैसे भी होनी चाहिए भाई कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में जा रहा है, कितना जा रहा है और क्यों जा रहा है, इसका जो पता है वो आपको होना ही चाहिए, तभी हम इसको ट्रांसपेरेंट मान पाएंगे। एंड आई होप कि आप भी इसको, इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आज के वक्त में, डिजिटल युग में, व्हाट्सएप पर बैंकिंग के कई सारे मैसेजेस या SMS के ज़रिए इवन कॉल भी आती है। सो ये सही जो बताया है हमने, वो सारी जानकारियाँ, वो सारी बातें उसमें कही जाती हैं, जिसकी वजह से लोग उसका शिकार भी हो जाते हैं। एंड आई होप कि अब आप भी डार्क पैटर्न को समझ गए हैं और बदल रहे नए नियमों को लेकर के आपके जहन में भी कई बातें होंगी। सो अच्छी बात है, अगर डार्क पैटर्न इसको रोका जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और साथ ही साथ कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को पता हो कि भाई उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, राइट?

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: भाई ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये करने वाले हैं इमरान हाशमी। जी हाँ, एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जिनकी कई सारी मूवीज आपने देखा है और भाई कई लोगों के रोल मॉडल भी है इवन। एंड फिलहाल इमरान हाशमी इस बार कुछ नया ला रहे हैं। जब जमाना लाइट से चकाचौंध से और मूवीज देख देख करके और रात के 2 बजे सो करके और इस तरह से सारी ज़िंदगी पलट गई है, उसी ज़माने में इमरान हाशमी जो है वो अब डराने आ रहे हैं। नहीं, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मतलब अब देखते हो शायद डरा ही ले जाए पाए।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

सो भाई इमरान हाशमी जो हैं वो अब डराने की कोशिश करने वाले हैं, तो ज़रा रात में दरवाजे वगैरह बंद करके आराम से सोइएगा। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो बहुत अच्छा है दिन है, अभी तो आरजे अदनान का मॉर्निंग शो चल रहा है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल अब आपको बता दें कि इमरान हाशमी जो है वो 5 साल बाद, यानी एक चुनाव का जो वक्त होता है पूरा 5 साल बाद, एक बार फिर से हॉरर जो जॉनर की मूवी है उसमें नज़र आने वाले हैं इमरान हाशमी। और इस बार इनकी नई फिल्म रूह, जी हाँ नाम ही देखिए कितना गजब का है, रूह, क्या बात है, रूह ना निकाल ले बस इतना डर है, रूह जो है वो आ रही है। और ये हॉरर मूवी जो है इसकी मंगलवार को जो निर्माता हैं यानी प्रोड्यूसर्स ने इसका पहला लुक भी जारी किया है और साथ ही फिल्म रिलीज़ की भी जानकारी दे दी गई है। सो वीडियो में क्या बोला है, सो 52 सेकेंड के टीज़र में देखा जा सकता है कि जंगल में एक रहस्यमयी लड़की है और इसके बाद एक धुंधला सा शीशा दिखता है जिसमें इमरान हाशमी का चेहरा नज़र आता है। सो देखते ही देखते इमरान की आंखें काली हो जाती है और आखिर में टाइटल रूह लिखा नज़र आता है। सो कब ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपको इंतज़ार है भाई साहब? अभी इतनी जल्दी तो नहीं होगी, जी हाँ। सो आप जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इस पूरे साल यानी 6 महीने के बाद 2027 में ये मूवी रिलीज़ होगी। लेकिन ये मूवी जो रिलीज़ हो रही है वो ना सिर्फ हिंदी में बल्कि तमिल, तेलुगु और कई जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें इसको रिलीज़ किया जा रहा है।

डरी है क्योंकि 5 महीने का बड़ा लंबा इंतजार है भाई साहब, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। सो 2027 में ये मूवी रिलीज होने वाली है, कब होगी डेट का तो अभी कोई पता नहीं, लेकिन हाँ साल जरूर बता दिया गया है कि फिलहाल फिल्म की शूटिंग जारी है और चलती रहेगी। 2027 में इसको रिलीज किया जाएगा। फिल्म का नाम है रूह और मेन कैरेक्टर होंगे इमरान हाशमी।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके

0: बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं, क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं।
10: रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: तारीख याद है या भूल गए थे? वैसे आज है 25 जून, जी हाँ। बट 25 जून का इतिहास तो हालांकि मैं नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ, आज के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ ज़रूर था जो बन गया स्वर्णिम अक्षरों में आज का इतिहास। क्या हुआ था 25 जून को? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको बस इतना हिंट देने वाले हैं कि यह क्रिकेट जगत में आज का इतिहास बना था। सो 25 जून को आज का क्या इतिहास बना था, अगर आप समझ रहे हैं तो बताइए, वरना हम तो आपको बताने ही वाले हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो आज का दिन जो है वो क्रिकेट इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि आज एक हिस्ट्री बनी थी। और क्या थी वो हिस्ट्री? जाहिर है आपको नहीं पता है या आप याद नहीं कर पाए, तो खैर कोई बात नहीं, हम आपको बताने वाले हैं कि आज 25 जून को आखिर हुआ क्या था। सो आपको हम बता दें कि भाई लॉर्ड्स के मैदान पर दो बार की वर्ल्ड चैंपियन और अजय माने जाने वाली वेस्टइंडीज़ का सामना कर रही थी एक ऐसी भारतीय टीम जिससे दुनिया को ज़्यादा उम्मीदें उस वक्त नहीं थी, और इस टीम की कमान संभाल रहे थे कपिल देव। जी हाँ, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे लगा होगा कि भारत ये मुकाबला जीत पाएगा। मैच एक तरफा ही माना जा रहा था। अक्सर ऐसे मैचेस हमने देखे हैं जो लगता है अरे यार इसमें कुछ नहीं हो सकता, बस एक ही तरफा एक टीम को हम बोल देते हैं यही जीतने वाली है, राइट। ऐसे ही कुछ उस वक्त भारत का हाल था। वेस्ट इंडीज़ हमेशा जीतती थी और माना गया कि इस बार भी वेस्ट इंडीज़ ही जीतने वाली, भारत से उम्मीदें किसी को भी नहीं थी इस तरह से। लेकिन कई बार जो होता है उसका हम लॉजिक भी नहीं दे पाते हैं, कई बार नामुमकिन लगने वाली चीज़ भी हमारी आंखों के सामने हो जाती है, और ऐसा ही हुआ इस मामले में भी। सो भारत की टीम सिर्फ 183 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज़ के लिए लक्ष्य बहुत ही मतलब नॉमिनल सा था, लेकिन फिर शुरू हुआ असली मुकाबला। मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ और बाकी भारतीय गेंदबाजों ने विव रिचर्ड्स और क्लाइड लाइड जैसे दिग्गजों को पवेलियन भेज करके मैच ही पलट दिया। सो अब हर बॉल पर मैदान गूंजने लगा था। मेहनत तो दोनों टीम के हर खिलाड़ी ने की थी, लेकिन टीम इंडिया का जज्बा देखते ही उस वक्त बन रहा था, और मुकाबले में अब हर एक विकेट हर रन अहम हो चुका था। सो भारत ने जब आखिरी कैच पकड़ा तब उसको एक पल में करोड़ों सपने उजागर हो उठे। भारत ने वो कर दिखाया था जिसकी किसी ने इवन कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया की सबसे मजबूत टीम को हरा कर अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था क्रिकेट के लिए, दर्शकों के लिए और भारत के आत्मविश्वास के लिए। सो भारत ने उस दिन ये साबित कर दिया कि अंडरडॉग से चैंपियन बनने का सफ़र जो है वो मुमकिन है। सो कहीं ना कहीं इसीलिए आज का ये दिन बहुत ख़ास है, और ये दिन था 25 जून 1983। अब ज़रा सोचिए, इतने साल पहले जब कपिल देव कप्तानी कर रहे थे, टीम इंडिया को लीड कर रहे थे, और अजय माने जाने वाली यानी कभी ना हारने वाली वेस्टइंडीज़ उस मुकाबले में हार गई थी, और ऐसा कर दिखाया था टीम इंडिया ने। सो ये कड़ा मुकाबला था और ज़बरदस्त मुकाबला था, एंड इसी में कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने दिखाया कि टीम इंडिया में कितना फ्लेवर है, कितना क्लेवर है। और कहते हैं ना कि जब आप कुछ चीज़ों को लेकर के ठान लेते हैं तो चीज़ें डेफिनेटली हो ही जाती हैं। मतलब आप ये जान लें कि अगर आपने कुछ चीज़ों को ठान लिया है तो कई बार कहते हैं ना कि उसका लॉजिक भी नहीं दे सकते, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में वो हो ही जानी हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जो सिचुएशंस होती हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आता है उसको देखते हुए। फिलहाल आज जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं, एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हम उनका देख पा रहे हैं। इस एज में वैभव ने जो कमाल कर दिखाया है वो लिटरली काबिले तारीफ है, और कह नहीं सकते कि भाई ये आगे फ्यूचर कहां तक जाने वाला है। और जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है ये भी साल जो है टीम इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से एक स्टेप और आगे हम जा रहे हैं। ऐसे कई नए खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, और अब ये बहुत सारा टैलेंट हम सभी को देखने को मिलने वाला है हमारे आगामी मैचेस में। सो ऑफकोर्स अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं या फिर स्पोर्ट्स लवर हैं तो आप ऐसे मैचेस बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाला है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन टीम की। तो फिलहाल आइए अब सीधे चलते हैं, चूँकि कुछ ही देर बाद चलने का वक्त हो चलेगा। उससे पहले आपके कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, उन मैसेजेस की तरफ चलते हैं और क्या कुछ लिखा है ये बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमने मैसेजेस पढ़े थे उसके बाद का है। आशु मिश्र जी लखनऊ से हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ ही लिखती, बिल्कुल सही है सर जी, जहां बच्चे सुरक्षित नहीं हैं
बिल्कुल ये सब बंद हो जाना चाहिए। ओके, मनीष शर्मा मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। उस्मान खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुकेश यादव हैं गोंडा से, गुड मॉर्निंग सर, दिल से गुड मॉर्निंग टू यू। प्रबल मिश्र हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नयन जी ने लिखा है, आरजे अदनान सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। मुस्तफ़ा हैं सऊदी से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। सविता दुबे जी सुप्रभात लिखती हैं और साथ ही कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी एक पन्ना जुड़ गया है और आज उन पे बहुत सारी मुसीबत ज़रूर आई हुई है कुछ उनके पर्सनल इश्यूज़ को लेकर के, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी हैं और बल्कि एक कदम आगे बढ़ी हैं। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं और जब भी आप बात करती हैं, कोई बात ऐसी होती है तो हमेशा हम कहते हैं आप हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और आज भी आपने वही साबित कर दिया है। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। लवली सिंह मौजूद है अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है। नागेश्वर हैं मध्य प्रदेश से, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद नरेंद्र जी आ चुके हैं बलरामपुर से, काफ़ी वक्त के बाद गोंडा FM पर हमारी चैट बॉक्स में मुलाकात हो रही है। गुड मॉर्निंग डियर सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। डर के आगे जीत बताया है कमल नयन जी ने, बिल्कुल बेशक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का और जाते जाते ये ज़बरदस्त आपके रगों में खून का दौरान बढ़ा देने वाला गाना आपके लिए पेश करते हैं और फिलहाल कल वापस से मुलाकात होगी फ्राइडे स्पेशल शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए गोंडा FM 89.6 FM, यही तो है गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अरे सुना?
2: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
10: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
7: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
11: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
12: सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त जया और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना शो गांव की गूंज। आज हमारी पूरी टीम यानी मैं, समता दी, गीता दी और किरण दी खड़े हैं पंजाब की उस पावन धरती पर, जहां हर सांस में मेहनत की खुशबू है और हवाओं में घी, गुड़ और प्यार की मिठास खुली हुई है। यहाँ की मिट्टी जैसे हर आने वालों को अपने पन से गले लगा लेती है।
13: बिल्कुल सही कहा जया, जैसे ही हमारी गाड़ी ने इस खूबसूरत गांव नूरपुर कला की सीमा को छुआ, खिड़की से बाहर का नजारा देखकर तो मैं तो जैसे कुछ पल के लिए खो ही गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने पूरे खेतों पर पीले रंग की सुनहरी चादर बिछा दी हो। दूर दूर तक लहलहाती सरसों, उनके बीच से गुजरती हुई हवा और वो हल्की सी मिट्टी की खुशबू दिल को एक अजीब सी शांति दे रही थी।
14: और सिर्फ खेत ही नहीं समता, यहाँ के लोग भी उतने ही रंगीन और दिलदार हैं। रास्ते में हमें जो भी मिला, हर किसी ने मुस्कुराकर जी आया नू कहकर हमारा स्वागत किया। ऐसा अपनापन शहरों में कहाँ देखने को मिलता है। और गीता दी, आपने देखा वो बुजुर्ग बाबा जी जो बरगद के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे हुए हैं, देखिए कैसे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं।
15: हाँ किरण, मैंने उन्हें बहुत गौर से देखा। उनकी सफेद दाढ़ी, रंग बिरंगी पगड़ी और चेहरे की झुर्रियों में छिपी वो गहरी मुस्कान, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर पूरे जीवन की कहानियाँ लिखी हूँ। जब हम उनके पास से गुजरे तो उन्होंने धीमे से कहा, पुत्र खुश रहो, रब रखा। उस एक आशीर्वाद में इतना स्नेह था कि मेरा तो दिल भर गया।
16: सच में यही तो है असली पंजाब, जहाँ खेतों में हरियाली है, दिलों में सादगी है और हर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। यहाँ की हर गली, हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे कोई कहानी कह रहा है।
13: और जया, क्या तुमने गौर किया, दूर से ढोल की हल्की हल्की आवाज भी आ रही है। लगता है गांव में कहीं और छोटा सा जश्न भी चल रहा है, शायद फसल की खुशी या फिर कोई पारिवारिक समारोह हो सकता है। यहाँ तो हर छोटी बात भी उत्सव बन जाती है।
14: और हाँ, वो देखो उधर खेतों में काम करते किसान, उनके चेहरे पर थकान तो है लेकिन उससे कहीं ज्यादा संतोष और गर्व है। ये वही लोग हैं जो अपनी मेहनत से हमारे देश का पेट भरते हैं। सच में इनकी जिंदगी एक प्रेरणा है।
15: और इन खेतों के बीच से गुजरती हुई कच्ची पगडंडी को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अपने अंदर किसी सादगी भरी दुनिया में घसीट कर ले जा रही हो। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ हर पल जैसे ठहर कर जीने का मन करता है।
16: तो आइए आज हम आपको इस खूबसूरत गांव नुपुरपुर कला की सैर कराएंगे, यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे और उनकी खुशियों और संघर्षों को महसूस करेंगे।
13: और साथ ही जानेंगे कि इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो हर दिल को छू जाता है।
14: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक दिल को छू लेने वाला सफर।
15: और गांव की गलियों से खेतों की खुशबू तक
16: और इंसानियत की सबसे सच्ची आवाज के साथ
11: स्वागत है आपका गांव की गूंज में।

0: अरे वाह, इस मधुर संगीत ने तो जैसे पूरे माहौल में जान डाल दी है। ढोलक की थाप और हवा में घुली सरसों की खुशबू, दिल अपने आप ही झूमने लगता है। और इस वक्त हम खड़े हैं कहाँ? गुरु नाम सिंह जी के विशाल खेत में। और चारों तरफ नजर दौड़ाइए, जहाँ तक आंख जाए बस हरियाली ही हरियाली है। सच कहूँ, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसे पंजाब का अन्न भंडार भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल किरण दी, और देखो ना, इस मिट्टी का रंग भी कितना गहरा और समृद्ध है, जैसे इसमें वर्षों की मेहनत, परंपरा और प्रकृति का आशीर्वाद मिला हो। गीता दीदी, आप तो हमेशा बारीकियों पर ध्यान देती हो, आपको यहाँ की खेती में सबसे खास क्या लगा?
2: यहाँ आकर सबसे ज्यादा जो चीज दिल को छूती है वो है परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम। एक तरफ पुराने समय के वो कुएं जिनमें कभी बैलों के सहारे पानी निकाला जाता था, उनकी यादें आज भी जिंदा हैं, और दूसरी तरफ आज की किसान ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और सोलर पंप जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: अरे वाह, मैंने गौर किया कि यहाँ के खेतों में जो पानी है उसकी एक बूंद भी बेकार नहीं जाती। हर चीज को इतने व्यवस्थित तरीके से किया जाता है कि प्रकृति का सम्मान भी बना रहे और फसल भी अच्छी हो।
2: बिल्कुल, यहाँ का किसान अब सिर्फ हवा चलाने वाला ही नहीं रहा, बल्कि वो एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति बन चुका है। उसे पता है कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, कितनी खाद देनी है और पानी का सही उपयोग कैसे करना है। यही वजह है ना कि यहाँ की जमीन हर साल सोना उगलती है।
3: पंजाब को पांच नदियों की धरती भी कहा जाता है, और उन्हीं नदियों के आशीर्वाद इन खेतों में साफ दिखाई देते हैं। वो देखिए, वो सामने बहती नहर चांदी की लकीर जैसी चमक रही है।
1: सच में जया, ये नहरें ही तो इस गांव की जीवन रेखा है। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही इन खेतों में पानी बहता है, और पानी ही तो जीवन है, फसलों का भी और किसानों का भी। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ खेती सिर्फ एक काम की नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये खेत उनकी पहचान हो।
0: अभी मैंने गुरनाम सिंह जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि पुत्र, ये जमीन हमारी माँ है, हम इसे जितना प्यार देते हैं ये हमें उससे कई गुना वापस देती है। सुनकर सच में दिल भर आया।
2: और यही रिश्ता इस मिट्टी को इतना खास बनाता है, यार मेहनत और विश्वास का रिश्ता।
3: तो दोस्तों, इस हरियाली, इस मेहनत और इस अनमोल मिट्टी को सलाम करते हुए चलिए इस ताजी हवा और खेतों की खुशबू के बीच सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: भी इसी तरह छू जाए जैसे हमें ये नजारा छू रहा है।
0: बने रहिए हमारे साथ,
2: क्योंकि सफर अभी जारी है गाँव की गूंज के साथ।

0: अब हम गांव के अंदरूनी हिस्से में हैं और सच कहूं तो यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यहां के घर ओहो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मजबूत, भव्य और किसी भी अकेलेपन से ये बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, जहां रंग बिरंगी पीढ़ियां छोटी कुर्सियां जैसे सजी हुई हों।
1: बिल्कुल समता और जया, तुमने एक बात और नोटिस की है, यहाँ के घरों की दीवारें सिर्फ सीमेंट की ही नहीं है बल्कि उन पर हाथों की मेहनत और कला की छाप है। मिट्टी के लेप से बने खूबसूरत पैटर्न, रंगों से कई चित्रकारी, औरतें इससे चौक पूरना कहती हैं। हर डिजाइन जैसे कोई कहानी कह रहा हो, खुशी की, त्योहारों की और परंपराओं की।
2: हाँ किरण, और ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। मालूम है, मैं एक घर के अंदर गई और वहाँ जाके देखा, फर्श इतना साफ कि जैसे अभी अभी धोकर चमकाया गया हो, बर्तन एकदम करीने से सजे हुए चमकदार, हर चीज अपनी जगह चकाचक।
0: बिल्कुल, और खास बात ये है कि ये सफाई सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उतनी ही दिखाई देती है। मैंने ध्यान दिया, किसी भी घर के सामने कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं पड़ा है, हर गली साफ, हर मोड़ साफ सुथरा, जैसे पूरा गांव मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो।
1: और ये सब सिर्फ औरतों का काम नहीं है, यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबर मेहनत करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी खेतों में, कभी घर की देखभाल, कभी पशुओं की सेवा, हर काम दोनों समान मिलकर करते हैं।
2: और हाँ, मैंने एक घर में और देखा, चाची जी रसोई में तंदूर पर रोटियां बना रही थी और उनके साथ ही चाचा जी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और पशुओं को चारा भी दे रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान थी लेकिन उससे ज्यादा कहीं संतोष झलक रहा था।
0: और ये जो मेहनत है ना, यही इस मिट्टी की असली ताकत है। यूं ही नहीं कहा जाता है, पंजाबियों के हाथों में सोना होता है। ये लोग जहाँ भी मेहनत करते हैं वहाँ समृद्धि अपने आप चली आती है,
3: सच में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हैं। ना सिर्फ अपने घर को साफ रखते हैं बल्कि अपनी जगह को भी उतना ही महत्व देते हैं। पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पानी की बचत करना और गांव को स्वच्छ बनाए रखना, ये सब इनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है।
1: और देखो देखो, हर घर के बाहर छोटे छोटे गमले भी रखे हैं, कहीं तुलसी का पौधा, कहीं गेंदे का फूल, कहीं गुलाब, जैसे हर घर अपनी खुशबू से पूरे गांव को महका रहा हो।
2: देखो आंगन के उस कोने में वो जो बड़ा सा एक मिट्टी का तंदूर रखा है ना, उसकी तो बात ही अलग है। अभी अभी एक चाची जी ने हमें गरम गरम रोटी सेक कर खिलाई, जिस पर सफेद मक्खन इतना ज्यादा लगा हुआ था कि सच में रोटी का वजन संभालना मुश्किल हो रहा था।
0: और उस रोटी में सिर्फ स्वाद ही नहीं था, उसमें उनके हाथों की मेहनत और दिल का प्यार भी मिला हुआ था।
3: यही तो है पंजाब का असली दिल, मेहनत, सादगी, सफाई और ढेर सारा प्यार। यहाँ हर घर एक कहानी है और हर आंगन एक एहसास है
1: और हर इंसान एक मिसाल है मेहनत और जागरूकता की।
2: तो चलिए इस खूबसूरत जीवन शैली और इन सच्चे लोगों को दिल से सलाम करते हैं
3: और इस सादगी और प्रेम को समर्पित करता हुआ अब हमारा अगला गीत।

0: और इस समय हम लोग गांव के केंद्र यानी सांझी चौपाल पर हैं। और सच कहूं, यहां आकर ऐसा लगता है जैसे गांव की धड़कन यही बसती हो। इस विशाल बरगद के पेड़ को देखिए, इसकी जड़ों में जैसे वर्षों की कहानियां समाई हुई हैं। इसी छांव में बैठकर गांव के बड़े बुजुर्ग फैसले लेते हैं और शाम होते ही यही जगह हंसी और ठहाकों और किस्सों से गूंज उठती है।
1: बिल्कुल गीता दीदी, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा 4-5 बुजुर्ग एक साथ बैठे थे। कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कोई अपनी पुरानी यादें सुना रहा था। एक बाबा जी कह रहे थे कि पहले के जमाने में फैसले भी दिल से होते थे और रिश्ते भी। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो आजकल कम ही देखने को मिलती है।
2: और यहाँ बड़े ही नहीं, यहाँ बच्चे भी चौपाल के आसपास खेलते नजर आ रहे हैं। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह चौपाल हर उम्र के बच्चों को जोड़ने का काम करता है।
3: सही कहा समता दी, ये चौपाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है, जहाँ हर समस्या का हल, हर खुशी का जश्न और हर दुखी का सहारा है।
0: और हाँ, इसी चौपाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खास परंपरा है, सांझा चूल्हा। किरण, तुमने तो इसके बारे में सुना ही है ना?
1: हाँ गीता दी, और मैंने आज खुद भी देखा। कुछ घरों में आज भी लोग मिलजुल कर एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं। कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बेल रहा है और कोई बच्चों को खाना परोस रहा है। वहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनता बल्कि रिश्ते पकते हैं।
2: सच में, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ सुख दुख में कोई अकेला नहीं होता है। अगर किसी के घर कोई परेशानी आ जाए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है, और अगर खुशी का माहौल हो तो पूरा गांव एक साथ जश्न मनाता है।
3: यही तो है असली एकता, जहाँ मैं से ज्यादा हम की

0: नहीं जाता ना।
1: हेलो
2: हो कैसे खेलन जइबो सावन माँ कजेरिया बदरिया घेरिया इलना नदी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से, और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में, रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: द बेस्ट गिफ्ट फॉर पापा मम्मी, सारेगामा कारवां।

0: गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। बिल्कुल भाई, जिंदगी एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी भी हाथ से छूटने नहीं देनी चाहिए। भाई जिंदगी का आनंद हर वक्त उठाना चाहिए, कि जो जा रहा है ना अभी, वो समय नहीं है, वो हमारी जिंदगी है। और आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव। और आप सब बैठ के यही सोच रहे होंगे कि आज ज्ञानश्री लाइव में ऐसा लग रहा है किसी की शादी हो रही है। जी हाँ, आज शादी तो हो रही है लेकिन ज्ञानश्री लाइव में नहीं, कहीं और। जी हाँ, आज बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल शुरू हो गया है। क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज है दिन थर्सडे, और थर्सडे के दिन हम बात करते हैं बॉलीवुड की खबर की और चटपटी गॉसिप की, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी और मेरा भी मन था कि भाई आप सभी के लिए बॉलीवुड की खबरें ज़रूर लाई जाएँ। वैसे ही इसी रिवाज को फॉलो करते हुए आज भी मैं कुछ गॉसिप लाई हूँ, कुछ न्यूज़ लाई हूँ जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। देखिए भाई, हमारे बॉलीवुड में ना दो लोगों का बहुत ज़्यादा राज चलता है, वो है केके। जी हाँ, केके। अब केके सिंगर नहीं, केके यानी कि कपूर्स एंड खान्स। भाई देखिए, या तो खान जो होगा वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर होंगे या एक्ट्रेस होंगे, या तो कपूर होंगे, तो उनका भी भाई दबदबा बहुत चलता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में दबदबा चलता है ना, वैसे ही बॉलीवुड में भी बहुत दबदबा चलता है। और ज़्यादातर एक्टर जो है वो कपूर होते हैं या तो खान से होते हैं। तो भाई देखिए, कपूर परिवार के लिए एक बहुत बड़ी टाइम शुरू हो गई है। जी हाँ, अंशुला कपूर, जिसको आप जानते होंगे भाई, कपूर खानदान की बेटी, अंशुला कपूर की शादी की तारीख पक्की होते ही सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। शादी से पहले की तस्वीरें, घर के रिचुअल्स और पूरा कपूर परिवार एक जगह, ये सब एक साथ इतना वायरल हुआ कि कोई भी बॉलीवुड खबर इस हफ्ते अपना जगह नहीं बना पाई। फैंस का जवाब बहुत ही जोर का था, सब लोग कई सारी विशेस दे रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में, और हर जगह ये खबर सबसे ऊपर रही। ये सिर्फ एक शादी ही नहीं है, बल्कि पूरे कपूर परिवार के लिए एक फेस्टिवल बन के रह गई। और सभी जो भी कपूर परिवार के फैन हैं, खान्स के फैन हैं, उनको इस शादी की तस्वीरों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी हो रहा है। अब बात करते हैं हम भाई कॉकटेल की। जी हाँ, देखिए कॉकटेल पीना तो बहुत नहीं चाहिए, कॉकटेल नहीं पीनी है, कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, कोई भी ड्रग्स नहीं लेना है, क्योंकि हम भारत को ड्रग्स मुक्त बना रहे हैं। लेकिन कॉकटेल पीने से ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉकटेल देखें। जी हाँ, कॉकटेल 2, जो कि कॉकटेल 1 का ही एक दूसरा रीमेक है, जिसमें स्टोरी तो भाई बड़ी ही धमाकेदार है। हम सभी जानते हैं कि भाई जेंजीज को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि इनको किसी रिलेशनशिप का मतलब नहीं पता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जनरेशन है। लेकिन भाई इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस फिल्म में जो बातें की गई हैं, जो एक नए नज़रिए से जेंजीज के रिलेशनशिप एंगल को दिखाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। सुंदर दिखने वाली फिल्म, आज के ज़माने का प्यार का एंगल और बड़े कलाकार, ये तीनों चीज़ें लोगों को सिनेमा हॉल तक खींच ले जा रही है। कोई बुरा इंसान नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस हैं, जज्बात हैं। यही इसका खास हिस्सा रहा, जो लोग देखकर अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई अगर आपको रिलेशनशिप समझनी है, इमोशन समझना है, फीलिंग समझनी है, तो आप ज़रूर जाएं। और ये मूवी देख के लोगों का रिव्यू बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि भाई जेंजीज को जो इतना ट्रोल किया जाता है ना, इसको लेकर के कई सेलिब्रिटीज़ भी स्टैंड ले रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में रिलेशनशिप में बहुत अंतर आ चुका है। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं बल्कि एक्ट्रेस की है, वो कौन है उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इनके हम स्टेटमेंट बता देते हैं कि भाई इन्होंने कहा है कि पहले क्या होता था कि एक ही से प्यार होता था, उसी से शादी होती थी। अब वो इंसान उनके साथ सही कर रहा है, गलत कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक और वही। लेकिन अब क्या हो गया कि इंसान अपने लिए स्टैंड लेने लग गया, हर चीज़ों में फ़र्क जानता है, और सही का चुनाव करने के लिए वो अपने डिसीजन को बदलता रहता है, और सही के लिए वो कई सारे टाइम तक वेट भी करता है। ये उन्होंने फ़र्क बताया, किसने बताया उस पर हम बात करेंगे। लेकिन भाई ये दो खबरों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक पे जा रहे हैं और आपको छोड़ जा रहे हैं कॉकटेल 2 मूवी की एक बहुत ही बेहतरीन गाने के साथ, जो कि आजकल इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग भी है।
1: प्यार में बिलीव करती हूँ, बस प्यार में बनने में बिलीव नहीं करती। जो जब तक है तब तक

I will not give you that मौको. अभी तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको.

0: यार ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार, दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
2: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम ज्ञानसी लाइव। और अभी आप इंजॉय कर रहे थे टाइटल ट्रैक है जवानी तो इश्क होना है मूवी से, जिसमें एक स्क्रीनिंग हुई है हमारे आपके दोनों के चहेते हमारे वरुण धवन जी की, जिन पे कॉमेडी भाई ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्यारे लिसनर कमल नैन जी, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आयुषी मैम। गुड आफ्टरनून कमल नैन जी, आई होप आप आज का शो इंजॉय कर रहे होंगे और ट्रेंडिंग चीज़ों से भी रूबरू हो रहे होंगे। चलते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ, जो कि है इसी मूवी से जिसका टाइटल है जवानी तो इश्क होना है। भाई वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मुनराल ठाकुर की ये फिल्म परिवार के साथ देखने के लिए बिल्कुल सही है। कहानी थोड़ी सी सीधी है लेकिन मज़ेदार है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं कहीं ये परिवार के साथ देखने वाली है या नहीं है, कहीं हमारे बगल में माँ बाप बैठे हो कुछ ऐसा सीन आ जाए तो कहीं वहीं थप्पड़ ना पड़ जाए कि बेटा ये तुम क्या देख रहे हो। लेकिन भाई अगर आप अपने माँ बाप को लेके जाना क्या सोच रहे हैं तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तीन बड़े नाम एक साथ होने पर लोगों का मन और भी ज़्यादा इससे लगा हुआ है। ये फिल्म की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है और खूब सारा एंटरटेनमेंट है। फिल्म ने जो वादा किया था कि भाई एंटरटेनमेंट से इसे भर देंगे, बिल्कुल अपने वादे पर ये खरे उतरे। उसके बाद हम बात करते हैं भाई बंदर की। जी हाँ, देखिए आजकल बंदर का आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है, लेकिन हम उस बंदर की बात नहीं करेंगे, हम आज बंदर मूवी की बात करेंगे। जी हाँ, देखिए बॉबी देओल की ये फिल्म आम बॉलीवुड से बिल्कुल अलग है। माहौल गहरा है और थोड़ी डरावनी है, जो देखने वालों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन भाई ये आपको पूरी मूवी देखने पर मजबूर कर देगी। आप इसको बिना देखे रह ही नहीं पाएंगे अगर सिर्फ आपने इसका ट्रेलर ही देख लिया। एनिमल के बाद बॉबी देओल की से ऐसी मूवी की उम्मीद थी और बंदर ने उस उम्मीद पर पूरी खरी उतरी है। अच्छी और बहुत ही ज़्यादा अलग मूवी है और फिलहाल ये थिएटर में आग लगा रही है। तो अगर आप एक्शन ड्रामा हॉरर मूवी पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। भाई देखिए इसका नाम चाहे कैसा भी हो कि बंदर, लेकिन इसकी जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट है। उसके बाद चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसको बनाया है एक जादूगर ने। जी हाँ, जादूगर हम कहेंगे क्योंकि भाई इनकी बनाई हुई हर मूवी, चाहे जब वी मेट हो, लैला मजनू हो या फिर हो कोई भी मूवी, जैसे कि हम बात करें तो आपने वो मूवी तो ज़रूर देखी होगी जब हैरी मेट सेजल, जिसमें हैरी और सेजल की लव स्टोरी है लेकिन उसमें बहुत सारा ड्रामा भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जब वी मेट की, भाई हमारे गीत और आदित्य को कौन है जो भूल सकता है। भाई ट्रेन छूटने पर ही आदित्य मिला था और अंशुमान जब गया तो आदित्य उनका इंतज़ार कर रहा था। ये कहानी आज भी लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसी जादूगर ने जिसने उसको बनाया था, उसी ने बनाया एक बहुत ही बेहतरीन मूवी मैं वापस आऊँगा। जी हाँ, जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने काम किया है, जिसमें हमारी स्क्रीनिंग हुई हमारे वेदांग रैना जी की, शर्वरी की और साथ ही साथ भाई हमारे दिलजीत पाजी की। भाई दिलजीत पाजी की एक लाइन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ऑल इंडिया ये चल भी रही है, वो है पंजाबी आ गए। भाई पंजाबी जहाँ आते वो मूवी हिट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। भाई दिलजीत दोसांझ, ये फिल्म दिल को छू लेती है। देश के लिए कुछ करने का जज्बा और सच्ची फीलिंग ने इसका खास बनाया है। पंजाबी लोगों ने ये बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। दिलजीत यहाँ सिर्फ गाना गाने वाले ही नहीं बल्कि एक अच्छे कलाकार के तौर पे नज़र आए हैं। बल्कि इस मूवी में पार्टीशन के टाइम लोगों की क्या फीलिंग थी, क्या हालात थे, कौन किससे कितना बिछड़ गया, क्या दुख था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सामने रखा गया है। साथ ही साथ रखा गया है एक ऐसी लव स्टोरी जो पूरी तो नहीं हो पाई पर उसका ग्रेस मरते दम तक दोनों के साथ था। जी हाँ, जिया और कीनू उस कैरेक्टर का नाम है। ये मूवी इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, सोशल मीडिया पे इसकी बातें हो रही हैं, इसके रिव्यू शेयर हो रहे हैं और इम्तियाज़ अली जो अपना काम करते हैं, जो जादू बिखेरते हैं, वो उन्होंने इस बार भी बिखेर के लोगों का दिल बिल्कुल जीत लिया है। और आजकल सभी चाह रहे हैं कि भाई हमें कोई कीनू जैसा चाहने वाला मिल जाए, कोई जिया जैसी चाहने वाली मिल जाए। लेकिन भाई मैं आपको बताऊँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम अगर जिया और कीनू की तलाश कर रहे हैं तो पहले हमें उनको उनकी तरह बनने का लायक होना पड़ेगा। अगर आपको जिया चाहिए तो आपको भी तो कीनू बनना है ना, अगर आपको किन्नू चाहिए तो आपको भी जिया बनना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता, उसके लायक हमें बनना पड़ता है। इसी थॉट के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पर मैं आपको छोड़ जाती हूँ इस बहुत ही बेहतरीन मूवी का एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह,
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी। मलिका तिल फरेब।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस अक्षय कुमार के एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग के जस्ट बाद। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और जल्दी से आ जाइए हमारे चैट बॉक्स में और ये बताइए कि भैया आपने इन सब मूवी में से कोई मूवी देखी है, क्योंकि भाई रिव्यूज़ तो इसके बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं तो आपका रिव्यू भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी सोच रही हूँ कोई मूवी देख आए, लेकिन कौन सी देखें इसके लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो। आपका सजेशन होगा तो भाई थोड़ी सी मदद मुझे मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ। भाई जंगल में आपका स्वागत है। जी हाँ, देखिए जंगल में नहीं ले जा रही हूँ आपको, मैं चल रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसका नाम है, जिसका टाइटल है वेलकम टू दी जंगल। भाई अक्षय कुमार, संजय दत्त और सुनील शेट्टी तीनों 26 जून को एक साथ आएंगे। कहाँ? गोंडा? नहीं भाई, पर्दे पे आ रहे तीनों एक साथ। इतने बड़े नाम एक ही फिल्म में, ये खुद में एक बहुत ही बड़ी बात है। फिल्मी गाने और मज़ेदार सीन पहले से ही लोगों को खुश कर रहे हैं। पहले हफ्ते में ही अच्छा कारोबार जो है इनको, इन्होंने उम्मीद लगा रखी है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतने बड़े नाम हैं और कमाई ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। भाई बहुत ज़्यादा सुपरहिट ये मूवी होने वाली है, क्योंकि भाई हमारे अक्षय कुमार जो कि एडवेंचर कॉमेडी के राजा बन चुके हैं, और संजय दत्त जिन्होंने भाई मार धाड़ वाली मूवी, अरे भाई इन ये तो उसके एकदम ताज पहन रखे हैं। और अगर हम बात करें सुनील शेट्टी की, तो भाई इनका चार्म हर एक मूवी को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टच ज़रूर देता है। भाई आप जल्दी से, अगर आपको कल कोई मूवी देखनी है तो ये मूवी मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जिसका टाइटल है वेलकम टू दी जंगल। उसके बाद चलते हैं हमारे गवर्नर के पास। जी हाँ, आप क्या सोच रहे हैं, गवर्नर यानी कि हमारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। गवर्नर यानी कि भाई गवर्नर मूवी, मूवी का टाइटल है गवर्नर द साइलेंट सेवियर। मनोज बाजपेयी वाली ये मूवी गहरी सोच वाले लोगों के लिए है। इसमें दिखावा नहीं, सिर्फ एक अच्छी कहानी है और ज़बरदस्त काम है। जो लोग अलग तरीके की फिल्म पसंद करते हैं, ना ज़्यादा रोम कॉम, ना ही कॉमेडी, ना एडवेंचर, ना ड्रामा, ना हॉरर, तो उनके लिए एक अलग मूवी है। भाई ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको इन सारी टाइप की मूवी नहीं पसंद है तो ये मूवी आप ही के लिए है। जो लोग ऐसी मूवी पसंद करते हैं, ये उनके लिए ये हफ्ते ये सबसे अच्छी मूवी रहने वाली है। छोटी रिलीज से लेकिन, मतलब रिलीज इसकी बहुत छोटी है लेकिन इसका असर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद चलते हैं नव्य चक्रा की तरफ। जी हाँ, ये क्राइम और रहस्य वाली मूवी जो 26 जून को आएगी और सीधे वेलकम टू द जंगल स्केट से टकराएगी। जी हाँ, ये कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो आके टकराएगी, बल्कि ये बहुत बेहतरीन मूवी है। जो दो मूवी मैंने अभी आपको बताया, वेलकम टू द जंगल और नई चक्रा मूवी, ये दोनों ही रिलीज़ हो रहे हैं कल यानी 26 जून को। दोनों ही फिल्म को लेकर के दर्शकों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कौन ज़्यादा कमाई करेगी ये तो हम देखेंगे कल। गहरी कहानी के साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मार धाड़ नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है जो रोम कॉम हो, एडवेंचरस नहीं पसंद है, तो आपके लिए ये मूवी भी है। जिनको नहीं पसंद है वो तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अगर ये फिल्म अच्छी हुई तो बाद में भी लोग इसको देखने आएंगे, इसकी उम्मीद फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लगा रहे हैं। हालांकि काम तो इसमें बहुत अच्छा है, क्या है क्या नहीं है वो तो आपको कल देख के पता चलेगा, और साथ ही साथ इस पर हम जिक्र भी करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट थर्सडे पे। उसके बाद हम बात करेंगे जून पे। जी हाँ, देखिए जून में ना बहुत गर्मी हो रखी है। हमने उम्मीद लगाया था कि भाई बारिश तो होगी, शायद मौसम थोड़ा सा शांत हो, लेकिन भाई गर्मी ऐसी चिलचिलाती पड़ रही है। तो भाई इस गर्मी में, गर्मी का आनंद तो भाई आम खा के, तरबूज खा के उठाइए उठाइए, आम का अचार बनाइए, लेकिन साथ ही साथ अपना ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें। पानी पीते रहें और लू से बचें, इलेक्ट्रॉल अपने साथ ज़रूर रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा धूप में आप घर से बाहर ना निकले। भाई ये तो बात हो गई जून की, लेकिन जून क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत ही अलग सा हमारा टॉपिक है जो आज ही हम कवर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनना है हमारी प्यारी चहेती श्रद्धा कपूर का ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जो कि है मूवी ABCD से, और ये मूवी कहीं ना कहीं आपको भी पसंद आई होगी और ये गाना तो आपका टॉप फेवरेट में ज़रूर होगा। कौन सा है, सुनिए और इन्जॉय करिए।
1: नहीं यार, चल चल तू जा भाई, तू जा, तू जा, जा।

हाँ भाई, छम छम छम यानी बारिशों की बूंदों के, तो हम सब गोंडावासी बड़े ही आसरा लगा के इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो जाए, कब माहौल थोड़ा सा शांत हो और कब हमारा दिमाग भी थोड़ा सा शांत हो जाए। लेकिन भाई, ये बारिश है कि अपना दर्शन देने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कैसे कब आएगी और कब इसकी मुँह दिखाई होगी। जी हाँ, यानी कि बारिश कब होगी, जिसका हम तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। वेल, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात किया था कि आज हम बात करेंगे जून पे भी। जी हाँ, देखिए जून जो है इस साल का अभी तक का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट मंथ रहा है बॉलीवुड के लिए। जी हाँ, बॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ जिसमें अगर हम बात करें, वेलकम टू द जंगल, नव्या चक्रा, गवर्नर, मैं वापस आऊँगा, बंदर, है जवानी तो इश्क होना है, कॉकटेल 2, और भी काफ़ी सारी बेहतरीन मूवी रिलीज़ हो रही है। तो भाई, ये ऐसा माना गया है और ऐसे कई सारे लोगों का कहना है जो कि बॉलीवुड की खबरें देते हैं और उनसे रिलेट, मतलब उनका जो है, उनके वहाँ की खबरें जो है वो रखते हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये मूवी जो है, ये जो जून है, ये बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट मंथ गया है और सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग मंथ अभी तक का रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी छम छम गर्ल सुन साथिया गर्ल यानी कि हमारी श्रद्धा कपूर जी की। भाई देखिए, श्रद्धा कपूर की जब एंट्री हुई थी आशिकी 2 से, तो कहीं ना कहीं ये हर एक एक इंसान की क्रश बन गई थी। लड़के तो छोड़ो भाई, लड़कियाँ भी इनके जैसा बनना चाहती थी, लड़कियाँ भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई थी। भाई हमारी श्रद्धा कपूर की एक बहुत ही प्यारी सी मूवी आ रही है जिसका नाम है एठा। जी हाँ, इसके टीज़र ने ही सबको हैरान कर दिया है। श्रद्धा कपूर का ये नया रूप फैंस के लिए बिल्कुल अनोखा था। अभी तक वो स्वीट चार्मिंग गर्ल बन के सबके सामने आती रही, लेकिन अब उनका एक बहुत ही धमाकेदार अंदाज जो है स्क्रीन पे आने वाला है, वो श्रद्धा नहीं है जो पहले देखी थी। अब जो आप देखेंगे वो श्रद्धा का एक नया अवतार है। फिल्म का माहौल गहरा और अलग तरीके का है। लोगों का तुरंत यही पूछना हुआ कि ये उनकी सबसे यादगार फिल्म हो सकती है, क्योंकि इनका अंदाज, इनका रूप बिल्कुल अलग ही है। भाई सॉफ्ट चार्मिंग तो छोड़ो, अभी ये सबसे स्ट्रांगेस्ट गर्ल के रूप में सामने आ रही हैं। एबीपी लाइव पर ये क्लिप बार बार शेयर हुई और लोगों ने इस पर खूब चर्चा भी की, वुमेन का एक असली रूप। क्योंकि देखिए, हम हमेशा महिलाओं को जब जानते हैं तो हम सोचते हैं भाई बड़ी ही स्वीट, इनोसेंट, सॉफ्ट, लेकिन देखिए ये सब होता है, महिलाओं में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। जब तक उनका कोई उनके साथ बुरा ना करे या फिर कोई उनके उन जख्मों पे खुरेदता ना जाए, उनके साथ गलत करता ना जाए, तब तक उनका जो हार्ड रूप होता है वो कभी सामने आता नहीं है। तो भाई, औरतों को बेरहम बनने पर नहीं मजबूर करना चाहिए, और औरतों का जो सॉफ्ट कॉर्नर उसे लो और उसी के साथ रहो, उनको खुरेदो नहीं कि वो एक अपने अंदर कि चंडी को बाहर लाने में मजबूर हो जाए। और काइंड ऑफ ऐसी ही कुछ कहानी है इस मूवी की। आपको टीजर भी देखना है, साथ ही साथ आपको ये मूवी भी देखनी है, और स्पेशली मैं कहूँगी कि विमेंस को तो ज़रूर

देखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं भाई हमारे पद्म पुरस्कार की। जी हाँ, पद्म पुरस्कार भी हुआ है और बॉलीवुड में इस हफ्ते इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रही है। 3 बड़े कलाकारों को जो है सरकारी सम्मान मिलने की खबर ने फिल्मिंग दुनिया और दर्शकों को में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ बिखेर दी। हमारी प्यारी इनोसेंट सी, अलका याग्निक जी के गाने आर माधवन का काम और ममूटी का लंबा सफ़र, सबकी तारीफ हुई। सोशल मीडिया पर इस बार कोई लड़ाई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही फैल रही हैं बॉलीवुड की तरफ से। कहीं शादी हो रही है, न्यू मूवीज़ की रिलीज़ हो रहे हैं, धमाकेदार एक्टिंग सीन्स हमारे सामने आ रहे हैं और अब आ चुका है पद्म पुरस्कार। ऐसी खबरों के लिए जो है लोग बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, मेहनत करते हैं और आज जब हमें ये पुरस्कार मिल चुका है, स्पेशली हमारे ऐसे बहुत दिग्गज कलाकारों का जिनकी काफ़ी सालों की मेहनत है, तब उन्होंने पुरस्कार ये जीता है। देखिए, पुरस्कार जीतना ही नहीं होता, पुरस्कार को हमें कमाना होता है और कमाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है हार्डवर्क का, जो कि नो डाउट इन सभी ने बहुत ज़्यादा किया। फिलहाल लेते हैं इस बहुत ही बेहतरीन खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक और इंजॉय करते हैं हमारी अलका याग्निक जी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

0: वाह भाई क्या गाना था। मैं तो भाई इस गाने के बिल्कुल फैन ही हूँ भाई। क्या आवाज है, क्या लिरिक्स है और क्या इसके इमोशन है भाई। देखिए ये गाना जो है ये सुपर डुपर हिट है और ये हालांकि ये काफ़ी पहले का गाना है लेकिन आज भी इसका क्रेज बहुत ज़्यादा है। आज भी जब आप किसी बस ऑटो से ट्रेवल करते हैं तो और उस वक्त अलका याग्निक जी की आवाज़ में गाना ना बजे हो ही नहीं सकता भाई। उत्तर प्रदेश की पहचान ही यही बन चुकी है कि अगर आप यहाँ के किसी भी ऑटो पे किसी भी बस में ट्रैवल करेंगे तो आपको वो बॉलीवुड के गाने सुनाते हुए सफ़र कराएंगे और आपके सफ़र को बिल्कुल एंटरटेनिंग बना देंगे। चलते हैं हम एंटरटेनमेंट की तरफ, थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ और भी खबरों को अच्छे से जानते हैं भाई। खबर है हमारे धुरंधर पाजी की, जी हाँ हमारे रणवीर सिंह जी की। भाई उनका मुँह छुपा के ऑफिस क्या जाना हो गया, लोगों ने तो उस पर खबर ही बना दी। जी हाँ रणवीर सिंह सिर्फ मुँह ढक कर ऑफिस गए थे लेकिन फैंस ने इसे नई फिल्म से जोड़ दिया और ये कहा कि किसी बड़े डायरेक्टर से मुलाकात इनकी हुई है और कमेंट सेक्शन में भी लोग आके ये भी बता रहे हैं इन सभी पोस्ट पे कि ये जो है किसी खास एक मिशन की तैयारी हो रही है। मिशन पाकिस्तान जाने का, जी नहीं अब की कोई धुरंधर नहीं होने वाला है। सब लोग ये कह रहे हैं कि अब कोई ऐसी मूवी आने वाली है जो कि धुरंधर को भी पीछे छोड़ सकती है। अब ये मूवी बन रही है नहीं बन रही है इसको अभी इसकी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है पर ये खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रखी है पूरे सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कार्तिक आर्यन जी की। जी हाँ प्यार वाली मूवी में वापस से इनकी बात चल रही है। जी हाँ फिल्मी दुनिया में ये खबर है कि कार्तिक आर्यन अगली बार प्यार और मज़ेदार फिल्म का जो है इस मिला जुला सा काम करेंगे। उनके चाहने वाले हमेशा उनका साथ देते हैं और उनके नाम किसी भी फिल्म में आते ही लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उनका क्रेज़ लोगों के सर पे बिल्कुल चढ़ जाता है। प्यार का पंचनामा वाले अंदाज़ उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है और अगर ऐसी ही मूवी वापस बनती है तो भाई लोगों का जो एंटरटेनमेंट डोज है वो तो डबल होना बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी कृति सेनन जी की। जी हाँ कृति सेनन जी जिनकी हाइट इतनी लंबी है और उससे भी बड़ा है इनका काम, इनकी एक्टिंग और इनकी लुक्स। जी हाँ सीधी सीधी अच्छी सी इमेज और कोई बकवास नहीं। सब बाकी कलाकार आए दिन किसी ना किसी बात पे उलझे रहते हैं लेकिन कृति सेनन सबसे अलग नज़र आई। वो सिर्फ काम पर ध्यान देती हैं, कोई रोज़ रोज़ का हंगामा नहीं। मिमी से लेकर आगे तक उन्होंने जितनी भी मूवी काम की है उसमें उन्होंने एक बार सेट कर दिया है अलग और नई आने वाली एक्ट्रेसेस के लिए। लोग उन्हें इज्जत देते हैं और उनका नाम किसी भी मूवी से जुड़ता ही लोग एकदम क्रेज़ में आ जाते हैं कि भाई अब कृति सेनन क्या कमाल दिखाएंगे। भाई कृति की कोई भी मूवी हो सब में इनका जो अवतार है, जो नए नए अवतार है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जैसे लुका छुपी में एक सॉफ्ट गर्ल एरा। उसके बाद अगर हम बात करें मिमी तो एक औरत का एक माँ बनने पर क्या रूप होता है, अपने बच्चे के लिए क्या एहसास होता है, क्या प्यार होता है, उसको सामने लाई और ऐसी कई सारी मूवी है जिसमें इन्होंने काम किया और अलग अलग अवतार में नजर आए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे बादशाह पाजी की। जी हाँ वही बादशाह जिन्होंने गाना गाया है डीजे वाले बाबू थोड़ा गाना चला दो। भाई ये गाना जब से बना है ना तब से हर पार्टी में ये गाना जरूर बजता है और बादशाह के साथ जो है एक अनजान लड़की की तस्वीरें नेट पर लोग डाल रहे हैं और वो वायरल हो रही है। लोग पूछने लगे हैं कि भाई ये कौन है, कब से साथ है, क्या चक्कर चल रहा है या क्या होने वाला है, कहीं ये इनकी नई गर्लफ्रेंड तो नहीं है या अब इनसे ये शादी करने वाले हैं। इसकी बादशाह ने कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है लेकिन लोगों ने अपनी अपनी बातें लिखना शुरू कर दिया है। जब तक सच नहीं आता है ये खबर और भी ज़्यादा तेज होती जा रही है। बादशाह इसके बारे में क्या रिएक्ट करेंगे इस पर लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र घूमी हुई है। भाई इन सभी खबरों के साथ आपको ये फील ज़रूर होगी भाई बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ फिल्में बनती नहीं है, कहानियाँ ही नहीं बनती बल्कि भाई बातें भी बहुत ज़्यादा बनती हैं और सोशल मीडिया है, न्यूज़ है या कोई भी अदर मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी खबरें बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ जाती हैं। इन्हीं खबरों के साथ भाई वक्त हो चुका है हमारा आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो ज़रूर आके कमेंट बॉक्स में आए यानी कि हमारे चैट बॉक्स में आइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि भाई आपका फीडबैक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए लाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे से टॉपिक्स। जी हाँ लेते हैं आपसे विदा। आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे और इस गर्मी से बचने के लिए पानी पी रहे होंगे और अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे।
1: सलमान खान की कॉमेडी और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए अपने फोन या आईपैड से। इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। लेकिन आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है दोस्तों। अभी मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूं, एसी भी चल रही है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठी हुई हूं। सुबह जब घर से निकली तो लगा कि आज का दिन तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ और सिर्फ 10 बज रहे हैं और लग रहा है कि जैसे दोपहर सिर पर खड़ी है। दोस्तों पहले गर्मी सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है यार। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रही है हमारे आसपास।
3: अरे आरजे दीदी इतनी घबराहट क्यों, गर्मी है तो पसीना आएगा ही। लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है, इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है और जो आप महसूस कर रहे हैं ना वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
2: हाँ टीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही मेरे, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की भी इसमें कोई भूमिका है? सच बताऊं अब ये गर्मी डराने लगी है मुझे, पहले जैसे नहीं रहा।
3: देखिए आरजे, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म हो जाता है वैसे ही।
2: तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बन रही है।
3: बिल्कुल सही समझी आप, ये एक पूरा सिस्टम है, हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कहीं ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
2: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं, क्यों भाभी?
3: हाँ आरजे, यही सच्चाई है और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
2: तो भाभी अब ये बताइए, ये लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है ये तो आज तक किसी ने ना सोचा और ना ही किसी ने प्रश्न किया इस पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर में लू हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है।
3: जी देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो जाता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
2: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
3: हाँ बिल्कुल, अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल जाती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
2: ओहो भाभी, तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
3: देखिए आरजे, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
2: भाभी आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और कब लेना चाहिए?
3: बहुत अच्छा सवाल है आरजे जी। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हमें बहुत ज्यादा पसीना बहता है तो सिर्फ पानी ही नहीं शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
2: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
3: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं। घर पर भी घोल बनाया जा सकता है।
2: अरे वाह, ऐसा भी कुछ है भाभी?
3: बिल्कुल, 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर, ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
2: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है ना भाभी?
3: बिल्कुल आरजी, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
2: हाँ ये तो सही बात है, अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना ही भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
3: जी बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, और जब भी निकलें तो सिर को ढक कर निकलें, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
2: और भाभी, खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है, या फिर मैं यूं कहूं कि आजकल मैं अगर अपना पर्सनल बोलूं भाभी, तो मुझसे तो खाना खाया ही नहीं जाता। थाली में लेके बैठती दो रोटी और एक रोटी खाते ही ऐसा लगता कि मन भर गया है, और भूख भी लगी रहती है, फिर भी हम नहीं खाना खा पाते। और सेम चीज़ कहीं ना कहीं पानी के साथ भी होता है कि गला सूखा सूखा लगता है, पेट भरा लगता है। तो मतलब खान पान में हमें क्या बदलाव करना चाहिए?
3: बिल्कुल सही कहा आपने, अक्सर ये घटना सभी व्यक्तियों के साथ गर्मियों में होती है। गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पच जाने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा आदि। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
2: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चालक और अन्य लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा। उनका क्या होगा फिर भाभी?
3: बिल्कुल, मुश्किल तो है। आपने बहुत ज़रूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदलें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज़ धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहाँ भी छाँव मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा कर लें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छाँव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
2: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
3: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
2: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर में प्राथमिक उपचार क्या हो। मतलब हम बड़े उपचार की तो बाद में सोचेंगे, प्राथमिक उपचार भी दिमाग काम नहीं करता है ऐसे समय पे जब हमें लू लग जाती है।
3: जी, ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए और उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
2: भाभी, ये तो थी हम इंसानों की बात। अब एक और बात, ये गर्मी ने तो हम लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं जितने हम मनुष्य?
3: अरे आरजी
2: जी,
3: जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं,
2: है ना?
3: बल्कि जी, लेकिन कई बार हमसे भी ज़्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतज़ाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
2: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो सकते नहीं लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेल रहे हैं जितना कि हम।
3: बिल्कुल आरजे, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भर कर रख दे तो वह किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
2: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बात बहुत जरूरी बताई कि गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा, वो भी छोटा छोटा, जैसे समय समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचाव करना, हल्के और सूती कपड़ों को पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत होती है। याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहें हम सब तैयार। और एक बात और कि धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने ऐसे कोई मामले को देखा है जहां लापरवाही बहुत भारी पड़ गई हो?
3: हाँ अर्जे, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम कर रहे थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी लेकिन वे बच्चे को भी अपने साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया।
2: फिर क्या हुआ भाभी?
3: और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
2: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
3: हाँ अर्जे, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। तो साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
3: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
2: इसी के साथ दोस्तों, हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेंगे हम सब अपनी सेहत की शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
2: मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे इसी शो यानी कि सेहत सही और लाभ कई में, क्योंकि अगर सेहत होगी सही तो लाभ भी तो होंगे कई, एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, पानी पीते रहिएगा, छांव में रहिएगा और हमेशा स्वस्थ रहिएगा। अपना भी और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और बेजुबान और बुजुर्गों का थोड़ा ज्यादा खास वाला ख्याल रखिएगा। टेक केयर। Fine.

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस।

0: ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना,
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता फिर से लौट के और आरजे अंशिका के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम के साथ, क्योंकि पहले अंशिका नहीं थी फिर मैं नहीं थी और अब हम लोग दोनों फिर से आ गए हैं आपके सम्मुख आपसे बात करने के लिए। क्या हाल है भाई आपका? भाई हम दोनों तो बहुत लॉन्ग टाइम बीमारी के बाद हम लोग उठ करके आए। पहले अंशिका बीमार थी फिर मैं बीमार थी, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ठीक हैं और फिर से आ गए हैं अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आपका पसंदीदा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। और अंशिका मैं अभी बाहर गई थी
3: जी,
2: बाहर का जो मौसम है वो इतना बढ़िया वाला मौसम है कि मैं क्या बताऊं। मतलब दोपहर का टाइमिंग दोपहर है, लेकिन दोपहर वाली जो जैसे धूप थी ना अभी जब हम लोग आ रहे थे
3: जी।
2: तो वो धूप बिल्कुल नहीं है, अच्छा वाला मौसम हो गया है। और अब बस भगवान से यही प्रेयर है कि बस अब बारिश हो जाए, बस बहुत हो गया, क्योंकि इस गर्मी से लगभग सभी की तबीयतें ख़राब हुई हैं। मतलब ऑलमोस्ट सभी के घरों में कोई ना कोई बीमार ज़रूर चल रहा है।
3: एक तो इंसान हर घर में मिल जाए,
2: हर घर में एक बीमार इंसान मिल ही जा रहा है। तो इसी वजह से अब ईश्वर को हम सभी प्राणियों पे तरस खा करके बारिश कर देनी चाहिए। तो बारिश का माहौल बना हुआ है, गरज रहे हैं बादल और बरस रही हैं पानी की बूंदें छोटी छोटी। तो चलिए अब एक साथ एक फ्रेम में इस प्यारे से मौसम को विश कर देते हैं। शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया दोस्तों, आइए चलिए चलते हैं आज का, जैसा आपको सभी को पता है कि सेक्शन होता है हमारा बड़े बुजुर्गों का।
3: बड़े बुजुर्गों का दिन है और बड़े बुजुर्गों के दिन पे मैम हमारे साथ जुड़ भी गई हैं।
2: एक बुजुर्ग जुड़ गई हैं, आ गई फिर से वापस बुजुर्ग।
3: मैंने ये तो नहीं कहा।
2: नहीं तो इसमें कोई बुरे लगने वाली बात नहीं है।
3: मुझसे पूछा भी जा रहा था, मतलब प्रॉपर पूछा गया।
2: आपके आपके घर की बड़ी बुजुर्ग कहाँ है?
3: नहीं, मुझसे पूछा जा रहा था आपकी सासू माँ कहाँ है।
2: सासू माँ कहाँ?
3: तो मैंने कहा सासू माँ जो है वो अभी
2: मायके गई हुई है।
3: मायके गई हुई है और थोड़े आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी।
2: नए नए पैतड़े सीखने गई हैं।
3: बहू को कैसे हैंडल करना ये सीखने गई।
2: ये

0: सीखने गई है ना,
1: और सीख के वापस बहुत जल्द आप सभी के पास आ जाएंगे। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, सब लोग पूछ रहे थे और सब कह रहे थे कि हाँ मैम जल्दी से आ जाएं।
0: वैसे आपको आपको लग रहा है कि मुझे सीखने की आवश्यकता है?
1: नहीं,
0: फिर
1: सिखाने की आवश्यकता है?
0: नहीं, वो नहीं है, मतलब कहने का सेंस है कि मतलब मुझे सीखने की जरूरत है?
1: नहीं, बिल्कुल
0: नहीं है ना। तो चलिए अब एक कविता से शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को, जो कि बड़े बुजुर्गों पर ही आधारित है, इस प्यारी सी कविता को। जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जो मुश्किलों में साथ खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनकी छाया में सब कुछ सुरक्षित होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जो ढाल बन के हर मुसीबत में खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब रिश्ते होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं।
1: वाह, बहुत ही प्यारी लाइंस और बहुत ही प्यारी लग भी रही थी मैम के, मतलब मैम जब बोल रही थी तो बहुत इमोशनल फुल लग रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं कि जिस घर में रहते हैं बड़े बुजुर्ग, वहाँ कभी उदासी का साया नहीं होता। उनके अनुभव की खुशबू से महकता है घर, उनका आशीर्वाद किसी वरदान से कम नहीं होता। बचपन की हर जिद को वो प्यार से सहते हैं, माँ बाप की डांट से बचाने वाले वही रहते हैं। उनकी झुर्रियों में छुपी है जिंदगी की कहानी, उनके पास बैठने से मिलती है हर परेशानी से आज़ादी।
0: ये तो बात बिल्कुल 100% सही कहा आपने कि बड़े बुजुर्गों के पास में बैठने से ही एक असीम प्यार और एक असीम विश्वास और एक असीम सहारा मिलता है। एक वैसी वाली फीलिंग आती है कि हाँ, कि हमारे ऊपर भी
1: कोई है, किसी का हाथ है, किसी का साया है। बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। कभी आप अपने दादा दादी या आपके घर में कोई भी बड़ा हो, उसके साथ आप बैठ करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक महसूस होता है, आहा, मुझे तो बहुत रिलैक्स फील होता है। पता है, कोई मुझसे बड़ा जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल मेरे साथ कोई बैठा होता है तो मुझे बड़ी रिलैक्स फील होती है कि कुछ भी होगा तो वो संभाल लेंगे।
0: बिल्कुल
1: ऐसे मैम के साथ भी कभी कभी मुझे होता है।
0: अच्छा।
1: कि मैम बैठी रहती है तो मुझे लगता है मैं रिलैक्स्ड हूँ, अब तो मैम संभाल लेंगी। मतलब इन द सेंस कि अगर कोई गड़बड़
0: कोई फंबलिंग होती है
1: तो मैम संभाल लेंगी, तो बड़ा रिलैक्स मुझे महसूस होता है। जब मैम नहीं होती है तो मुझे फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं कि मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है, मुझे सब कुछ ध्यान रखना है। तो वो एक बड़े वाला आ जाता है, मेच्योर वाला आ जाता है कि नहीं नहीं सब परफेक्ट होना चाहिए, जब वो नहीं होती है। और जब वो होती है तो बच्चों वाला आ जाता है कि अरे कुछ होगा तो संभाल लेंगे।
0: और ऐसे ही हम लोग अपने घर में भी होते हैं अंशिका, जब कुछ ऐसा होता है तो मम्मी है, पापा है, भाई है, लगता है कि यार चलो कुछ भी होगा तो वो संभाल लेंगे। एक वो वाली फीलिंग आती है कि अपनेपन वाली फीलिंग आती है।
1: और जब आपके जैसे जब आप अकेले होते हो किसी एक दिन घर में तो फील होता है कि अरे नहीं सब कुछ करना है, और जिस दिन सब होते हैं उस दिन बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अपनेपन वाली जो फीलिंग है ना, वो हमें महसूस करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे क्या, आजकल के मुझे तो लगता है यूथ जो जॉब कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं महसूस नहीं कर पाते। उनको बस ये लगता है कि मम्मी पापा घर पे हैं, मम्मी पापा को सारी जरूरत की चीजें दे दी हमने, उनका हम ख्याल रख रहे हैं तो बस उतना बहुत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उतना बहुत नहीं होता है। देखिए कई बार सिर्फ जरूरत की चीजें दे देने से रिश्ते नहीं बनते। हाँ। कि हमें लगता है कि हम सारी किसी की अगर जरूरतें पूरी कर रहे हैं तो वो हमारा उसका बॉन्ड हो गया या रिश्ता हो गया। रिश्ते तब बनते हैं जब आप जुड़ते हैं। और आजकल तो मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब हम लोग जब मैम अपने टाइम पे थे तो दादा दादी से बहुत लगाव होता था। मतलब तब हम गाँव जाते थे तो बहुत खुशी होती थी कि दादी के पास जाएंगे, नानी के पास जाएंगे। और कल ही कुछ ऐसे हुआ, मतलब मेरे साथ हुआ कि एक बच्चा था मेरे यहाँ पढ़ता है वो, और मैंने उससे कहा, मैंने कहा छुट्टियाँ तुम्हारी खत्म हो गई तो नानी के यहाँ नहीं गए? तो कह रहा है कौन जाएगा नानी के यहाँ। और नानी बहुत मुझसे मतलब बातें करती है, मुझे तो उनकी बातें समझ में नहीं आती, मुझे नहीं अच्छा लगता है नानी के यहाँ जाना। तो मुझे सुन के बड़ा एक अजीब सा फील हुआ कि मतलब छोटे से बच्चे के मन में ये सारी बातें कहीं ना कहीं कैसे आ रही,
0: कैसे आ गई।
1: हो सकता है कि उसके मम्मी पापा ने कहा हो कि अरे क्या करोगे जाके, रहने दो। तो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि देखिए हम कहते नहीं है कि घर के बड़े बुजुर्ग जड़ हैं, और अगर जड़ काट देंगे तो पेड़ हरा नहीं रहेगा। वो बच्चा जब अपनी जड़ के पास ही नहीं जाना चाहता है तो वो लाइफ में क्या करेगा।
0: और दूसरी चीज की अगर नानी के घर नहीं गए हैं तो ये अलग मैटर है कि वो बोलती हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है और उनके घर के और बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें ये समझाएं
1: हाँ।
0: कि बेटा वो घर के बड़े हैं और वो जो बोल रहे हैं उन्हें हमें सुनना है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे हम लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लोग हमारी बात ही नहीं सुनोगे फिर, या फिर आप बड़े हो जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से एक एक एक जैसे कहते हैं ना जनरेशन गैप को करके
1: मेंटेन करना चाहिए,
0: बच्चों को समझाना चाहिए।
1: बिल्कुल, लेकिन आजकल तो ये देखा जाता है कि पेरेंट्स ही कहते हैं कि अरे छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे पे चलते हैं ना,
0: हाँ, चलो ट्रेंडिंग में भी है
1: हाँ,
0: अंशिका ये
1: चलो कहीं बाहर घूमाते हैं,
0: नानी के घर नहीं,
1: नानी के घर क्या करोगी जाके, नहीं चलो रहने दो कहीं बाहर। तो देखिए वो बाहर आप जाइए, वो आपका अपना कॉल है, आपको घूमने जाना है बेशक जाएं, लेकिन नाना नानी के घर जाने का जब हम 15 दिन की छुट्टी या 1 महीने की छुट्टी बिताते थे तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता था कि घर चेंज कर रहे हैं या मामा के घर जा रहे हैं, मतलब होता था कि बहुत सारी खुशियां भी मिलती थी। मतलब मुझे तो आज भी याद है कि नानी मेरी मैम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, मतलब उनको अस्थमा था तो उनकी तबीयत खराब रहती थी थोड़ा, लेकिन जैसे उनको पता चलता था कि आने वाली है तो मुझे आम की जो है आम पन्ना, आम का वो जो बनता है अमरस बनता है वो सब बहुत पसंद था। तो
0: आपने एक नाम और लिया था अभी,
1: वो तो गांव में कहा जाता है,
0: वो गांव में कहा जाता है,
1: वो यहाँ सिटी में नहीं कहा जाता है, बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। तो उनको ये था कि उसको अच्छा लगता है तो वो बनाती थी, और मेरे लिए स्पेशली दाल बनाती थी मिली हुई दाल।
0: मिली हुई दाल कैसे होती है?
1: मिली हुई दाल मतलब उड़द भी डाल दो उसमें, मसूर भी और उसमें चने की दाल भी, मतलब सब मिला करके बनती थी तो बहुत अच्छी लगती थी मुझे वो तो। और घी डाल के मतलब प्रॉपर बनाती थी जैसे गांव वाली जो स्टाइल होती है, वैसी दाल मैंने आज तक कभी नहीं खाई।
0: okay.
1: और मम्मी भी बनाती हैं बट फॉर टेस्ट नहीं, तो वो हमेशा मेरे लिए बनाती थी कि वो आएगी और खाएगी। और हम लोग जाते थे और जाते ही मतलब मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं फील हो रही है कि जाते ही टूट पड़ते थे कि नानी लाओ क्या बनाया है, बाद में नहाएंगे, बाद में फ्रेश होंगे, बाद में सारी चीजें करेंगे, पहले आपने क्या बनाया है।
0: हाँ।
1: लेकिन फिर वो कहती थी अच्छा जाओ फ्रेश होके आओ, तब तक हम लगाते हैं कि हमने क्या बनाया।
0: अच्छा
1: हाँ, तो फिर हम लोग जाते थे फ्रेश होते थे, फिर वो खाना जो भी बना के रखती थी। गुलाब जामुन बहुत पसंद है मुझे, मेरे लिए
0: यार मेरा भी मन कर रहा है खाने का इस समय।
1: हाँ।
0: लेकिन बस अंशिका वही मेरी आप वाली फीलिंग है
1: यस मैम,
0: कि अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन पे चलेंगे तो ही ठीक रहेंगे फिर।
1: जी जी बिल्कुल, और हमेशा जैसे हम लोग जब जाते थे तो तुरंत कहती थी कि मैंने ये बनाया है, और फिर बाद में जब हम लोग लौटने लगते थे तो बहुत सारी चीजें बना के बिल्कुल डब्बों में भर के तैयार रखती थी कि ये ले जाओ वहाँ पे खाना। तो वो एक प्यार होता था, वो एक बॉन्ड होता था। हम तो जाते थे तो नानी के पास घंटों घंटों बैठते थे, वो बताती थी तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था। अपनी बातें बताती थी, अपने नाना मतलब अपनी शादी के समय की बातें बताती थी बहुत कुछ, और कुछ ऐसी चीजें भी बताती थी जैसे हम लोग कुछ गलत करते थे मान लो,
0: समझाने वाले
1: हाँ, तो वो समझाती थी कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करो और ये गलत चीज है, तो हम लोग उसको कहते थे अच्छा ठीक है नानी अब दोबारा
0: नहीं
1: करेंगे। तो इन द सेंस कि वो संस्कार वो नींव वही घर के बड़े बुजुर्ग ही डाल सकते हैं। वो आप सोचिए कि आप कश्मीर ले जा, मतलब इस पे आप गलत तरीके से मत लीजिए, लेकिन आप सोचिए कि आप बाहर ले जा रहे हो, बच्चे को बहुत खुशी दे रहे हो, तो वो संस्कार वो नींव आप नहीं डाल पा रहे। और उसी का रीजन है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों में इतना अग्रेशन है कि समझ भी नहीं आता है कि इनमें इस अग्रेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं
0: है। नहीं है, और मैं अपने घर में भी देख रही हूँ अंशिका कि जरा जरा सी बात पे वो गुस्सा हो जाना।
1: हाँ।
0: और कल इसी बात पे मेरे घर के बच्चों के साथ भी बहस हो गई, फिर मुझे लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों ही ये ऐसा हो रहा है।
1: बिल्कुल, बड़े एज के लोग गुस्सा करते हैं तो हम कहते हैं अरे उनकी उम्र हो गई है ना, चलो ठीक है वो गुस्सा करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि क्या कहना।
0: हाँ।
1: तो कहीं ना कहीं आप जड़े काट रहे हैं। आप ले जाइए, आप घुमाइए, आप अच्छी डेस्टिनेशन पे ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ टाइम नाना नानी घर में दादा दादी है, चलो मान लिया नाना नानी के घर जाना पड़ता है लेकिन दादा दादी तो आपके घर में ही रहते हैं, उनके साथ बच्चों को बैठने दीजिए, अगर वो बातें करते हैं तो करने दीजिए।
0: एग्जैक्टली,
1: और बच्चों के मन में ये डालिए कि बेटा इनकी बातें जो आप सुन रहे हो ना वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी।
0: एग्जैक्टली, और चलिए अब चलते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ अंशिका। रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
1: यस मैम, रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज हमारा ये है कि सफलता वो नहीं जिस पर अपने इतराए, सफलता वो है जो गैरों की आंखों में भी नजर आए।
0: ओ माय गुडनेस,
1: कहने का सेंस ये है कि आपके घर वाले कहें कि मेरी बच्ची बहुत सफल है या मेरा बेटा बहुत सफल है, अरे वो तो बहुत अच्छा
0: एक... अच्छा ये मतलब टचवुड, ये चीज तो मेरी मम्मा को सब लोग कहते हैं मेरे लिए, बट उस समय मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लिए जब मेरी मम्मी को कहा जाता है।
1: जी मैम,
0: तो अच्छा लगता है ना कि
1: अच्छा
0: हाँ। तो देखो पता है, हमेशा से हम लोगों को मतलब हम लोग के साथ में सभी लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सैलरी इज नॉट मैटर,
1: राइट,
0: स्पेस इज नॉट मैटर, एटमॉस्फेयर इज नॉट मैटर, लेकिन आपका जो कि कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: वेरी इंपॉर्टेंट,
0: क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर सही है ना तो आप जिस भी स्पेस पे रहेंगे ना उस पे आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी सैलरी अच्छी नहीं है लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो कभी ना कभी वो भी इम्प्रूव करके आपको एक खुशी देती है। कहते हैं ना कि 1,000 रुपया कमाओ लेकिन आपका चरित्र अच्छा है तो वो 1,000 1,00,000 रुपये लगते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: एंड आप आती है बात एटमॉस्फेयर की, अगर आपका चरित्र अच्छा है, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है ना तो आपका एटमॉस्फेयर वो अपने आप से वो उसी टाइप में बनने लगता है कि आपके साथ जैसा लोग होंगे ना वो वैसा ही बिहेव, मतलब उनका भी बिहेवियर वैसा ही होने लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी है, इनका बिहेवियर जो है, इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कहा गया है कि अगर आप सफलता आपके कदम आपकी दूसरों की आंखों में आ रही है तो इसका साफ मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उन बुलंदियों को छू रहे हैं, उन्हें आप पा चुके हैं। तो इसी के साथ चलिए अब लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कथा हो गई है, अब थोड़ा सा विश्राम लेने की नीड है हमें। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आएंगे आज के सुपर से ऊपर कंटेंट के। चलिए बस हम यू गए यू आए,
1: जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब जो ये सॉन्ग मैं प्ले करने वाली हूँ ना ये डेडिकेट है मैम को।
0: अच्छा
1: यस, तो सॉन्ग क्या है वो मैम सुनेंगी आप भी सुनिए।
0: सुन लेते हैं भाई।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और आरजे अंशिका एंड नागेश्वर जी। मैं आपको बता दूं कि आपके इंतजार में ये सॉन्ग नहीं चलाया गया था, ये अंशिका ने चलाया था हमारे इंतजार में।
6: यस तो मतलब ये हो गया कि इंतजार
5: गुगली हो गई है तो।
6: हाँ, इंतजार किसी और का था और क्रेडिट किसी और ने ले लिया। तो नहीं नागेश्वर जी, आपका इंतजार नहीं था, इंतजार जिनका था वो आ गई हैं और ये उनके लिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आप आ गए हैं तो
5: चलो ठीक है, थोड़ा दे देते हैं क्रेडिट, दे देते हैं
6: 10% दे देते,
5: 10% दे देते,
6: बाकी 90 इधर है और 10 उधर है,
5: दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, खुश
6: खुश।
5: अब आते हैं अपने कंटेंट पर।
6: यस, तो आज जैसे कि आप सभी को पता है लिसनर्स कि हमारा दिन होता है सीनियर सिटीजन्स का। तो अब हम आज जो जिन पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और प्रॉपर बेड रेस्ट पर हैं, आज हम उनकी बात करेंगे।
5: ओके।
6: क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो किसी न किसी बीमारी की वजह से, जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है या कोई और गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से वो प्रॉपर बेड रेस्ट पर हो जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि उनकी केयर कैसे करनी चाहिए
5: जी।
6: क्योंकि जितना जरूरी होता है ध्यान रखना है। देखिए, अगर इंसान चल फिर रहा है, मान लीजिए वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते लेकिन अपने काम कर लेते हैं, नहाना
5: हाँ, और क्या, वही बहुत बड़ी बात होती है।
6: वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं कर पाते, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आज हम आपको बताएंगे कि किन चीजों से और कैसे आप उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो इट्स कुमार जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेइज्जती वाला सेंस बिल्कुल भी नहीं था। इन द सेंस की फ्रेंड्स में मजाक
5: कुमार को ना केवल बस वो नहीं, जैसे कहते हैं कि वो
6: नेगेटिविटी,
5: हाँ,
6: नेगेटिविटी ज्यादा
5: फैलानी आती है बस,
6: तो ऐसा ना करें। और बस
5: नागेश्वर जी को बुरा नहीं लगा लेकिन हाँ, इनको लग गया।
6: दोस्तों में मजाक होता है तो हमने भी मजाक किया है और आई होप कि नागेश्वर जी समझते हैं कि हमने उनके साथ मजाक किया है। और वाह, मतलब पहले जो है वो करो और फिर वेरी गुड आफ्टरनून आरजेस, गुड आफ्टरनून। तो पहले आप वो हैं कि पहले हम रायता फैलाते हैं और फिर रायता समेटते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और तीरथ प्रसाद सोनी जी आ चुके हैं जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। तो पहले तो गुड आफ्टरनून ठीक है, लेकिन सर जी नहीं मैम जी, क्योंकि हम दोनों सहेलियां हैं। लगता है आप पहली बार सुन रहे हैं, सो कोई बात नहीं, इट्स ओके। और लिख रहे हैं सास और बहुरानी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नागेश्वर जी, तो सासू माँ की कल कमी थी लेकिन फिलहाल सासू माँ हमारी आ गई हैं, तो उन्होंने अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया है और स्थान ग्रहण करने की खुशी में ही हमने ये गाना चलाया था। क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, हमने सुना नहीं आपके बारे में। मैं नहीं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि तीरथ प्रसाद सोनी जी जो हैं उन्होंने गुड आफ्टरनून सर जी लिखा, तो मैं उन्हें कह रही थी कि सर की जगह आप मैम लिखें, आपको नहीं कह रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज हम जिनके बारे में भी बताने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो प्रॉपर बेड रेस्ट पर होते हैं ना, उन्हें ज़्यादातर जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो उन्हें बिस्तर का घाव हो जाता है।
5: हाँ,
6: क्योंकि प्रॉपर अगर आप एक जगह लेटे हुए हैं तो वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाती
5: अभी
6: है।
5: अभी पता है अंशिका, जो मैं गई थी ना, जहाँ पर अभी मैं लीव पे गई थी, तो हमारी मौसी की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं गई थी।
6: जी जी।
5: तो अभी तुम्हारी बात पे याद आया कि वो भी ऑन बेड थी और उन्हें भी पीठ की तरफ से घाव हो गया था। हाँ। एक जगह, मतलब प्रॉपर लेटे लेटे।
6: जी मैम।
5: तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम वाली स्थिति होती है। ईश्वर से यही है कि मतलब इस तरीके की कंडीशन किसी की ना करे।
6: बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन में है और उसे सर्वाइव करना है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कई बार जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे किसी के हाथ में पैर में फ्रैक्चर है, तो पैर में फ्रैक्चर है अगर आपके, तो प्रॉपर आपको फिर बेड रेस्ट हो जाता है। ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो अगर है तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात का रखना है कि एक पोजीशन में कभी भी लिटाना नहीं चाहिए। एक पोजीशन का मतलब होता है कि कई बार अगर सीधे लेटे हुए हैं तो हम सीधा ही रखते हैं, नहीं उन्हें करवट लेते रहने दीजिए, कभी इस साइड जैसे लेफ्ट साइड करवट लें, कभी राइट साइड में करवट लें। करवटें बदलने से क्या होता है ना कि वो प्रॉपर वो घाव नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ कि क्रीम पाउडर ये सारी चीज़ें आप उनको डेली लगाइए, और अगर आप जैसे नहीं नहला सकते हैं तो स्पंज बाथ डेली दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरी दादी जब बीमार थी, मतलब जब लास्ट दिनों में थी वो अपने डेथ से पहले, तो उन्हें भी हो गया था और करीबन वो आई थिंक 2-3 महीने थी इसी कंडीशन में। तो उनको हम लोग क्या करते थे कि उनको हम लोग प्रॉपर नहीं नहला सकते थे, लेकिन हम लोग स्पंज बाथ देते थे डेली, और काफ़ी केयर करते थे, पूरा कपड़े चेंज कराना, पाउडर लगाना अच्छे से, और हम लोग थोड़ी देर वो मतलब बैठ जाती थी उठकर, हाँ। तो हम लोग उनको उठा के थोड़ी देर बिठा देते थे, जैसे हाँ, आधे
5: क्योंकि उनको भी फिर थोड़ा सा बेटर फील होने हाँ, लगता है
6: हाँ। आधे घंटे जितना बैठ पाती थी, मतलब जितने में उनको ये रहता था कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो उतनी देर में वो आराम से बैठी रहती थी। बिठाने से क्या होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि अगर इंसान बीमार है तो लेटा रहने दो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। लेटे लेटे भी पीठ दर्द करने लगती है, कभी आप प्रॉपर लेट के देखिए, पूरा दिन आराम करना हो किसी को नहीं कर पाएगा।
5: हाँ बिल्कुल, पीठ दर्द करने लगती है एक बार में ही। हाँ
6: उठा के बिठा दीजिए, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, एक दो कदम चल सकते हैं तो एक दो कदम आप उनको चला दीजिए। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट करती है, नसें हमारी खुलती हैं, तो आराम महसूस होता है। और सबसे मेन बात ये कि मेडिकल फैसिलिटी में भी अब हो गया है कि आप कोई जेल कोई क्रीम अगर पीठ की साइड में लगा देंगे तो वो उनको जो एक जैसे एक साइड लेटे रहने से कई बार रूखी हो जाती है स्किन, वो नहीं होगा
5: हाँ।
6: कि वो मेडिकल साइड में पूरा अच्छे से रहेगा और घाव होने के चांसेस भी कम
5: होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है अंशिका, कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके घर पे है तो उससे ना एक मेंटली जो होता है ना टॉर्चर, वो नहीं करना चाहिए।
6: बिल्कुल मैम,
5: वो नहीं करना चाहिए। और मैंने ये देखा है कहीं पे, मैं अब क्या ही उसको रिवील करूं, मैंने देखा है कि वो ना उम्र बढ़ने के साथ साथ में ना घर वाले उनके साथ टॉर्चर फेस करने लगते हैं कि तुम तो पड़ी हो यहाँ पर और तुम्हें क्या है, और फेस तो हम लोग कर रहे हैं, ये क्या है वो क्या है। तो इस तरीके का बिल्कुल भी टॉर्चर वाला सीन नहीं होना चाहिए।
6: बिल्कुल, साथ ही साथ में गद्दे जो आप यूज कर रहे हैं वो बबल मैट्रेस होने चाहिए। बबल मैट्रेस का मतलब होता है कि फॉर्म के गद्दे जो आते हैं ना बिल्कुल फूले फूले हुए हाँ। आजकल वो सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि फॉर्म के होने के कारण से बहुत सॉफ्ट होते हैं। समता मैम, कल आपकी अनुपस्थिति में बहुरानी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। फिक्स डिपॉजिट कैसे करना है बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई थी, आपको बहू एकदम सीधी साधी और बिना खर्चीली मिली है।
5: अच्छा, तो यानी सास का असर है, सास भी बहुत अच्छी ही है, समझ में आया। ऐसा नहीं है,
6: ऐसी मुझे अगर रियलिटी में मिल जाती तो फिर तो बहुत अच्छा था। चलो देखते हैं कैसी मिलेंगी वो,
5: लेट्स सी,
6: बात की बात है। खैर, कहने का मतलब ये था कि फॉर्म के गद्दे जो होते हैं यानी बबल मैट्रेस होते हैं वो सॉफ्ट बहुत होते हैं, तो सॉफ्ट रहेंगे तो उन्हें आराम रहेगा। दूसरी चीज ये कि किसी को फिजिकली फिट रखने से ज्यादा उसे
5: मेंटली
6: फिट रखना बहुत,
5: वही मैंने अभी तो बताया
6: ना, मैम ने अभी बताया आपको। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे शब्द बहुत असर करते हैं। शब्द असर करने का मतलब होता है कि आप जैसे मैंने किसी से कहा अरे आइए ना प्लीज आप वहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठो, यहाँ से कहीं हिलना मत, तो दोनों में अंतर है। क्योंकि बोलने
5: कल अंशिका ने यही बताया था टॉपिक
6: हाँ।
5: और कल मैं ये थोड़ी देर मैंने सुना था कि शब्द बहुत मैटर करते हैं और दोनों में कितना डिफरेंस होता है कि आइए आप बैठ जाइए और सुनो तुम वहाँ बैठ जाओ, मतलब
6: हाँ।
5: दोनों में कितना डिफरेंस है।
6: बिल्कुल मैम, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए क्योंकि देखिए किसी को आप कह रहे हो कि जैसे हम कई बार ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हैं जो रिश्तों में बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इस पोजीशन में है, पहली बात तो भगवान न करे कि कोई इस पोजीशन में हो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर कोई है तो वहाँ उसे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है,
5: बिल्कुल
6: न कि आप उसको फील कराओ कि तुम एक ऐसा बेकार हिस्सा हो जिसे हम बोझ की तरह सिर्फ ढो रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए अर्थ गोल होता है ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अगर आज आपके माता पिता या किसी के भी माता पिता इस कंडीशन में हैं, तो हो सकता है कल आप भी हो। अगर आप आज अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, आपकी औलाद कल आपके साथ वैसा ही करेगी। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि मतलब हमारे माँ बाप अपने माँ बाप के साथ जो करते हैं, बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है वही सही है। आप उन्हें अब्यूज वर्ड यूज कर रहे हैं या उन्हें कह रहे हैं कि अरे नहीं तुम्हारा क्या है, बस तुम तो हो, हमें तुम्हें झेलना पड़ रहा है या कुछ भी ऐसी, तो वो बच्चों में भी आता है कि अच्छा इसका मतलब है कि अगर माँ बाप इस कंडीशन में पहुंच जाएं तो बच्चे उन्हें झेलते हैं। तो उनके मन में कल ये आ जाएगा कि अगर आप उस पोजीशन में होंगे तो वो भी कल आपको कहेंगे कि हम आपको झेल रहे हैं। तो ऐसा ना करें। और मेंटली सपोर्ट का मतलब है कि किसी को ये समझाना है कि देखो आपकी एज है। सबसे पहले तो उस इंसान को ये समझाना चाहिए कि आपकी एज है, दूसरी आपकी अवस्था ऐसी है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस तरह की मेडिकल कंडीशन किसी के भी साथ हो सकती है।
5: और ऐसा भी है अंशिका कि अगर एज का बड़े बुजुर्गों को मालूम होता है कि हाँ हमारी एज है, बट 100 की सीधी बात यार कि उन्हें ना एक पैम्पर की जरूरत होती है, उन्हें एक प्यार की जरूरत होती है, उन्हें एक लाड की जरूरत होती है कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये कंडीशन है, आई नो मुझे पता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ में वो प्यार का बिहेवियर करना चाहिए।
6: बिल्कुल। और मोटिवेट करना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप गिरते हुए इंसान को भी अगर दो बार कह दो ना कि उठ के चलो यार तुम चल पाओगे, तो वो चल लेता है। तो मोटिवेशन जरूर देना चाहिए।
5: बिल्कुल।
6: तो चलिए आई थिंक हमारी जो बकबक बकबक बकबक है मेरी वो
5: नहीं बकबक नहीं थी, ये बहुत ही अहम टॉपिक था। तो इस टॉपिक को हम लोग अभी करते हैं यहाँ पर फिनिश और सुनाते हैं आपको गाने, और उसके बाद आते हैं हम फिर न किसी किसी न किसी बहाने।
6: तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खा।
0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए? जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: ज्ञान स्थली 89.

0: और हमारे घर के जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल सूख गए क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हम ऐसे भी हो जाते हैं कि सेम ऐसे ही हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं, जब उन्हें हमें एक पानी रूपी स्नेह, पानी रूपी प्यार और पानी रूपी अगर केयर ना मिले ना तो वो भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं।
1: वाह,
0: अच्छी बात बोली ना,
1: पानी रूपी केयर,
0: मतलब कभी कभी ऐसे अच्छे विचार आ जाते हैं हमारे दिमाग में।
1: वो आजकल मैम कभी कभी अच्छा और काम रहने वाला जो थॉट है उस पर चल रही है ना, इसे
0: हीलिंग पावर।
1: यस मैम, बहुत प्यारे थॉट्स हैं, आप हमेशा ऐसे ही रहें
0: जी।
1: तो चलिए अब हम बात करते हैं पौधों की। तो पौधों की जब आप बात करते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है पौधों की जड़, क्योंकि अगर जड़ में, जैसे हम कहते हैं ना, जड़ से अगर सूखने लगेगा तो फिर पेड़ कभी जो है वो अपनी हरियाली उसमें नहीं आ पाएगी। तो आज कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स हम आपको बताएंगे जो कि जड़ को कैसे सही रखना है। तो सबसे पहले मैम बताएंगी और फिर मैं बताऊँ।
0: ओके, तो जड़ को कैसे सही करना है, जड़ को जड़ से ही सही करना है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट,
1: वैसे भी मैम सही अच्छे से करती है।
0: अच्छा, ऐसा
1: है। जी जी मैम।
0: तो गर्मी के मौसम में पौधों की जड़ को स्वस्थ रखने के लिए, उन्हें और पोषित करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि मैं आपको आज आपको बताना चाहूँगी।
1: बस एक मिनट मैम, क्योंकि गीता जी आ गई हैं, शुभ दोपहरिया लिख रही हैं और उन्हें दो बार मैसेज किया और हम दोनों बार नहीं ले पाए।
0: ओके,
1: तो गीता जी वेलकम सुन सहेली में, कैसी हैं आप?
0: गीता जी ये बताइए, बाहर बारिश हो रही है क्या? क्योंकि हम लोग तो स्टूडियो में बंद बैठे हुए हैं। तो नागेश्वर जी एंड बाकी लिसनर्स बताएं कि क्या बाहर बारिश हो रही है क्या आज?
1: अगर हो रही है तो फिर बहुत अच्छी बात।
0: हाँ, अच्छी बात है, तब तो बारिश हो रही है तो अच्छी बात।
1: जी मैम,
0: तो चलें
1: जी।
0: सबसे पहला पॉइंट होता है वॉटनिंग, यानी कि सही समय पर पानी देना। पौधों की जड़ों को ठंडा रखने के लिए उन्हें सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले या शाम ढलने के बाद पानी जरूर देना चाहिए। दिन में दो बार गर्मियों में पानी जरूर देना चाहिए। दोपहर में पानी देने से मिट्टी गर्म हो जाती है और इससे जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए दोपहर के समय थोड़ा सा पानी देना अवॉइड करें, ठीक है
1: जी।
0: दूसरा पॉइंट है कि डीप वॉटनिंग क्या होता है, कि जड़ों तक पानी अच्छी तरह पहुंचने के लिए गमले में तब तक पानी डालें जब तक कि वह नीचे बने ड्रेज होल, यानी कि जो छेद होता है वहां से पानी बाहर ना निकलने पाए, निकल जाए और जड़ें गहराई तक मजबूत हो जाए। कई बार देखा है मैंने कि कुछ लोग पॉट लेकर के आते हैं लेकिन उस पॉट में होल नीचे नहीं होता है, उस होल को कहते हैं डैमेज होल, यानी कि अगर पॉट में होल नहीं है तो उसे ज़रूर कर देना चाहिए। इससे आप कोई भी अगर पॉट लगाते हैं तो वो सड़ता नहीं है, समझ में आ रहा है?
1: जी,
0: पानी डालते हैं तो वो पानी सड़ता नहीं है, जड़ों को ख़राब नहीं करता है। दूसरा है कि मेलेंचिंग करें, यानी कि जड़ों को गर्मी से बचाने के लिए गमले की मिट्टी की सतह को सूखी घास, पुआल, पत्तियों या कोकोपीट की एक परत से ढक दें ताकि इसे मेलेंचिंग करते रहें, जो मिट्टी की नमी को उड़ने जो मिट्टी को ढक दे और उसकी नमी को उड़ने से रोकती है।
1: कहीं ना कहीं मतलब ये है कि नमी बना रहना बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: मेन पॉइंट ये है कि पौधों की नमी बनी रहे और सुबह और शाम को पानी देना चाहिए, दोपहर में पानी नहीं देना चाहिए। अगर आप दोपहर में पानी दे रहे हैं तो आपके जो घर के पूरे गार्डनिंग हैं, पौधे हैं, वो सड़ जाएंगे।
1: बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है कि बहुत ज़्यादा खाद पौधे में डालने से हमें बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम घर में भी खाद जो यूज़ होती है वो हम ऑर्गेनिक अगर कुछ हम यूज़ करते हैं, जैसे चाय पत्ती का पानी आप यूज़ करते हैं या छिलकों से बनी हुई खाद को इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बाजार से भी ले आते हैं कि नहीं नहीं यार पौधे बहुत अच्छे हो इसके लिए खाद डालो, लेकिन खाद डालने की भी एक कैपेसिटी होती है।
0: हाँ।
1: कई बार हम जरूरत से ज्यादा खाद डाल देते हैं जिससे पौधे की जड़ जो होती है वो सड़ जाती है, इसलिए खाद हमेशा उतनी डालिए जितनी जरूरत है।
0: आप अपने एक छोटे सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे अभी अंशिका ने बताया कि खाद को ज्यादा नहीं, आप ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है?
1: वही होता है जो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ है
0: और जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ है। तो भाई ज्यादा खाद डालने से क्या होता है? वही होता है ना जो मंजूर है खुदा होता है,
1: वो किसी और को मंजूर होता है, खुदा को मंजूर नहीं होता।
0: हाँ, ये तो बात सही है।
1: हमारी पेट,
0: हमारे भगवान नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो,
1: हमारे पेट को मंजूर,
0: हमारे पेट को मंजूर होता है। तो भाई ज्यादा खाद डालने से क्या होगा कि जड़ें जो हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और वो सड़ने लगती हैं। तो ठीक ऐसे ही जैसे हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो

0: हमारी पेड़ की नसें भी ढीली पड़ जाती हैं और फिर
1: हमें ढीला कर देती है,
0: अनर्थ कर देती है और हमें ढीला कर देती है।
1: खैर वो बहुत दुखद मंजर होता है और वो हम अभी यहाँ बैठकर याद तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे,
0: यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम लोग ये बात,
1: लेकिन आई होप कि लिसनर्स समझ रहे होंगे।
0: हाँ,
1: इस गर्मी में कभी ना कभी तो उस
0: सभी को हुआ है,
1: उस स्थिति से आप भी गुजरे
0: गुजर चुके हैं,
1: तो खैर वो स्थिति नहीं हो ऐसा हम चाहेंगे। और पौधों को भी स्वस्थ रखें और इस गर्मी में खुद को भी स्वस्थ रखें, जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा पानी देने से पहले अपनी उंगली से मिट्टी में जैसे 1-2 इंच अंदर डाल करके उंगली, और आप ये देख लें कि मिट्टी सूखी तो नहीं है। अगर मिट्टी सूखी है तो हम कहते हैं ना पौधों की रोपाई करनी चाहिए, तो वो मिट्टी ऊपर नीचे करना चाहिए, क्योंकि अगर सूखी मिट्टी को आप ऊपर कर देंगे तो जब उसमें आप पानी देंगे तो जो नमी वाली मिट्टी पहले से ऊपर थी वो नीचे हो जाएगी, और जो सूखी मिट्टी थी वो ऊपर हो जाएगी, तो प्रॉपर पानी मिल पाएगा। इसलिए मिट्टी की रोपाई करना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एक बार पौधे लाकर लगा दिए तो फिर मिट्टी नहीं बदलते, और जो कि मिट्टी बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जैसे आपने देखा होगा बालू वाली मिट्टी जब होती है तो पौधे जल्दी नहीं उगते, इसलिए जब भी पौधे लगाने के लिए मिट्टी लाते हैं तो हमेशा चिकनी वाली मिट्टी लाइए, और समय समय पर यानी हफ्ते में 1 बार या 2 बार मिट्टी को बदलते रहें। और गर्मी में और जड़ों में फंगस भी लग जाती है, फंगस लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए नीम के पानी का इस्तेमाल करें,
0: नीम के पानी का,
1: और अपने पौधों में फंगस ना लगने दें। नीम का पानी ऐसे ही यूज करना है आपको कि नीम के ढेर सारे पत्ते ले आइए और उसे एक बड़े से कंटेनर में डाल करके उसमें पानी डाल दीजिए और उसको उबाल लीजिए। जब तक कि वो पानी ग्रीन ना हो जाए तब तक आपको उबालना है। जब वो पानी ग्रीन हो जाए उसके बाद उसको एक बड़े से स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और अपने पौधों की जो जड़ें हैं उन पे स्प्रे कर दीजिए और मिट्टी पे भी कर दीजिए, और मिट्टी पे ज्यादा क्वांटिटी में करिएगा ताकि वो पूरा नीचे तक मिट्टी में नमी जाए, जिससे कि मिट्टी में भी फंगस ना लगे और जड़ में भी ना लगे।
0: जी,
1: तो ये थी कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स कि कैसे आप पौधों को अच्छा रख सकते हैं। नागेश्वर जी तो मैम हर जगह की जड़ तक पहुंच ही जाते हैं।
0: क्या हो गया,
1: आप खुद देखें। मतलब नागेश्वर जी ये लिखने की आवश्यकता थी नहीं यहाँ पर, सभी समझदार हैं, लेकिन अब आप हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ।
0: सही लिखा है उन्होंने, लूज मोशंस तो होता ही है।
1: नहीं वो तो
0: वो हम लोग नाम पूछ रहे थे ना, इतने उत्साहित थे नाम जानने के लिए
1: कि उन्होंने
0: रिवील कर दिया, उन्होंने नाम आखिर लिख ही दिया।
1: चलिए लिख दिया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यू गए यू आए, आप सुनते रहिए सुन सही स्टूडियो।

0: जी हाँ बिल्कुल, गोरी है कलाइयाँ, लेकिन हमारा टाइम हो गया है, हम लोगों दोनों को जाना है। तो उसके पहले अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स बाकी हैं जिसको हम आपके साथ शेयर किए बिना नहीं जा सकते हैं, क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल, और वैसे ये लाइन तो बिल्कुल सही थी कि गोरी हो कलाई या काली हो कलाई, जो चूड़ी पहनाए वो फंस जाए, ये तो सही है। इससे तो मैं इत्तेफाक रखती हूँ।
0: इत्तेफाक रखती हो, ठीक है, चलो आओ काम पे आ जाते हैं।
1: तो चलिए, वैसे जो फंसता है उसे ही भुगतना पड़ता है, हम तो मतलब सुकून में ही रहते हैं
0: जी।
1: तो अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट की कुछ टिप ऑफ द डे, जो कि हमारा आज का होने वाला है, और वो क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताते हैं। तो टिप ऑफ द डे आज ये होने वाला है कि घर के बड़े बुजुर्गों को रोजाना 20 से 30 मिनट सुबह टहलना चाहिए, और साथ ही साथ में हल्के योग और प्राणायाम जरूर करने चाहिए। ये टिप ऑफ द डे आज इसलिए है क्योंकि देखिए, हम हमेशा कहते हैं ना हेल्दी रहो हेल्दी रहो, लेकिन हेल्दी रहने के लिए सुबह की जो मतलब सुबह का टहलना यानी कि मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी कारण से आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम में करिए, लेकिन दिन भर में अगर आप 20 से 30 मिनट पैदल चलते हैं किसी भी कारण से तो आप स्वस्थ रहते हैं,
0: जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में रहती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके लिए, और गर्मियों में तो डायबिटिक पेशेंट के लिए पसीना आना, यानी कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है। वॉक कर रहे हैं, अगर वॉक नहीं कर पा रहे तो घर में छोटे छोटे काम जो कि बहुत सारे हो जाते हैं आप उन्हें करें। एंड सुबह की जो सैर होती है ना, कहा जाता है हम लोगों के टाइम पर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह की जो सैर है वो देशी घी का काम करती है, पता है?
1: तो ये इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये बड़े बुजुर्गों वाली बातें क्यों, तो बड़े बुजुर्गों वाली बातें जैसे मैम ने बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने और बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि वो सुबह की जो सैर होती है वो देसी घी का काम करती है। तो वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब हम सुबह टहलते हैं तो आपने देखा होगा और मैंने भी फील किया है कि हमारे फेफड़ों को ना बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन मिलती है,
0: प्योर ऑक्सीजन,
1: और उससे आपके फेफड़ों की क्लीनिंग होती है और इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में यानी कि हमारी माइंड तक में अच्छे से उसका आवागमन रहता है ना, तो हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए फिट रहें और फिट रहने दें,
0: फिट रहने दें। मतलब आपको फिट रहने देने से कौन रोक रहा है ये बताइए मुझे, नागेश्वर जी?
1: नहीं नहीं, नागेश्वर
0: कुमार जी,
1: कोई नहीं,
0: कोई नहीं।
1: जस्ट ये एक जैसे टिप ऑफ द डे में दे रहे थे, तो लास्ट में मेरा ऐसे कहना था कि खुद खुश रहें और दूसरों को रहने दे।
0: जी, तो चलिए हम दोनों को दें इजाजत, बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि हम सभी लोग आपको सुना के जाते हैं शो के एंड में, तो वो लगा दिया है। एंड मौसम भी बहुत प्यारा सा, जल्दी से चाहती हूँ मैं कि मैं बाहर जाऊं और देखूं। कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-89-14416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
8: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
9: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
10: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
9: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

हाँ जी श्रोताओं, तो वक्त हो गया है आपके अपने फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा का। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन। और वक्त अगर कहें तो 3:07 हो रहे हैं आपके स्टूडियो की घड़ी में। अब चलेंगे आज के सफर का आगाज करेंगे आज की पहली डिमांड के साथ में। और आज की डिमांड हम पे हम तक जो पहली पहुंची है वो है हमारे मुस्तफ़ा जी की सऊदी अरेबिया से। बड़े दिनों बाद इनकी डिमांड हम तक आई है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस डिमांड को और 3-4 के सफ़र को एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ। नेक्स्ट डिमांड जो होगी वो होगी हमारे दो लेसनर्स की सेम टू सेम, यानी कि सुनील कुशवाहा जी और नागेश्वर ढाकर जी की। फिलहाल सबसे पहले डिमांड लेते हैं अपने मुस्तफ़ा जी की सऊदी अरेबिया से। बड़े दिनों बाद इतनी प्यारी सी डिमांड हम एंजॉय करने वाले हैं, आइए एंजॉय करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आपने अभी एंजॉय किया मुस्तफा जी की इस डिमांड को सऊदी अरेबिया से, और अब हम नेक्स्ट डिमांड लेंगे सुनील कुशवाहा जी की जो हमें एमपी से सुनते हैं, और नागेश्वर धाकर जी की। दोनों ही लिसनर्स हमारे एमपी से हैं और दोनों की ही सेम डिमांड हम तक आई है। आइए एंजॉय करते हैं 3 से 4 के सफर में इस प्यारे से नगमे को। और आप भी अगर अपने ऐसे ही डिमांड्स को ट्यून करवाना चाहते हैं तो प्लीज कॉल ऑन 6393316429 यानी 6393316429 इस स्टे ट्यून गाइस।

हाँ जी, और बड़ी ही प्यारी सी डिमांड थी सुनील जी की और हमारे नागेश्वर धाकर जी की, और अब हम बढ़ेंगे आदिल साहब की डिमांड की ओर, और उसके बाद में आएंगे हम सुखी राम जी की डिमांड को कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आज के सफर में, 3 से 4 के सफर में आप सभी के प्यारे प्यारे डिमांड्स के साथ में। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा 90s हिट्स में से कुमार सानू की आवाज में, आइए सुनते हैं इस प्यारे सी डिमांड को। क्या बात है भाई, वॉट अ वाइब।

भाई लोग पागल हो जाते हैं और प्यार में पागल होना बनता है बॉस। फिलहाल हमारे पास में आ गई है एक कॉल और हम तब तक उसको रिसीव करते हैं। आप आनंद लीजिए तब तक हमारे प्यारे लिसनर सुखी राम जी के इस प्यारे से नगमे का। और कोई आके झांक के हमको चला गया है, हमको थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। नागेश्वर जी, हमारी तबीयत थोड़ी सी वाकई में बहुत ज्यादा वाली खराब है, फिर भी हम बस आप लोग से मिलने चले आए हैं, इतना ही कहेंगे। एंजॉय द ट्रैक। ओहो, व्हाट अ सॉन्ग भाई, आज तो घाघरा होना चाहिए।

भाई घाघरा घाट में बहा दिया गया था जो घाघरा, वापस से ले आया गया है, मतलब धुलने को गया था ऐसा कहा गया था कलम से, और आज घाघरे सभी के चढ़ गए हैं, सभी नृत्य करते हुए हमें दिख रहे हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। वैसे गाना बड़ा प्यारा है।

0: हाँ जी, और घाघरे के बाद अब आई है एक रौबदारी वाले गाने की बारी। भाई रौबदारी से ज्यादा कहीं ना कहीं ये हर एक दिल का हाल बयां करती है, और इसकी डिमांड की गई है हमारे प्रबल मिश्राजी पंडित जी के द्वारा। चलिए सुनते हैं भाई कल से इनके दिमाग में चल क्या रहा है। आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारी से ट्रैक को।
1: क्या बोले थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं।

आज ही तो इस तरह से इस गाने का आप लोगों ने अभी आनंद उठाया है और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। पंडित जी क्या बात है, आगे बढ़ते हैं अभी हम देव प्रसाद जी की डिमांड के साथ में। देव प्रसाद जी ने आज एकदम से फेम ही चेंज कर दिया है, इनका क्या मन है आप लोग सुनिए इस गाने के माध्यम से क्या चाहते हैं ये। एंजॉय करते हैं इनके ट्रैक को, यानी कि हमारे देव प्रसाद जी की प्यारी सी डिमांड को। आइए, मगर जाने का नहीं।

हाँ जी, तो ये थी आज की हमारी देव प्रसाद जी की डिमांड। भाई बड़े दिनों बाद इन्होंने सैड सॉन्ग से निकल करके थोड़ा सा रोमांटिक वाले सॉन्ग की डिमांड की थी, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में आई हुई रमेश कुमार जी की फ्रॉम महाराष्ट्र। डिमांड बहुत सारी, इसलिए लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या सुनिए और सुनाते रहिए अपने FM को, यानी 89.6 FM के साथ में ऐसे प्यारे नगमों को।

भाई दोस्तों, सारी गलती नजरों की होती है, नजरों से ही सब कुछ शुरू हो जाता है। और जब देखा यार को, दिल में गिटार बजी, उसके बाद में अगर एक दो तार इधर उधर हो गए ना, ओ माय गॉड, फिर फिक्स कौन करेगा। खैर कोई बात नहीं, आप फिक्स करवाते रहिए ऐसे प्यार प्यार नगमों के साथ। में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे पास में अमित कुमार जी की। अभी आपने एंजॉय किया रमेश कुमार जी की डिमांड को, जो मैं सुनते हैं महाराष्ट्र से। और चलिए अमित जी की डिमांड के बाद आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के, सबलू सावंत जी की, फ्रॉम कहाँ से, मुंबई से।

भाई किसको बारिश याद करती है नहीं पता, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल के लिए बारिश को याद करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यकीनन। और आज थोड़ा सा मौसम हमारे गोंडा का बदला हुआ है, थोड़ी बहुत बदली है, जिसकी वजह से अगर कोई इधर से उधर आ जा रहा है मतलब अपने अपने कामों पर, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो रहा है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे सबलू जी की ओर से गर्मी के लिए।

भाई गर्मी का पूरा एक्चुअल वाला एक्सप्लेनेशन इस गाने के माध्यम से आपने प्राप्त कर लिया है। हाय रे गर्मी, उम्मीद है कुछ दिनों में बारिश बरसात और मेघों के गरज के साथ में दो चार चीट के बूंदे, मतलब बूंद की छींटे हम सब पर जरूर पड़ेंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे पास में आई है मनी शर्मा जी की और साथ ही साथ में अजय मिश्रा जी की फ्रॉम कहाँ से, हाँ जी गोंडा से, इतना तक काहे को सोचने लगते हैं। एक लोग रहते हैं भटपुरा, एक लोग LBS चौराहे के पास, यानी कि मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी हमारे। चलें इन दोनों की डिमांड पे कंप्लीट करते हैं इस प्यारी सी डिमांड को, 90s हिट्स में से एक बहुत मस्त वाला गाना।

हाँ जी, और इस गाने के बाद अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। ये डिमांड किसी और की नहीं, हमारे पास में आई हुई अरविंद मौर्य जी की, जो कि हमें मनकापुर से सुनते हैं, और हमारे प्यारे मुकेश जी जो हमें दिल से सुनते हैं। और इसी में ऐड करेंगे हम अपने के गुप्ता जी को भी। आज सभी नाचेंगे, हम भी नाचेंगे, आप भी नाचेंगे, और गाना बजेगा क्या, सुनिए और बताइए।

कुछ होता है, कुछ नगमे ऐसे होते हैं ऑटोमेटिक डांस करने का मन करता है। फिलहाल यार रहमान जी के म्यूजिक डायरेक्शन में, म्यूजिक कंपोजिशन में आवाज हमारे किसकी है ये आप सभी खुद बताएंगे, नहीं हम बता देते हैं, सुखविंदर जी की है। और बिल्कुल सही गेस किया तुम्हारे नागेश्वर जी ने, चल छैया छैया छैया।

ओहो, बड़े ही दिनों बाद सुखविंदर साहब की आवाज हमारे कानों में गई, बड़ा आत्मतृप्ति मिली मुझे, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी की डिमांड के लिए, मुकेश जी और के गुप्ता जी, और साथ ही में हमारे अरविंद मौर्य जी की ये प्यारी सी डिमांड थी। और अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे सुरेंद्र यादव जी की है गौरा चौकी से। फिर होंगे हमारे अजीज साहब की आज की जो डिमांड है, जो गजल है, आहा क्या बात है। फिलहाल एक प्यारी सी लाइन हमारे पास में आई हुई सबलू सावंत जी की, सांत्रा क्रूच मुंबई से लिखते हैं, बयां हो जाए जो लफ्जों में वो शायरी कैसी, बयां हो जाए जो लफ्जों में वो शायरी कैसी, जो छू ले रूह को गहराई से वो खूबसूरती कैसी, कुछ जज्बात तो आंखों में ही पलते हैं, हर अच्छी चीज की कोई नुमाइश नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, जो चीजें अच्छी होती है ना, वो उनको आंखों में ही रहने दीजिए, पर्दों में ही रहने दीजिए, वो पर्दों के पीछे ही अच्छी लगती है, पर्दा उड़ गया तो फिर उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रह जाता है। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं इस डिमांड के साथ में, फिर आते हैं चैट बॉक्स की ओर और आप सभी से मुलाकात करते हैं। फिलहाल आप एंजॉय करें 3 से 4 के सफर में आपके अपने फोन इंफॉर्मेशन कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा को, और ये डिमांड हमारे सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से।

हाँ जी दोस्तों, और कुछ सूरत ऐसी होती है ना जिसको देख के नहीं, अगर आप याद भी कर लेते हैं, आपके जहन में वो ख्याल भी आ जाता है ना, तो चैन आ जाता है। और शायद कुछ नाम भी ऐसे होते हैं जो अगर कानों में आ जाए तो ऐसा लगता है कहीं से कोई मिस्ट्री सी घुल गई है। और कितना भी आप नाराज़ हो, कितनी भी नाराज़गी हो, झट से कहाँ फुस हो जाती है पता ही नहीं चलती। फिलहाल बढ़ते हैं उस ओर जिस ओर आप सभी के पैगाम आए हुए, यानी कि मैसेजेस और चैटबॉक्स की ओर। चलिए अब रुख करती हूँ मैं आप लोगों के मैसेजेस की ओर, जिसमें मुझे सबसे पहला मैसेज जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है हमारे प्यारे रमेश यादव जी का, फ्रॉम गरीबी पुरवा। और गरीबी पूर्वा से इन्होंने हमको मैसेज भेजा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और उसके बाद में है सुरेंद्र यादव जी फ्रॉम गौरा चौकी, मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी अरेबिया से, उसके अलावा हैं आसिफ खान जी जो हमें सुन रहे हैं मुंबई से। आसिफ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदिल जी हमारे साथ में बने हुए, नागेश्वर ढाकर जी हैं रतलाम की गलियों से, प्रबल मिश्रा जी पंडित जी हमारे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैसेज में है हमारे मनी शर्मा जी फ्रॉम भटपुरवा, सबलू सावंत जी हैं सांता क्रूज से, और घाघरा हम भी कहते नहीं मिलेगा, नागेश्वर जी के पास मिलेगा ऐसा कहना है मुस्तफ़ा जी का, मतलब लहंगा। और जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। तो बिल्कुल, घाघरा नदी तो भाई हमारे लखनऊ में ही पड़ती है और बस वही मिलेगी, आप चाहे जहाँ भी घूम लीजिए। और उसके बाद में है हमारे मुकेश यादव जी जो हमें सुनते हैं दिल से, गुड आफ्टरनून डियर मैम आर्जाकांक्षा जी, हाँ जी थैंक यू सो मच। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे बीच में है हमारी सबलू सावन जी फ्रॉम हथियागढ़ गोंडा। जी हाँ, हथियागढ़ से हम आज तक हाथी नहीं मंगा पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हम हथियागढ़ से हाथी ज़रूर मंगाएंगे, भले ही वो लकड़ी का क्यों ना हो। कमल नैन जी हैं हमारे बड़े ही प्यारे लिसनर हैं, और इनकी डीपी आज चेंज हो गई, बड़ा गौर फरमा के देखना पड़ेगा, फुर्सत में ज़रूर देखना चाहेंगे। इसके अलावा हमारे बीच में जुड़े हुए हैं हमारे मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी, और सन्नो शुक्ला जी हैं भाई, बड़े दिनों बाद इनके दर्शन हो रहे हैं हमें। और नागेश्वर जी, आपसे कोई ब्रेकअप कर सकता है हमको तो नहीं लगता, और हाँ ज़्यादा हंसाएंगे तो इंसान रोते रोते जाएगा ना, तो फिर दोबारा नहीं आएगा, यही होता है। खैर कोई बात नहीं, प्यारा से चुटकुला था। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज में, तो भाई आज इन्होंने चंगू मंगू के ऊपर भी एक चुटकुला लिख दिया, लेकिन चंगू मंगू गायब है इसलिए हम नहीं पढ़ने वाले हैं। फिलहाल नीना जी हमारे साथ में बनी हुई, लेकिन जब तक जोड़ी कंप्लीट नहीं होती हम चुटकुले नहीं लेते हैं। तो चंगू जी हमारी हैं, मंगू जी गायब है, कोई बात नहीं, आज कहीं बिजी होंगी। के गुप्ता जी हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किए हैं गानों को, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है मुकेश जी की ओर से, और पता नहीं क्यों मुकेश जी के नाम के साथ में मुझे मुकेश अंबानी जी याद आ गए, भगवान करे आप ऐसे ही हो जाए। फिलहाल मैसेज है, जाने क्या जमाना हमसे चाहता है, ओहो जाने क्या जमाना हमसे चाहता है, हर कोई हमें आजमाना चाहता है, जाने क्या बात झलकती है हमारे चेहरे से, पक्का शहर टपकता होगा, जाने क्या बात झलकती है हमारे चेहरे से, हर कोई हमें हंसा कर रुलाना चाहता है। यही होता है ना जब दिल टूटता है, अरे इतना दिल ना टूटे, दिल लगाने को बहुत कुछ है इस दुनिया में, कहीं भी लगा लीजिए हमेशा हंसते रहेंगे। खैर, और अगर आपने सही जगह पर दिल लगाया होता तो रोने की नौबत ही ना आती, बस इतना ही कहेंगे। सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, विकास तिवारी।

जी भी भाई आ गए हैं उन्नाव से, लिखते हैं हम हूँ हैं। आकांक्षा मैम देर से आए, कोई बात नहीं, आप देर से भी आते हैं तो हमको लगता है बहुत जल्दी आए, मालूम है आप बिजी होते हैं इसलिए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है अजीत साहब की फ्रॉम मुंबई, बहुत प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल को पसंद करते हैं हम और हमारे प्यारे इट्स कुमार साहब, लेकिन आज वो भी विलुप्त है। कोई बात नहीं, सभी आज हमें लग रहा है काफ़ी बिजी हैं, लेकिन हम बिजी हैं आप सभी के सॉन्ग्स के साथ। एंजॉय करिए।

बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड है जी साहब आपकी, बहुत बहुत प्यारी। और मुकेश जी का कहना है आप शायरी को इतना सीरियस क्यों ले लेती हैं मैम जी, बस इतना कहेंगे कि शायरी शायरी नहीं होती है, जिंदगी का वो सफर होता है जो चंद लाइनों में चंद अल्फाजों में इंसान बयां करता है, जिसको शायद वो कभी शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम उसे टैली कर पाते हैं, हम आपस में जुड़ाव रख पाते हैं उन शब्दों से जो शायर ने लिखा होता है, बस इसीलिए आपको लग गया कि हम सीरियस ले लेते हैं, बाकी तो हम दुनिया में कुछ भी सीरियस नहीं ले पाए आज तक, खुद को नहीं ले पाए, बातों को कैसे लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास आई है बड़े दिनों बाद राम नरेश जी और क्षमा जी की ओर से। भाई किसी का बाला गुम गया है, तो चलिए ढूंढ लेते हैं इस गाने के माध्यम से, और उसके बाद आते हैं रई साहब की डिमांड के साथ में, फिर होंगी रीना जी, और उसके बाद में होंगे हमारे प्यारे लिसनर रमेश यादव जी फ्रॉम गरीबीपुरा और राकेश वर्मा जी, फिर अगर वक्त रहा तो तीन और डिमांड चार हमारे पास में बाकी हैं।

जी हाँ राम नरेश जी, हमने पक्का वाला ढूंढवाया है, मिल गया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि सोने बहुत महंगा, अगर खो जाएगा ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हम समझ सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास में आई है रईस जी की ओर से, और अभी जो आपने एंजॉय किया वो हमारे राम नरेश जी और क्षमा जी की डिमांड थी।

लवली माँ, क्या बात है भाई। रईस मूवी से रईस आपकी डिमांड आपने अभी एंजॉय की, और अब हम बढ़ते हैं रीना शर्मा जी की डिमांड की ओर, जो कि हमें सुनती है रुड़की उत्तराखंड से। उसके बाद में हमारे रमेश यादव जी होंगे गरीबी पुरवा से, और आज की लास्ट डिमांड हमारे प्यारे राकेश वर्मा जी की फ्रॉम जस्ट बगल, हाँ जी, दुखरना से।

और भाई सभी को बाला मिल गया है सोने का, इसलिए सभी ने ढूंढ लिया है, लेकिन देने को कोई तैयार नहीं। कोई बात नहीं, आप सभी अपने पास रखिए, खुश रहिए, इतना ही काफी है। विकास जी लिखते हैं, भाई लो भाई हमारी ओर से भी एक शायरी है, प्यार करना अगर गुनाह है तो हम भी ऐसा गुनाह करना चाहेंगे। बेशक करिएगा, बस इतना याद रखिएगा सामने वाला आपसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करे, बस इतना ही। उसके बाद जिंदगी आपकी कहाँ से कहाँ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते, थोड़े में बहुत ज्यादा आप फील करने लगेंगे, हर एक खुशी आपको चार गुना होकर मिलेगी, ये मेरा तजुर्बा है इसलिए बता रही। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में आया हुआ है हमारे उस्मान खान जी का, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है प्यार कभी कम नहीं करना, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी हाँ, रमेश यादव जी, इसके बाद आपकी ही डिमांड है, एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर को अपने आरजे आकांक्षा के साथ।

को जुदा मत करना चाहे सर को कलम कर देना। ओ हो क्या बात है। और सन्नू जी का कहना है मैम की बात बिल्कुल सच है, मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं। सन्नू जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर और इस डिमांड के साथ में फिर हम आएंगे आज की लास्ट डिमांड लेकर के। लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे जिन जिन की डिमांड रह जाएगी आज, अभिनव पांडे जी, निजाम साहब और इसके अलावा हमारे प्यारे मुमताज अंसारी जी और हमारे संतोष जी जो हमें गिलौली से सुनते हैं। भाई मैं कितनी भी कोशिश करती 3-4 डिमांड रह ही जाती है, आज भी कुछ डिमांड छूट रही है लेकिन गाने सभी एक से बढ़ के एक उम्दा थे। ये डिमांड हमारे रमेश जी की, रमेश यादव जी की, फ्रॉम गरीबी पूर्वा।

हाँ जी, और आज की लास्ट डिमांड लेते हैं हम अपने रमेश नहीं राकेश वर्मा जी की, जो हमें सुनते हैं दुखरना से। और इसी के साथ बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट आपसे शो खेत खलिहान में, आइएगा जरूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधुली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधुली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ श्रोताओं, बिल्कुल से सही बात है कि जब मौका मिलेगा तो हमें बताना होगा कि हम अपनी प्रकृति से, अपनी प्रकृति माँ से, अपनी खेती बाड़ी से कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। और उसी विषय को लेकर के मैं हाजिर हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। भाई, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 5:12 हो गए, शाम का वक्त है और दिन है गुरुवार, यानी कि आपके अपने शो की बारी है और शो है आपका खेत खलिहान। चलिए तो फिर आज आपसे रूबरू कराते हैं अपने गेस्ट को और अपने विषय को, लेकिन उससे पहले अपने को होस्ट को। भाई, हमारे साथ में मौजूद है हमारे इरफान शाह जी, जो कि हमारे साथ में बने हुए हैं और ये आपको बताएंगे कि आज का विषय क्या है।
1: सबसे पहले तो किसान भाई बहनों को
2: नमस्कार,
1: और हमारे सुनने वाले जितने भी लोग हैं सबको एक बार पुनः नमस्कार।
0: बस नमस्कार
1: जी, नहीं।
0: और ये जो मौसम का हाल है वो कौन बताएगा?
1: देखिए, मौसम का हाल जो है, आज कुछ मौसम जो है वो हल्का सुहाना हुआ है।
0: हल्का सुहाना हुआ है या सुहाना हुआ है?
1: हवा जो है वो चल रही है।
0: हाँ जी,
1: राहत, गर्मी से कुछ राहत मिली है मतलब।
0: हाँ हाँ, ये बात तो सही है। और मुझे लग रहा है कि आप जब सफ़र करके आ रहे होंगे तो आपको इस बात का बिल्कुल से मतलब आनंद भी आपने उठाया होगा कि मौसम जब धूप तपिश से हम थोड़े से राहत में जाते हैं तो हमको कितना सुकून मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम अपनी खेती और उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें तो हमारी मिट्टी को, हमारी प्रकृति को कितना सुकून मिलता होगा, ये सोचने का विषय है। और आज इसी विषय को लेकर के हम सोचेंगे भी, इस पर वार्तालाप भी करेंगे और अपने समस्याओं से भी कहीं ना कहीं आपके हम रूबरू होंगे। तो कौन है हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट और आज का विषय क्या है ये बताएंगे हमारे को होस्ट यानी इरफान शाह जी।
1: जी बिल्कुल, देखिए मैम, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सूबेदार सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मंदसौर यूनिवर्सिटी MP में
0: जी।
1: और आज का जो विषय है वो खेत बचाओ अभियान पे होगा, क्योंकि मिट्टी जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मिट्टी हमारी सही रहेगी तभी हम खेती बाड़ी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो टीका जरूरी होता है, उसी तरीके से मिट्टी का जो है वो जांच कराना, और मिट्टी जब स्वस्थ होगी तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज का विषय हमारे बीच में बिल्कुल से बता दिया गया है कि भाई किस तरह से हमें अपनी खेती को बचाना है, अपनी मिट्टी को बचाना है, और बतौर एक्सपर्ट हमारे बीच में हैं डॉक्टर सूबेदार सिंह जी, कृषि संकाय मृदा विज्ञान विभाग सहायक प्राध्यापक हैं। और ये यहाँ से नहीं है, ये आए हैं भाई MP से, बड़ी दूर से आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इतनी दूर से आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है?
3: बहुत अच्छा मैम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार, और जो जहाँ तक आवाज़ जा रही है
0: जी,
3: सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि जैसे एक मिट्टी है तो सब कुछ मिट्टी के थ्रू ही आ रहा, जैसे एक फिल्टर के तौर पे मिट्टी काम करती है। अगर हम पानी भी पीते हैं तो वो एक फिल्टर होके पानी मिट्टी से ही निकाल के हम लोग पीते हैं। यदि इसको हम संरक्षित करेंगे, और मान के चलिए इसमें पेस्टिसाइड हो गया या कुछ केमिकल या केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, तो अगर हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा होगा। दूसरा, हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो मिट्टी के अंदर जो पानी है, वो भी कम दूषित होगा और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और दूसरा, फसल जो होगी, फसल भी अच्छी होगी, स्वस्थ फसल हमको मिलेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा निरंतर। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल, तो आज हम बात करेंगे खेती को कैसे बचाएंगे और अपनी जीविका को कैसे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ में हमारी मृदा का के स्वास्थ्य पे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हमारे सर उसी के एक्सपर्ट हैं। और हमारे बीच में भाई बतौर हमारे लिसनर्स मौजूद हैं जो चैट बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो नागेश्वर धाकड़ जी हैं, ये रतलाम की गलियों से, ये भी आपके MP से ही हैं, बिलोंग करते हैं। मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी अरेबिया से, और इन दोनों ने आपको गुड इवनिंग बोला है। गुड इवनिंग टू यू।
3: वेरी गुड इवनिंग
0: जी। और इसी के साथ में अब हम बढ़ेंगे कार्यक्रम की और आज का चूंकि विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, खेती की बात करें उससे पहले हमारे खेत की बात करते हैं। अगर हमारा खेती नहीं होगा तो हम खेती की बात कहाँ से कर लेंगे। तो आज सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर, कि आज के समय में खेती को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या?
3: जैसे खेती को बचाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जैसे यदि हम उसको खुला छोड़ते हैं या फिर बहुत बारीक अगर जुताई हम करते हैं तो जो ये अपरदन की समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है
0: जी।
3: तो हमको अपने खेत को खुला नहीं छोड़ना चाहिए
0: जी।
3: उस पर कुछ ना कुछ कवर फसल लगा के रखनी चाहिए। जैसे अगर उसमें नमी नहीं है तो इरिगेशन कर देना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, जिससे अगर हवा चले तो वो मिट्टी के जो कण हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जाएं। अगर हम फसल लगा के उस पर कोई रखते हैं तब भी हमारी जो जो मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो आपस में बंध के रहते हैं
0: जी,
3: और इरोजन नहीं होता है
0: जी। और हमारे बीच में एक कॉलर जुड़ गए हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, फिर आते हैं उनके सवाल को पहले ले लेते हैं। हेलो,
2: हेलो दीदी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, आपका गला बैठा है या फिर आपके गले की तबीयत बैठी हुई है?
2: गले की तबीयत ना बैठी है ना गला बैठा हुआ है जी, मतलब कुछ वैसा हो ही गया कुछ।
0: कोई बात नहीं, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो।
2: खिचखिच दूर करो, धन्यवाद
0: जी।
2: सबसे पहले दीदी जी आपको और हमारे डॉक्टर साहब सुबेदार सिंह जी को और हमारे भैया इरफान सर को
0: जी जी
2: सादर नमस्कार स्वीकार हो।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, अपना शुभ नाम हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: मेरा नाम है विजय पाल यादव, ललहुआ लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है, कहिए क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये है, मिट्टी की जांच जो है कराना क्यों जरूरी है, और अगर जांच कराएं तो खेत में कहाँ कहाँ की मिट्टी लें?
0: मतलब आपको मिट्टी का नमूना कैसे लेना है ये जानना है
2: जी। हाँ ये, और इसके बाद में ये तो हमारा प्रश्न रहा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हो सके
0: जी
2: तो ये खेत कल्याण कार्यक्रम जो है हफ्ते में कम से कम दो दिन कर दिया जाए।
0: इसके लिए आपको हमारे प्रोग्रामिंग हेड सर से बात करनी पड़ेगी, आप बखूबी जानते हैं वो कौन है, अदनान सर, प्लीज उनसे बात करिएगा।
2: क्योंकि जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं उस पे खेत कल्याण कार्यक्रम रोज आता है।
0: ओके, तो हम बस आपसे यही कहेंगे कि सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे जो प्रोग्रामिंग हेड है उन तक आप अपनी बात को रखें ताकि उन तक वो बात पहुंच पाए।
2: और अच्छा दीदी, अगर उनसे बात करना चाहें तो हमारी बात उनसे कितने समय हो सकती है?
0: आप संडे के दिन जब आपका कॉल इन शो होता है 10 से 11, आप उस दिन प्लीज बात करिएगा
2: जी। हम बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि खेत खलिहान के द्वारा हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है
0: जी जी जी,
2: और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं
0: जी बेशक।
2: तो हम इसके लिए अपने सर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि मेरा मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये कार्यक्रम सुन रहे हैं
0: जी,
2: तो मेरी बात पर थोड़ा विचार जरूर करें
0: जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सलाह के लिए, सुझाव के लिए, और साथ ही साथ में आपके सवाल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। जी
0: धन्यवाद जी, सर धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में हमारे विजय पाल यादव जी, और इनका सवाल था सर, पहले आप इनके सवाल का जवाब दें ताकि फिर हम आगे बढ़ पाएं प्रोग्राम में, कि मिट्टी की जांच जरूरी क्यों है और नमूना कहां से लें?
3: जरूर, तो मैं पाल साहब को ये बताना चाहता हूं और जितने श्रोता हैं वो भी, किसान भाई हमारे जो जुड़े हुए हैं वो भी सुन लें, कि जैसे क्या होता है कि हम कोई भी फसल उगाते हैं और हमारा अगर निरंतर उत्पादन घट रहा है
0: जी,
3: तो हमको मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन अगर हर बार हमारा उत्पादन घटता जा रहा है तो मिट्टी की जांच हमको कराने से ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कौन से पोषक तत्व हमको डालने की आवश्यकता है। तो मिट्टी का नमूना जो लेते हैं हम, वो कब लेना चाहिए ये हम बता रहे हैं, कि जैसे बुआई के पहले नमूना लें या फिर कटाई के उपरांत नमूना लें। और नमूना कहाँ से लेना है, कैसे लेना है ये भी सुन लें आप लोग। जैसे जो खेत की डोल होती है जिसको हम मेढ़ कहते हैं, मेढ़ से लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर हम छोड़ देते हैं। 1 से 1.5 मीटर छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि हम जब फर्टिलाइजर उर्वरक देते हैं तो उस मेढ़ से टकरा करके वहाँ पर उर्वरक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहती है। उर्वरक की मात्रा ज़्यादा रहने से वहाँ पे फर्टिलिटी जो उत्पाद जो रेशियो है उसकी उर्वरता दर जो है वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम वहाँ की जगह को छोड़ करके और हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के लिए फावड़ा है, खुरपी है, और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको अगर बोलते हैं, अगर की सहायता से भी हम वो नमूना ले सकते हैं। नमूना हम 0 से 15 सेंटीमीटर तक लेंगे और 1 हेक्टेयर में हम 20 जगह से नमूना लेते हैं। अगर हमारी सीरियल क्रॉप है जैसे अनाज वाली जो फसलें होती हैं, हम 0 से 15 सेंटीमीटर तक 20 जगह से 1 हेक्टेयर भूमि से नमूना इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में हम उसको 4 भाग में बांट देते हैं। 4 भाग में बांटने के बाद में आमने सामने का हिस्सा उठा लेते हैं, तब तक हम ये बांटते रहते हैं चार हिस्सों में जब तक वो हमारी मिट्टी का वजन आधा केजी ना रह जाए। आधा केजी नमूने को लेने के बाद में हम नज़दीकी केबीके किसान कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ पे और ब्लॉक में भी इसकी जांच होती है। यदि आप लोग वो नमूना वहाँ पे पहुँचा देते हैं तो आपको वहाँ से एक सोयल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें ये पता चल जाता है कि आपकी मिट्टी का जो पीएच है, पीएच मान कितना है, क्योंकि पीएच मान बहुत ही ज़रूरी रहता है। पीएच मान अगर बढ़िया है तो आपके खेत में जो पोषक तत्व तो उपलब्ध हैं, हो सकता है वो पोषक तत्व तो हों, लेकिन पीएच घटने और बढ़ने की वजह से वो पर्याप्त मात्रा में फसल को ना मिल पा रहे हों। तो इससे क्या करेंगे हम कि वहाँ से जब आपको स्वास्थ्य सोयल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि हमको किस चीज़ या क्या चीज़ देना है, हमको कौन सा उर्वरक देने की आवश्यकता है। हो सकता है जो उर्वरक हम देते आ रहे हैं उसकी प्रतिपूर्ति हो, उसमें उस चीज़ को ना देना पड़े। तो मिट्टी की जांच कराने से एक आर्थिक जो पैसे का अतिरिक्त खर्च आता है वो बचता है और हमको उत्पादन जो है जितना हम चाहते हैं वो मिल सकता है। तो मिट्टी की जांच इससे बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच के बाद में हमको पूरी जानकारी मिल जाती है आगे आने वाली फसल में हमको कितना फर्टिलाइज़र देना है अपने खेत में और कितना कम करना है।
0: बिल्कुल, और बहुत ही कहीं ना कहीं आप जैसे किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं तो पहले अपने दिमाग में एक प्लान लेके चलते हैं, बस उसी तरह से ये भी होता है कि हमें पूरी तरह, जैसे मान लीजिए किचन में खाना बनाने बैठे हैं तो पूरी व्यवस्था कर ली है तो हमें वक्त बहुत कम लगता है, ज़्यादातर वक्त किस में लगता है, प्लानिंग करने में। तो वही मेन काम है हमारी मृदा परीक्षण का। और कहीं ना कहीं नागेश्वर धाकड़ जी ने हमसे पूछा कि गहराई कितनी बताई है नमूना लेने की, एक बार फिर से बता दें
3: जी। अगर हमारी अनाज वाली फसल है तो हम 0 से 15 सेंटीमीटर तक, मतलब ऊपर से 15 सेंटीमीटर तक हम लेते हैं। अच्छा, नमूना लेते समय ये थोड़ा ध्यान रखना कि ऊपर की जो मिट्टी है उसमें जैसे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर मिट्टी को हटा दें, उसके बाद में ही नमूना लें। उसको अगर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा आ जाएगा तो इससे जो फर्टिलिटी उर्वरक जो दर है मिट्टी की वो घट बढ़ सकती है। लेकिन अगर 1 से 1.5 सेंटीमीटर हम हटा देते हैं मिट्टी ऊपर की, हटाते इसलिए हैं क्योंकि वो अगर रहेगा तो यानी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में क्योंकि सारे पोषक तत्व होते हैं और सारे पोषक तत्व होते हैं तो उसमें जो हमारी जांच जब होगी लैब में तो उसमें उसका जो है वेरिएशन आएगा, ठीक है ना। तो उसको हटा के ही आप परीक्षण, आप नमूने को लें मिट्टी से, 15 सेंटीमीटर तक लेना है आपको सीरियल क्रॉप में।
0: और मुस्तफ़ा जी ने पूछा है, सर आप ये बता दीजिए कि जाँच फ्री होती है, इसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है?
3: जांच का जो खर्च है जो मिनिमम है, जैसे जो सरकारी रेट है वो 5 रुपये है, सिर्फ 5 रुपये, और कहीं कहीं तो वो भी नहीं पड़ता है, और यदि कोई ज़्यादा लेता है तो फिर वो गलत करता है।
0: बिल्कुल, वो दंड का पात्र है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप उसके खिलाफ मतलब जांच भी बिठवा सकते हैं। और इसी साथ में हमारे बीच में जुड़े हुए हैं कमल नैन जी, लिखते हैं गुड इवनिंग आकांक्षा मैम, आए हुए मेहमान जी को और महोदय जी इरफान जी को भी मेरा नमस्कार।
4: गुड इवनिंग
0: जी। और मनी शर्मा जी ने भी हम सभी को नमस्कार बोला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बढ़ेंगे फिर से अपने प्रश्न की ओर। जैसा कि मैंने आपसे सर प्रश्न रखा था कि आखिर में खेती बचाने में जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो होती क्या है?
3: खेती बचाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जैसे आजकल मैम ये हो रहा है कि जैसे क्लाइमेट अचानक से परिवर्तन हो जाता है, कहीं बारिश हो जाती है, जैसे अभी देख लीजिए तापमान कितना ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसमें जो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जैसे एसी वगैरह है ये सब चलाते हैं, तो इससे मतलब जैसे टम्परेचर जो है, अनियमित जो गैसें हैं जो हमको मतलब हानिकारक पहुंचाती हैं
0: जी,
3: वो निकलती हैं जिससे टम्परेचर बढ़ रहा है। जिस टाइम पे फ्लावरिंग होनी चाहिए उस टाइम पे फ्लावरिंग नहीं होती है, जिस टाइम पे फसल को बारिश चाहिए, जिस टाइम पे मतलब पानी चाहिए उस टाइम पे पानी नहीं मिल पाता है, जो उसको टम्परेचर जो तापमान चाहिए वो नहीं मिल पाता है, मतलब समय पे जो चीज़ चाहिए उसको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो है कि
0: समय पर होने वाली चीज़ों से नुकसान ही होता है कहीं ना कहीं, और जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसे खेतों पर प्रभाव पड़ रहा है हमारे। फिलहाल मैं बीच में एक और कॉलर जुड़ रहे हैं तो देखते हैं कि कौन है और क्या इनका सवाल है। हेलो,
5: हाँ मैम, मैं दिवांश त्रिपाठी बोल रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर?
5: मैं इटिया थोक से बोल रहा हूँ
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है इटिया थोक से आपका।
5: मुझे पूछना था कि जैसे मेरी जो मिट्टी है
0: जी
5: उसमें ऊसर बहुत है,
0: उसमें क्या है?
5: मिट्टी उधर उधर बहुत है, जैसे कि मतलब उसमें उत्पादन कम हो रहा है उस कारणवश, उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कैसे क्या करूँ, ये डॉक्टर साहब से पूछना था।
0: जी जी
5: डॉक्टर साहब को नमस्कार भैया।
3: नमस्कार जी, नमस्कार।
0: अभी एक और कॉलर मेरे साथ जुड़े। सर आपका जवाब आप तक अभी कुछ देर में पहुंचाते हैं, ठीक है सर जी। और देवांश त्रिपाठी जी थे हमारे साथ में, और एक कॉलर और जुड़ने की कोशिश कर रहे थे लगातार। खैर देखते हैं, अभी दोबारा कॉल आएगी तो ज़रूर लेंगे। तो इन्हीं के सवाल का जवाब दीजिए कि इनकी जो खेती है वो ऊसर सी है, मतलब जिसमें उत्पादन कम हो रहा है, तो उसको सुधारने के लिए क्या करें। लेकिन उससे पहले हमारे पास में कॉल आ चुकी है, ले लेते हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं कुशल पाल जी?
4: बहुत बढ़िया है बहन जी, ठीक ठाक हैं।
0: आज बताइए आपके स्माइल के पीछे किस चीज का राज है, गन्ने का जूस पिया है या ठंडा पानी?
4: ना गन्ने का जूस ही पिया है ना ठंडा पानी ही पिया है। इस समय बुराई कर रहे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: हाँ, तो मतलब प्रोग्राम सुनने का असर है।
4: ये जो विजय पाल यादव भाई खीरी वाले हैं,
0: जी जी,
4: उनको कोई सर्दी जुकाम है तो थोड़ा सा उन्हीं का असर मुझे भी हो गया है।
0: ओह, हमें लगा कि खीरी से है तो खीरा भेजा होगा आपके लिए।
4: सबसे पहले आपको, डॉक्टर सिंह साहब को, थोड़ा भाई इरफान को और आपके सारी टीम को सादर नमस्कार।
3: नमस्कार जी, नमस्कार।
4: उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। जैसे अभी मिट्टी का नमूना श्रीमान जी ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया, उसको सुन रहा था
0: जी,
4: कैसे मिट्टी की नमूना ले। लेकिन मैं पूछना श्रीमान जी से यह चाहता हूँ कि अगर खेत में हमारी फसलें ठीक ठाक लगी हो, बढ़िया कायदे से चल रही हो, तब भी क्या मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है? आप शायद हमारे प्रश्न को समझ नहीं पाए।
3: नहीं नहीं जी, मैं समझ गया हूँ।
4: और दूसरी बात डॉक्टर साहब
3: जी,
4: कि जैसे इस समय है कि खेत बचाओ अभियान चल रहा है, जैसे अभी अभी जो ज्ञान स्थली का पोस्टर है उसमें भी यही दिख रहा है कि खेत बचाओ
3: जी।
4: तो खेत सिर्फ किससे बचाना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों से ही बचाना चाहिए या और बहुत सारे कारण होते हैं, कौन कौन से कारण खेत गड़बड़ हो जाते हैं उनको बचाना चाहिए?
3: देखिए बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, जैसे रासायनिक उर्वरकों से भी बचाना है। और
4: डॉक्टर साहब और इसी में है।
0: हाँ जी कहिए
4: डॉक्टर साहब। जैसे किसान लोगों ने और कुछ फैक्ट्रियों के कुछ अधिकारियों के कहने से, जैसे मूलतः हम लोग गन्ने के किसान हैं, तो खास करके गन्ना कर्मचारियों अधिकारियों के कहने से हम लोगों ने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक का जमकर प्रयोग किया है, ये बात सही है? तो जैसे एकाएक किसान रासायनिक उर्वरकों को बंद कर दें तो क्या होगा, उपज उतनी ही होगी जितनी हो रही है कि उपज घटेगी, ये जानना चाहता हूँ।
0: ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपके सवाल का जवाब आप तक पहुँचता है, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच में हमारे कुशल पाल तिवारी जी, और इनका सवाल हम तक पहुंच गया है। उससे पहले हम चलेंगे देवांश जी के, जो हमें सुने थे इटिया थोक से राम जी के, उनके सवाल की ओर कि सर वो अपनी उपज को बढ़ाने के लिए अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे सुधारें।
3: जी मैम, उन्होंने ये पूछा था कि जैसे हमारी जो भूमि है वो ऊसर हो गई।
0: हाँ, ऊसर हो गई है।
3: तो ऊसर का मतलब ये है कि उनकी जो मिट्टी का जो पीएच है, तो पीएच मान जो है वो 7 से ऊपर है। अच्छा, जो ऊसर मिट्टी बनती है वो दो प्रकार से बनती है, यदि 7 के ऊपर पीएच है और 8.5 के अंदर है तब हमारी सेलाइन सोर यानी लवणीय मृदा बन जाती है। अगर 8.5 के ऊपर है तब हमारी मिट्टी जो होती है क्षारीय बन जाती है
0: जी,
3: जो कि बहुत ही हानिकारक है, उसमें उत्पादन जो है वो बहुत ही घट जाता है
0: जी।
3: यदि 8.5 के अंदर है, 7 के ऊपर पीएच है, तो हम फिजिकली उसको यानी भौतिक रूप से, भौतिक उपाय से हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसमें हम क्या करें कि जो लवण होते हैं वो मिट्टी के ऊपरी सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि हमको थोड़ा सा वाइट दिखता है, सफ़ेद टाइप का, तो हम उसको स्क्रैप कर सकते हैं, उसको खुरच करके अलग हटा सकते हैं। दूसरा
0: तो
3: उपाय
0: ये सर, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी, ये जो सफेद जो हमको दिखता है वो खाली ऊपरी परत ही होती है, तो मतलब उसको हम हटा के पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं?
3: बिल्कुल, ये क्योंकि जैसे नमी जो होती है, नमी तापमान की वजह से उड़ जाती है, और जो नमक के जो सोडियम आयन होते हैं या हाँ। जो लवण होते हैं वो ऊपर ही इकट्ठा रहते हैं।
0: ओके।
3: यदि हम उसको स्क्रैप करके अलग हटा देते हैं तो कुछ हद तक हमारे उसमें नमक की मात्रा कम हो जाती है, लवण की मात्रा कम हो जाती है
0: जी।
3: और उसके बाद में हम उसको गहरी जुताई करके सिंचाई कर दें। अच्छा, इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर 8.5 के अंदर का पीएच है तो उसमें जो लवण होते हैं वो घुलनशील होते हैं।
0: इससे पहले हमें लगता है कि हमारी मृदा की जांच करा लेनी चाहिए या नहीं, जरूरत है उसकी या नहीं?
3: क्योंकि अगर ऊसर है वहाँ पे उन्होंने बता दिया है तो यानी कि वो बिगड़ चुकी है मृदा, उसको ठीक करने का मैं उपाय बता रहा हूँ और मिट्टी के तो जांच करानी ही चाहिए।
0: लेकिन उससे पहले हमें उसका स्वास्थ्य, मतलब जैसे फर्स्ट एड होता है, वो हमें देना ही होगा।
3: हाँ, क्योंकि जैसे उन्होंने ऊसर बता दिया तो यानी ऊसर का मतलब ही है वो बीमार है, तो मैं उसका उपाय बता रहा हूँ
0: जी।
3: तो जैसे कि अगर फिजिकल मेथड या भौतिक उपाय से हम ठीक करना चाहें तो 8.5 के अगर अंदर और 7 के ऊपर पीएच है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो लवण होते हैं वो घुलनशील होते हैं
0: जी।
3: यदि 8.5 के ऊपर का पीएच है तो हम उसको फिजिकल मेथड से या भौतिक उपाय से नहीं ठीक कर सकते हैं, फिर उसके लिए हमको केमिकल मेथड अपनाना पड़ेगा, रासायनिक उपाय अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए जो बाजार है उसमें हमको पायराइट मिलता है और जिप्सम मिलता है
0: जी।
3: पायराइट और जिप्सम का हम उपयोग करें, अगर एक फसल रोक करके अगर हम जिप्सम का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो मिट्टी का पीएच है वो उदासीन की तरफ बढ़ेगा और हमको उत्पादन उसके बाद में अच्छा मिल सकता है। तो हम किसानों को यही बताना चाहेंगे कि आप ये उपाय करिए और उसके बाद में फिर आप मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं। मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी।
0: और इसके बाद में कुशल पाल जी का सवाल था हमारे पास में, उनका ये जानना था कि जिस तरह से वो फर्टिलाइज़र इतना सारा यूज़ कर रहे हैं गन्ने की खेती में, अगर उसको अचानक से रोक दिया जाए तो क्या उसका कोई नुकसान दिखेगा उनकी खेती बाड़ी फसलों पर, और उत्पादन उतना ही होगा या कम हो जाएगा?
3: जी, उनका बहुत ही सही क्वेश्चन था। और एक और उन्होंने प्रश्न किया था मैम कि यदि खड़ी फसल है क्या उसमें से हम मिट्टी का नमूना ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो अगर खड़ी फसल है तो उसमें, और खड़ी मतलब फसल अच्छी चल रही है, तो उसमें जैसे हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उसमें डाल दिए हैं तो नमूना लेने पर जो हमने फर्टिलाइज़र यूज किया है फिर उसमें जो उर्वरा शक्ति है उसका हमको सही पता नहीं चलेगा। अगर हम खड़ी फसल से नमूना लेते हैं तो खड़ी फसल से नमूना ना लेकर के फसल बुआई के पहले नमूना लेना चाहिए या फिर कटाई के उपरांत ही नमूना लेना चाहिए, उसके बीच में नमूना लेने का कोई मतलब नहीं बैठता। दूसरा, आपने ये पूछा था कि जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का यूज कर रहे हैं, यदि इसका हम यूज करना बंद कर दें तो क्या उत्पादन घटेगा? निश्चित तौर पे घटेगा। तो ये किस लिए घटेगा? क्योंकि आप जो आपकी मृदा है उसकी एक आदत लग चुकी है, यदि उसमें रासायनिक उर्वरक पड़ेगा तभी वो उत्पादन देगी। उसको आप कम कर सकते हैं, धीरे धीरे करके कम करिए, ना कि एकदम से कम करिए। आप जैसे 100 kg आप दे रहे हैं यूरिया तो आप उसको 80 kg करिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप बढ़ा दीजिए, जैसे आप बीजामृत का इस्तेमाल करिए, जीवामृत का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और FYM जैसे गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, शहरी कंपोस्ट हो गई, उसका भी यूज करिए। जितना अच्छी हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य होगा उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं वो घटते जा रहे हैं। घटते क्या जा रहे हैं कि मैम ये समझ लीजिए कि वो ख़त्म होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर अगर पेट के अंदर पचाने वाले, भोजन को पचाने वाले कीड़े ही नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन करने का कोई मतलब
0: नहीं रहेगा।
3: तो मेन चीज़ है कि उसमें सूक्ष्म जीव का रहना इतना ज़रूरी है कि हम क्या ही बताएं उसमें, और वो तब रहेगा जब हम उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक उर्वरक मैन्योर का यूज करेंगे। जितने ज़्यादा हमारे सूक्ष्म जीव उसमें रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी मिट्टी को अच्छा रहेगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा।
0: अगर हम दूरदर्शिता की बात करें, जैसे हाल फिलहाल के उत्पादन के लिए तो हमने मान लिया ढेर सारा फर्टिलाइजर यूज कर लिया, हमें 2-4 साल बहुत अच्छी उत्पादन प्राप्त हुए, उसके उपरांत क्या होगा, हमारी जमीन जब स्वस्थ नहीं होगी तो हमारी उपज की छोड़िए हम खेती का भी सोच नहीं सकते।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो इस के दृष्टि को रखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि खेती बचाओ, तो अपने अपने खेतों को बचाइए, उसे सुरक्षित करिए। हमें क्या है, फर्टिलाइजर एज अ यूज के लिए दिया गया, मतलब जैसे जिस तरह से एक स्त्री होती है उसको मेकअप दे दिया जाता है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो मेकओवर मतलब बहुत ज्यादा मेकअप, और मेकअप का मतलब एक टचअप दे देना, और अगर हम उसी पे मार पुट्टी पुट्टी पुट्टी तो हमारे स्किन क्या है, जब उसमें पसीना नहीं आएगा, उससे सांस नहीं लेगी हमारी स्किन, तो खराब हो जाएगी। वैसे ही हमारी मिट्टी है, वैसे हमारा स्वास्थ्य है। तो बस इतना आपको सोचना है कि उसका हमें थोड़ा यूज करना है, थोड़ा बहुत ऊपरी,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ना कि उसी को मेन फूड बना देना है मिट्टी का।
3: एक्चुअली मैम क्या बताएं कि जैसे हम रासायनिक जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं
0: जी,
3: इसमें हमको 1 से 2 ही न्यूट्रिएंट मिलता है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसमें जितने एलिमेंट हमारे 17 के 17 एलिमेंट मिल जाते हैं पौधे को, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म क्वांटिटी की वजह से, मतलब कम मात्रा की वजह से हमको रासायनिक खाद का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर किसान भाई उसके साथ में उसको निरंतर रूप से प्रयोग करते जाएं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर को, तो वो अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है
0: उसको सुधार सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप 70% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं और 30 यूज करते हैं ऐसे केमिकल वालों का, तो भी आपकी मिट्टी कहीं ना कहीं स्वस्थ बनी रहेगी।
3: बिल्कुल,
0: और
3: बिल्कुल।
0: इसके अलावा आप गोबर की खाद हो गए, केचुए हो गए, और ऐसी चीजों का यूज करें, नीम की खली हो गई, बहुत कुछ है जो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और वैसे भी बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, इसका दोहन अगर आप जितना करेंगे वो आपको दुगना रिटर्न भी करती है, और अगर हम ऐसे कुछ यूज कर रहे हैं केमिकल का, तो वो दोहन के अलावा हमारा कुछ भी हमें वापस नहीं देती, सब खत्म कर देती है एक समय आने पर। और हमारे बीच में कुछ और लोग जुड़ गए हैं, और कमल नैन जी हमारे साथ में बने हुए हैं, और नागेश्वर जी ने बोला उर्सी मिट्टी उसी को कहते हैं जिसमें पानी अंदर तक नहीं जा पाता है, ऊपरी सतह तक ही बना रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं गर्मी के कारण पानी ऊपर उठ जाता है और नमक ऊपर रह जाता है हमारे भूमि पे। इसके अलावा केचुआ खाद डालने से, एक बार डालने से 3 साल तक फसलें होती हैं, ऐसा है सर?
3: देखिए केचुआ खाद जो है 3 साल तक फसलें नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम। हर साल में हमको गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट हर साल देना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि इसमें सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, तो अगर हम हर साल नहीं देते हैं तो हमको फसल का उत्पादन जो हमारा लक्ष्य है वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा
0: जी। और 2 सवाल हमारे पास में हमारे विषय से हटके आए हुए हैं, लेकिन हम पूछना चाहेंगे, अगर आपके पास जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। सर, नागेश्वर जी कह रहे हैं लाल मिट्टी में कौन सा उर्वरक ज्यादा डालें ताकि सोयाबीन की फसल अच्छी हो, सोयाबीन की फसल के लिए
3: जी। तो जैसे लाल मिट्टी में क्या होता है कि ये थोड़ा मिट्टी हमारी जो होती है अम्ली मिट्टी में आती है, क्योंकि इसमें आयरन ज्यादा होता है, तो जैसे इसमें जिंक का उपयोग थोड़ा सा करना चाहिए, जिंक और सल्फर का,
0: जिससे आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एक और सवाल आया हुआ कमल नैन जी की ओर से, कह रहे हैं मैम हमारे धान में झुलसा रोग लग गया है, इसका क्या उपाय है? पहले हमारे बगल वाले खेत में था, उसके बाद उनके बगल वाले खेत में हुआ, और फिर ये हमारे खेत में हो गया, ऐसा लग रहा है कोरोना बीमारी है।
3: जी, जैसे कि ये एक पैथोजन होता है, रोग कारक जो है ये वायरस से होता है, तो फंगल डिजीज है ये। तो इसके लिए क्या है कि ये पादप रोग विज्ञान का क्वेश्चन है
0: जी,
3: इसमें क्या करना चाहिए, फंजीसाइड का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर झुलसा रोग लग चुका है, कई पौधों में लग चुका है
0: जी, कई तो, खेतों में लग गया है,
3: तो उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पहले ही इसका जो है प्री इमरजेंसी ही उपाय है। अगर आपके खेत में 2-4 पौधे में है तो उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, या फिर मान के चलिए मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, तब उपाय है। या फिर एक पौधे पर दिखे तभी आप फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, तब आपकी बचत है, अदरवाइज इसका कोई निदान नहीं है।
0: और इसके अलावा एक और सवाल आया हुआ है कि सरकार ने जो फसल जलाने पे, मतलब पलारी जलाने पे जो रोक लगाई थी, फिर जो हम लोग भूसा हटा लेते थे और आग लगा देते थे, क्या उससे मिट्टी का तत्व खत्म हो जाता है?
3: जी, अगर हम जला देते हैं तो उसमें जो है कि जलाने से क्या होता है कि कार्बन हमारा बचता है और धुआं भी होता है जो वातावरण को प्रदूषित करता है
0: जी।
3: करना तो ये चाहिए कि जो मिट्टी ने हमको उत्पादन दिया है, जैसे हमने दाना ले लिया और जो भूसा बचा उसको हमको मिट्टी को वापस करना चाहिए। वापस इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है और ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी को चाहिए। जैसे हमको डॉक्टर्स बताते हैं कि फाइबर रिच फूड खाइए, फाइबर रिच फूड क्यों खाने को कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की जब कमी नहीं रहेगी, जब हम पानी पिएंगे बॉडी में पानी स्टोर रहेगा। उसी प्रकार से यदि हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन है, हम इरिगेशन जब करेंगे तो पर्याप्त टाइम तक उसमें पानी की होल्डिंग, पानी की रुकावट बनी रहेगी। अगर पानी की रुकावट बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी, हम कोई भी खाद डालेंगे तो खाद में उपस्थित पोषक तत्व जो है आसानी से पौधे को मिलेंगे। तो पराली को जो जलाते हैं, जलाना नहीं चाहिए, उसी में आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद में वो धीरे धीरे करके सड़ता रहेगा, ठीक है ना। और आप उसके बाद में फसल ले लीजिए। पूसा डिकम्पोजर आता है जो कि मार्केट में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, उसका यूज करके आप उसको जलाना।

0: अपना सवाल रखें सर।
1: आप सर जानना चाहेंगे कि मैम ने काफ़ी सवाल पूछा भी और काफ़ी जो हमारे सुन रहे हैं किसान भाई बहन उनको जानकारी भी मिल गई। आप सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी की उर्वरता लगातार कम होने का क्या कारण है और इससे कैसे सुधारा जा सकता है?
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है जो निरंतर घटती जा रही है, जैसे कभी कभी क्या होता है किसान भाई गलती करते हैं कि एक ही फसल बार बार उगाते हैं, तो एक ही फसल बार बार उगाने से क्या होता है, एक फसल की जो जड़ होती है उसकी जो गहराई होती है वो बराबर रहती है, तो उसी गहराई से न्यूट्रिएंट जो होते हैं पोषक तत्व तो जो होते हैं वो फसल लेती रहती है और हमारा जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति है वो घटती है। दूसरा क्या है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग और जैविक पदार्थों की कमी। अगर हम रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो जैविक जो पदार्थ हैं हमारे उसमें कमी आ जाएगी, जैविक पदार्थ का हम यूज नहीं करेंगे तो वो कम हो जाएंगे। दूसरी गोबर की खाद का उपयोग ना करना। आजकल किसान भाई जो हैं हमारे वो गोबर की खाद का यूज बहुत कम करते हैं क्योंकि वो रासायनिक खादों के भरोसे हो गए हैं कि आप मतलब क्या मार्केट से लाए और उसको डाल दिए और प्रोडक्शन ले लिए, लेकिन कब तक ऐसे प्रोडक्शन लेते रहेंगे? एक समय आएगा कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आपको उदाहरण में हम बता दें कि जो पंजाब है
1: जी,
2: पंजाब में अंधाधुंध यही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया और रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया
1: जी।
2: मिट्टी इतनी दूषित हो गई है इरफान जी कि आपको मैं बताऊं, वहाँ पे क्या करते हैं कि 2 फीट मिट्टी को निकालते हैं और उसको फेंकते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी जगह से मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को डालते हैं, फिर उसके बाद में उसमें खेती करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है।
1: बिल्कुल सर,
2: ठीक है ना। कैंसर ट्रेन का कारण चलने का यह है कि वो लोग इतना ज़्यादा मिट्टी को जहर बना चुके हैं। अच्छा, मिट्टी को जैसे बताया गया है कि भूमि हमारी माँ है, तो जो माँ ही दूषित हो जाएगी तो जो उसके जिसको वो पालन पोषण देती है उनको तो दूषित होना ही है, क्योंकि उसी के भरोसे जो है सब कुछ है
1: जी।
2: मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो पृथ्वी पर जितना भी कुछ मौजूद है वो सब चीज़ें जो हैं वो स्वस्थ रहेंगी। तो हमको मिट्टी को स्वस्थ बनाना है, अकेले से ये संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति की ये प्रयास रहना चाहिए कि हमको मिट्टी को कैसे स्वस्थ रखना है
1: जी। क्योंकि सर मिट्टी जब सही रहेगी तो फसल जो है वो अच्छी होगी। अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से खेती पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्योंकि ज़्यादातर मतलब क्या है कि सर डाला गया और बहुत ज़्यादा इससे क्या है कि मिट्टी जो हमारी है वो प्रदूषित दूषित तो हो ही गई है, लेकिन सर ये लगातार जो है हम लोग डाल रहे हैं तो इससे क्या मतलब वो खेती पर प्रभाव पड़ा सर?
2: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और जैसे जो हमारी मिट्टी में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव भी होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं
1: जी।
2: जल और पर्यावरण प्रदूषित होता है
1: जी।
2: और मानव स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने रासायनिक खादों का उपयोग किया, हमने सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद में जो हमने रासायनिक खादों का उपयोग किया वो घुल करके कहाँ जाएगा, नीचे भी जाएगा
1: जी।
2: पेस्टिसाइड का हमने यूज किया तो कहीं ना कहीं एक ये चक्र है कि हमने जो दिया है, हमने जो रासायनिक खादों का यूज किया है उसका कहीं ना कहीं कुछ मात्रा हमारे अंदर आता है
1: जी।
2: चाहे पानी के थ्रू आए, चाहे हम जो दाना यूज कर रहे हैं उत्पादन का, जो फसल उत्पादन है उसको हम खा रहे हैं उसके माध्यम से
1: जी।
2: तो ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने आप को ये जागरूकता होनी चाहिए कि हम जो डाल रहे हैं कहीं ना कहीं इसको हम खा रहे हैं। अभी कोई भोजन कर रहा हो तो उसके खाने में अगर सीधे सीधे कोई केमिकल डाल देगा तो वो भोजन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल सर, सही
2: बात। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भोजन में केमिकल जो है वो खा रहा है
1: जी।
2: ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा किसान को ध्यान देना चाहिए कि अपने स्वयं लाभ के लिए वो ये भूल जाता है कि हम क्या डाल रहे हैं, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और जैसे स्वस्थ रहने के लिए आदमी प्रयास करता है
1: जी।
2: तो उसके लिए सोचना चाहिए उसको
1: जी।
2: केमिकल चीज़ों का जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े
0: जी। और नागेश्वर जी का कहना है कि भाई मैं 3 साल से पराली नहीं जला रहा हूँ, सीधे मिट्टी को ही उसका सामान वापस कर देता हूँ। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। सबलू सावंत जी लिखते हैं, मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरक यूरिया DPT पोटाश डालें ताकि हमारी फसल को बढ़ावा मिले, और ये बहुत ज़रूरी है।

0: सच में बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबलू सावंत जी, सांता क्रूज से मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा लिखा है नागेश्वर जी ने, एक सवाल भी है इसमें कि पंजाब में इतना दूषित मिट्टी हो गई है, पंजाब से ही हमारे इधर चावल आता है, तो इसका मतलब है कि चावल खाने मतलब चावल में भी कैंसर के तत्व हो सकते हैं क्या?
1: देखिए, जैसा आपका प्रश्न है कि चावल में कैंसर के तत्व हो सकते हैं, ये चीज़ तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर दूषित चीज़ में अगर कोई चीज़ उगाया गया है तो कुछ ना कुछ उस दूषित जगह से कुछ ना कुछ उसमें अंश आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा उसको अवेयर रहना चाहिए और जांच परख करके ही उसका सेवन करना चाहिए।
0: बिल्कुल, अभी चलते हैं इरफान जी की ओर पुनः से और देखते हैं उनके पास और कौन सा सवाल है।
2: जी मैम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत हो रहा है, तो सर हमारा अगला जो सवाल है वो है कि जल संरक्षण खेती बचाने में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर आज देखिए दुनिया में अभी तक मतलब सर इधर हम देख रहे हैं कि सर काफ़ी दिनों से सर बारिश नहीं हो रही है, और जब भी बारिश नहीं हो रही तो सर उसमें सबसे महत्वपूर्ण है खेती पर, खेती पर भी प्रभाव पड़ रहा है सर, आम जनमानस पे भी प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं सर अधिक जल दोहन हो रहा है, और जल दोहन अधिक होने से हमारी कृषि पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है, उसके साथ में आर्थिक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जल ही जीवन है।
2: जी बिल्कुल,
1: और जल संरक्षण खेती की जो है वो जीवन रेखा है।
2: जी,
1: वर्षा जल संचयन जैसे है, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों से पानी की बचत होती है, और सूखे की स्थिति में जो खेती है वो संभव रहती है। तो इसके कुछ हम उपाय बताते हैं कि जैसे जहाँ पे पानी उपलब्ध रहता है तो लोग क्या करते हैं कि फसल में पानी चला देते हैं और आके घर में बैठते हैं। जहाँ पे फसल पानी नहीं है वहाँ पे उनसे पूछो कि पानी का दर्द क्या है, अगर टाइम से उनको पानी नहीं मिलता तो फसल कितनी पिछड़ जाती है।
2: जी,
1: तो ये चीज़ थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी पे सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। ग्राउंड जो मिट्टी के अंदर का जो पानी है उसको लिमिट में यूज करें।
2: जी,
1: लिमिट में यूज करने के साथ में जितना हमने पानी लिया उतना पानी हम दे भी सकते हैं।
2: जी,
1: क्योंकि वो पानी अगर हम सबका अगर एक कर्तव्य बन जाता है, अगर हम पानी देना शुरू कर दें, उसको हम वाटर रिचार्ज बोलते हैं।
2: जी,
1: वाटर रिचार्ज के माध्यम से हम पूरा जल स्तर को बढ़ा सकते हैं।
2: बिल्कुल सर,
1: और वाटर रिचार्ज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो वर्षा का जल होता है उसको हम भूमिगत में भेज दें। भूमिगत में भेजने के लिए क्या करते हैं, हम 1.5 से 2 मीटर का गड्ढा करके
2: जी,
1: और लगभग 4 से 5 फुट की लंबाई हो, और खाली अपने घर का अगर हम पानी जो बारिश का पानी होता है उसको मात्र उसमें नीचे मोटे कंकड़ डाल दें, और उसके ऊपर से उसके छोटे कंकड़, मतलब धीरे धीरे सबसे नीचे पत्थर, फिर थोड़ा मोटे कंकड़, फिर मोरंग, फिर बालू। ऐसा करने के बाद में यदि हम अपने घर का पानी खाली उसमें भेजते हैं तो सारा का सारा पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। इसी तरह से अगर हर एक इंसान सोच ले कि मुझे जो है पानी को वाटर रिचार्ज के माध्यम से नीचे भेजना है, तो निश्चित तौर पे जल स्तर जो निरंतर घटता जा रहा है वो श्रीमान जी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आने वाले समय पे अगर पानी की त्रासदी जो आएगी उससे हम बच सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय इसका नहीं।
2: सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, पानी को सबको बचाना होगा, पानी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम बना नहीं सकते हैं, उसको बचा के ही सेव कर सकते हैं,
1: एकदम,
2: और आने वाली पीढ़ी को हम दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो जल की जो बूंद है उसको हमें टूटने नहीं देना है, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी ये जो हरी भरी खेत है, हमारी लहलहाती फसल जो है, ये जब हम देख पाएंगे, जब पानी को बचाएंगे, और पानी जब है तो सब कुछ है।
1: बिल्कुल।
2: अगर आते हैं अगले सवाल पर, हम जानना चाहेंगे कि ये सर फसल चक्र और मिश्रित खेती से किसानों को क्या लाभ मिलता है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो फसल चक्र है, फसल चक्र से मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो बनी रहती है, रोग और कीट कम होते हैं, जैसे अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो। और मिश्रित खेती क्या होती है, मिश्रित खेती से आय की कई स्रोत बनते हैं, जोखिम कम रहता है, और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो जाता है।
2: जी।
1: ठीक है जी। तो इस पर थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे, जैसे फसल चक्र क्यों अपनाना चाहिए
2: जी, जी, जी।
1: फसल चक्र से ये होता है कि जो हमारी फसलें होती हैं उनकी जड़ें जो होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि अभी हम दलहनी फसल लें तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ा गहराई तक जाती हैं। अनाज वाली फसलों की हम बात करें, धान और गेहूँ की, तो इनकी जड़ें जो होती हैं थोड़ा उथली होती हैं, थोड़ा मतलब गहराई तक कम जाती हैं
2: जी।
1: यदि हम फसल चक्र अपनाते हैं तो जैसे हमने उथली जड़ वाली फसल ले ली तो हमारे जो पोषक तत्व भूमि थे तो थोड़ा मतलब जो गहराई के जो पोषक तत्व थे वो बचे रहते हैं, शेष रहते हैं
2: जी।
1: और उसके बाद में अगर हम फसल बदल के दूसरी गहरी जड़ वाली फसल लेते हैं तो इससे एक बैलेंस बना रहता है, जो पोषक तत्व हैं मिट्टी में बने रहते हैं और उर्वरक शक्ति पे हमारी कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है
2: जी।
1: तो फसल चक्र जो है वो अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। वो अपनाने से जैसे दलहनी फसल हम अगर हम लगाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी उर्वरक शक्ति इसलिए बढ़ती है कि इसमें जो कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। जैसे दलहनी की हम बात करें तो एक ढांचा होता है, आपने लोगों ने किसान भाई हमारे जो जानते होंगे बखूबी, ये दलहनी वर्ग का ही एक जो है जिसको हम हरी खाद के रूप में भी जानते हैं। तो किसान की किसानों की जानकारी के लिए हम बता दें, जो जहाँ पे इरीगेटेड लैंड नहीं है, जो सिंचाई वाली क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह से सिंचाई करते हैं, जहाँ का पीएच मान 7 से ऊपर है, वहाँ पे गेहूँ के बाद में हमको 50-55 दिन का समय मिल जाता है। तो 50-55 दिन में हम अगर ये फसल उगाते हैं, ये ढांचा की फसल लगाते हैं, तो हमको एक हेक्टेयर में 50-60 केजी नाइट्रोजन जो होता है वो फिक्स कर देती है ये ढांचा की फसल। और नाइट्रोजन की कमी जो है भारत की भूमि में सबसे अधिक पाई गई है, तो उसकी अगर कमी को पूरा करना है तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर जो है जिसको हम बायोमास भी कहते हैं, वो भी जो है जैसे जड़ों से तो नाइट्रोजन वो फिक्स करेगा और जो ऊपर का इसका हिस्सा रहता है वो ऑर्गेनिक मैटर का काम करेगा, जिससे हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी जो है पल्वराइज होगी, जिसको हम ढीली हो जाएगी मिट्टी, ठीक है ना, प्रॉपर एरेशन होगा, हवादार मिट्टी होगी, उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ेगी। जितने ज़्यादा हमारी सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारा उत्पादन बढ़ेगा।
0: तो इस तरह से कहीं ना कहीं जैविक खेती जो है वो खेती को टिकाऊ बनाने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं मुकेश यादव जी, जो मैं गोंडा से सुनते हैं। गुड इवनिंग आपको भी सर। और अभी हम बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास में वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, तो आपसे हम जो बहुत जरूरी वाले सवाल है 2-4 वो हम पूछ लेते हैं। सर, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किसान और खेती के संरक्षण में मदद कर रही हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सवाल है।
1: जी जी जी, बहुत सही आपका प्रश्न है मैम
0: जी।
1: जैसे हम बताना चाहेंगे किसानों को, जैसे एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, सबको जानकारी होगी। दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसको जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जो फसल है हमारी मैम वो प्रकृति का जुआ है, कभी किसान के हाथ में रहती है और कभी प्रकृति के
0: हाथ में रहती है।
1: तो अगर हम फसल बीमा योजना कराते हैं और मान के चलिए कभी ऐसा होता है कि हमारी फसल नष्ट हो जाती है तो उसका सरकार जो है भुगतान
0: जी
1: बिल्कुल। दूसरा क्या है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसको भी
0: अपनाना चाहिए है।
1: जी, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसको भी अपनाना चाहिए। ये योजनाएं जो किसान के आर्थिक सहायता में मदद करती हैं और मिट्टी परीक्षण और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कराती हैं।
0: बहुत ही जरूरी था कहीं ना कहीं ये प्रश्न। और इसके अलावा एक और सवाल है सर कि युवा पीढ़ी को खेती से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि युवा जब बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें क्या है कि कृषि शिक्षा जो है वो युवाओं को अर्जित करना चाहिए, इसको इसमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान हैं कुछ जानकारी हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। यदि युवा उसको जानकारी करता है और किसानों तक पहुंचाता है तो निश्चित तौर पे उसमें जो उपलब्धि है वो मिल सकती है। आधुनिक तकनीकों का जैसे परीक्षण देना, उनको सिखाना कि आधुनिक जो तकनीकी है उसको हमको कैसे अपने खेत में कैसे यूज करना है, कैसे उपयोग करना है, क्योंकि एक कुशल जो व्यक्ति होता है वही आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। कृषि आधारित स्टार्टअप को कैसे प्रोत्साहन देना चाहिए, ये युवा पीढ़ी को ज़्यादा सशक्त बना सकती है, तथा खेती के लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करना ही आवश्यक।
0: और इसके बाद चलते चलते ही सही, लेकिन लास्ट सवाल हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, उससे पहले हमारे नागेश्वर जी का भाई, ये बहुत ही हमारे ज्ञानी श्रोताओं में से इतने सवाल होते हैं इनका कि हम इनका नाम ही रख दिया है बीरबल जी। तो इन्होंने पूछा है, सब जगह एक जैसा पानी तो होता नहीं है, कहीं मीठा होता है, कहीं खारा होता है, लगातार खारा पानी हमारी फसल को देते हैं, तो क्या इससे हमारी फसल की मिट्टी खराब हो जाती है?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है नागेश्वर जी आपका। अगर हम खारा पानी निरंतर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए हम उपाय आपको ये बता दें कि हम जो बार्ली की फसल होती है, जिसे हम जौ कहते हैं, जो अधिक सहिष्णुता वाली फसल है, अगर वहाँ पे नमक की लवण की मात्रा ज़्यादा है पानी में, तो उसका जो है ज़रूर लगाएँ, क्योंकि उसमें सहिष्णुता वाली फसल है तो उसको वो कम करेगी। और कोशिश ये करिए कि आप उस जल का जो सिंचाई करते हैं उससे कम करें, उस पानी से सिंचाई कम करें, और दूसरा पानी का यूज अगर मतलब उपलब्ध हो तो उसका यूज करें, नहीं तो जो बारिश का पानी होता है उसको आप हार्वेस्टिंग करें, हार्वेस्टिंग करने के बाद में उस पानी का आप यूज करें
0: जी। और इसी के साथ में एक और बात इन्होंने लिखी है, लिखते हैं कि यस सर, हम जानते हैं डेचा को, और बिल्कुल हरी घास जैसी होती है, 2 महीने बाद ही हम मिट्टी में इसे मिला देते हैं जिससे हमारी मिट्टी स्वस्थ रहती है। और एक चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल लूँगी क्योंकि वक्त हो गया है, 6 बज गए हैं, लेकिन ये सवाल चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि अभी खेती बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सर भविष्य में इसका क्या परिणाम हो सकता है?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया मैम। जैसे खाद्यान्न उत्पादन में जो कमी है, खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाएगा, किसानों की आय जो है उसमें गिरावट आना शुरू हो जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है, पर्यावरणीय जो है वो संकट गंभीर रूप ले सकता है, तमाम प्रकार की समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसमें हम किसानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे,
0: बिल्कुल,
1: कि खेती केवल किसानों का व्यवसाय नहीं है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यदि हमें भविष्य सुरक्षित करना है तो मिट्टी और पानी और किसानों तीनों को ही बचाना होगा।
0: तो बेहद ही गंभीर और बेहद ही ज़रूरी विषय पर आज हमने चर्चा की। हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट मौजूद थे डॉक्टर सुबेदार सिंह जी, कृषि शंकाय मृदा विज्ञान विभाग, सहायक प्राध्यापक मध्य प्रदेश। भाई बहुत दूर से आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो इनका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद बनता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: धन्यवाद मैम।
0: और आपने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ बताया हमारे किसानों को, उम्मीद है कि इन्हें बहुत लाभ होगा। हमारे बीच में बतौर को होस्ट की भूमिका निभा रहे थे इरफान शाह जी, मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा, और अब चलने का वक्त हो गया है। नेक्स्ट शो आप जरूर सुनिएगा, उससे पहले एंजॉय करिए ये किसानी गीत। अब मैं चलती हूँ, लूंगी आपसे फिर से मुलाकात अगले हफ्ते इसी शो में, जी हाँ, गौधुली स्पेशल खेत खलियान में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने खेत का ख्याल रखिए, खेती बचाइए, उससे पहले अपना खेत बचाइए। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

राम राम सभे प्यार भरा जोन एहसास जगावे वाले हमार सुनिहार लोग हैं, यानी कि हमार सब साथी लोगन के राम राम और शुभ संध्या। आप सबन के स्वागत है और आप सब सुनत हो शो गोंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला अपने आरजे बीना के संगे। और आज है आपके खास दिन, यानी कि भोजपुरी अवधि स्पेशल दिन, यानी कि बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार के दिन हम सभी भोजपुरी अवधि गाना तो सुनी थे लेकिन बहुत सारी बात भी करी थे। तो आप सभी के स्वागत है और हमारे सबके संग हैं अनिल शास्त्री जी, मुस्तफ़ा जी, और सभी के स्वागत है। शुभ संध्या सभी के। और आप सभी का बताइए कि आज आपके सबसे पसंदीदा, आपके पसंदीदा जो उनका था, कहा जाता है कि शाम होती, कहे कि आज अपने पसंद के आप सभी का भोजपुरी गाना भी सुनने का मिलत है। तो सबसे पहले तो आज बताए दी कि आज मौसम भी बड़ा सुहाना हो जाता है। धीरे धीरे जो मौसम के रुख है वो सुबह से बदले की कोशिश करता है। कहूँ कहूँ कोनो कोनो क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश भी भई और इस समय अच्छी हवा चलती, तो मौसम के मिजाज काफ़ी खूबसूरत है। और आज कहे कि आप सभी का पता है बड़ा खास दिन है, कहा था कि आज दिन जो है वो निर्जला एकादशी है, जो उनकी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी या एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। और आज के दिन के एक अलग महत्व है। कहा थे कि भूख प्यास सहिजे हरि के नाम ध्यावे, निर्जला एकादशी उही का भवसागर से पार लगावे। भूख प्यास सहिके जे हरि के नाम ध्यावे, निर्जला एकादशी उही के भवसागर से पार लगावे। तो चलिए अगले कुछ जो मिनट है उन सब में हम आपका एकादशी के बारे में बताएं कि एकादशी काहे इतना खास है। और मतलब एकरे बारे में जो उन कहा था ना कि इतिहास जो है ऊ का कहा था, उस सब के बारे में आज आपका बताएं। तो आप सब आज हमारे साथ जुड़ा रहें। और कहा था ना कि कोनो कोनो ऐसा भजन होता है जिसका सुने के बाद में मतलब दिल आत्मा सब एकदम भावपूर्ण हो जाती है। और आज पूरे गोंडा शहर में हर मंदिर में घड़ा है घड़ा और सबके अंदर मतलब आस्था दिखती है। और अगर देखा जाए तो एक और त्यौहार हमारे सबके साथ है चलत है, उसके बारे में भी कुछ देर में बताए, लेकिन पहले आज निर्जला एकादशी के बारे में आप सबन का बतावा जाती है। और एगो प्यारा सा गीत सुन के पहले तो आप सबके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी भर दी, क्योंकि आज के दिन के महत्व जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप सबन का एगो भजन सुनाई दी मैथिली ठाकुर के आवाज़ में, जगह सुनने के बाद आप सबके संध्या जोन है वो सुरमई होए के साथ साथ एकदम पॉजिटिव हो जाए। जगह कहते हैं ना कि जगह कहते हैं ऊर्जावान, तो चला सुना जाए एगो प्यारा सा गीत।

तब वापस से आप सबन के स्वागत है आप सबके खूबसूरत संध्या माँ जेमा आप सबन के लिए आज खास जानकारी लेके आए हैं हम और आप सबन का बताए दी आज के निर्जला एकादशी के बारे में कुछ खास इतिहास वाली बात और एक साथ आपका एक पीछे के जो उनका था ना कि साइंस है वो बताई विज्ञान। तो सबसे पहले तो आप सुना जाए कि पुराणन माँ बतावा गया है कि पांडवन माँ भीमसेन का भूख बहुत लागत रही वो साल भर के बाकी एकादशी के उपास ना ही कह पावत रहे। तब महर्षि व्यास जी कहें कि अगर तू ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एको एकादशी बिना अन्न और बिना जल के रख लिए तो पूरे साल भर के जो एकादशी है उकर फल आप सबका मिल जाए। तबे से ये एकादशी का भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जात है। मान्यता है कि दिन भगवान विष्णु के पूजा अर्चन की जात है और भक्तजन व्रत रख के भगवान से सुख समृद्धि शांति और जो उन भी चाहिए होते हैं उनकर कामना करते हैं। कहा था कि व्रत मनुष्य का आत्मबल बढ़ावे के लिए संयम सिखावे के लिए और सकारात्मक ऊर्जा बतावे के लिए रखा जात है। अब एक पीछे के जो विज्ञान के नजरिया वह जान लिए कि गर्मी के मौसम में जब शरीर लगातार भोजन पचावत है तब पाचन तंत्र का आराम दिए के लिए ई व्रत रख बहुत जरूरी हो जाता है। शरीर के कहा था ना डिटॉक्स प्रतिक्रिया करे के ये गो बढ़िया तरीका होता है। जो भी वसा और जो चीज बहुत दिन से स्टोर होती वो इस समय यूज हो जाती बॉडी के अंदर और शरीर के जो कहा था ना कि बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन जो कहा था ना कि सफाई कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखे के और आत्म संयम बढ़ावे के एगो बढ़िया तरीका है। जैसे कि जो आपके पसंद के चीज़ है वो ना खाए से आपके अंदर संयम बढ़त है। खान पान पर नियंत्रण रखा बहुत अच्छी चीज़ होती है और भजन और पूजा से मानसिक शांति भी मिलत है। शरीर में ऊर्जा संतुलित होए से आपके शरीर के जो कहते हैं विकास में मदद मिलत है। हालांकि बुजुर्ग महिला और बीमार लोगों के लिए सब कहते हैं कि आप पानी वगैरह पी सकत हैं। भारत में निर्जला एकादशी बहुत बढ़िया और धूमधाम से मनाई जाती है। आप सब उनको बताएं कि शहर के ये बहुत बड़ा और विशाल पर्व माना जाता है और अलग अलग जहां अलग अलग तरह से मनाओ जाते हैं। वाराणसी में सब कहते हैं गंगा घाट पर विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। अब मथुरा वृंदावन की बात करें तो भगवान कृष्ण और विष्णु मंदिर में भजन कीर्तन चला करते हैं। हरिद्वार में अगर बात करें तो श्रद्धालु लोग गंगा स्नान करते हैं। जयपुर दिल्ली भोपाल हर शहर में ई व्रत रखे के बड़ा अलग तरीका है और सब कहते हैं गरीबन का जल पियावे गरीबन का फल दान करें तो इस ई जो व्रत है कर फल अच्छा मिलत है। और सब कहते हैं कि पानी के एक बूंद भी अगर त्याग दीन जाए तब भक्ति के जो प्रेम है वो बढ़ाए दीन जाए। निर्जला एकादशी कोनो व्रत नहीं है केवल ई मन के श्रद्धा और विश्वास बढ़ावे के एक तरीका बनाए दीन देंगे। ठीक है तो आज के ये जो जानकारी एक लिए के बाद ना आप सबन का और बहुत कुछ सिखाए वाली है ना और बतावे वाली है। तब तक के लिए आप सब तैयार रहें और 7:05 से ठीक आप सबके भोजपुरी फरमाइश शुरू हो जाए तो बिल्कुल अपनी बढ़िया बढ़िया और एकदम एंटीक फरमाइश। हम तो ये कहा कि हर बार जब आवें तो आप एक नई फरमाइश लेके आवें और गाना ऐसा हो कि सुने के बाद में भोजपुरी भाषा से औधी भाषा से अपनी मातृभाषा से सबका प्रेम हो जाए। जे भी देश दुनिया से और कोना से हमें सबका सुनत है सुने के बाद में ये कहें कि भाई इनके भाषा में बड़ा मिठास है। तो चला एगो गीत सुन के हमारा जो मन है बहुत ही ज्यादा मतलब भावुक हो जाता है और ये सबसे खास बात है कि एक बॉलीवुड फिल्म का गीत है और ये अवधी भाषा पर आधारित है। तो आप सबन का सुने के बाद अगर अच्छा लगे तो जल्दी से अपने जो चैट रूम है मन अपन दिल लिख के भेज दिए। तो चला सुना जाए एगो बेहतरीन सा गीत निर्जला एकादशी पर खास।

अब शुरू हो चुकी है भोजपुरी गाना के जुगलबंदी और जगह सुने के बाद माँ हमारे सबके मन में हो जाती गुदगुदी। तो सबन के वापस से स्वागत है और शाम के रंग चढ़ चुका है थोड़ी सी, जो उनका आ जाता है ना कि आध्यात्मिक बात होए के बाद माँ अब थोड़ा सा रंग बदले शुरू हो गया है शाम के। शुभ संध्या का हाल है सविता जी? सविता लिखे हैं कि बड़ा अच्छा भजन है। बिल्कुल, ये गाना का सुने के बाद हमारे मन में बड़ी, मतलब जितना मर्जी हम परेशान, लेकिन ये गाना सुने के बाद में बड़ा अच्छा आनंद मिला है। और सबसे बढ़िया आनंद की बात ये है कि ये गाना जो है अवधी भाषा में बना है, तो सबसे अच्छी बात यह है, यही से ये गाना हमें बड़ा पसंद है। देखा जाए अगर हम सब थोड़ा सा इतिहास का टटोले के कोशिश करें तो हमें सबका बहुत कुछ ऐसा मिल जाए जिसका सुने के बाद, जिसका समझे के बाद हमारे सबके मन के जो धुन है वो बड़ी सुरीली हो जाए। और सुरीली तो हो एक भी चाहिए, कहे कि जब सुरन के जब जुगलबंदी शुरू होती तो हर दिन एकदम खास बन जाता है। तो फिलहाल आप सबन का बताए दी कि आज आपके वाला दिन है, आप सबका 7:05 से अपने खास यानी कि भोजपुरी फरमाइश करे के मौका मिली। तो बिल्कुल कोई भी इंसान परेशान ना हुई हैं और फटाफट से अपन अपन जो कहा था ना फरमाइश के जो उनको जो बढ़िया चुनिंदा गाना है वो लेके हमें चैट रूम में या फिर कॉल करके बताए दी हैं, जो ने कि आपके जो पसंद है वो सबके सामने शुरू हो जाए। तो चलो एक शुरुआत तो हो ही जाए, लेकिन आप सबका बताइए कि कल के अंताक्षरी सुने के बाद माँ हमें तो लागत है कि आप सबके अंदर ऊर्जा बहुत है, बस ऊर्जा का ढूंढ के बहरे निकाले की ज़रूरत है। बस कबो कबो आप सबका लागत है कि आप सब अच्छा नहीं कर सकते हो या आप सब अपने आप में थोड़ा सा मतलब पीछे हो जाते हो। तो फिलहाल आप सबका बता दी कि आज के दिन और भी ज़्यादा खास है कि आज अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी है। वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकन के जो बड़ा योगदान रहा है। शुरुआत हमारे सबके देश में व्यापार के भी आप सबका पता है कि समुद्र के रास्ते से भी, तो नाविक दिवस है। तो आज के दिवस के आप सबका शुभकामना और सबका बताई दी कि आज संविधान हत्या दिवस भी है। ये 1975 में यही दिन देश के आपातकाल लगा रहा, जिसका याद करे के नाते आज के दिन का संविधान के हत्या दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन आपातकाल लगा रहा तो बहुत बड़ा मतलब दिन माना गया है का इतिहास के। तो इसे हम सोचें कि आप सबन का बताए दी, आप सब बतावें कि आप सबन के लिए दिन काहे खास है। वैसे हमारे लिए तो खास हर दिन है, क्योंकि जोन तारीख जोन महीना जोन समय आज है वो कल या आए वाले कुछ काल माँ भी वापस नहीं आवाला है। और आप सबका बताई हाल ही माँ कुछ ऐसी न्यूज़ सुने के आवा थी ना, जगह सुने के बाद मैं हृदय जो है ना एकदम विदारक हो जाता है, चाहे वो लखनऊ के अग्निकांड हुए, चाहे वो पुणे के हत्या जो भई जो केतन गोयल के। और संगे संग अगर बात करी तो एक ऐसा देश है जहाँ हाल ही में बहुत बड़ी आपदा आए के टूट पड़ी है, प्राकृतिक आपदा। और आप सबन का बतावे के बाद हमें बड़ा दुख होता है कि वेनेजुएला नाम के देश में बहुत बड़ा भूकंप आवा है, जहाँ के मतलब अगर हम बताई तो बहुत बड़ी जान मान के हानि भई। लोग कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोग ई भूकंप में मारा गए हैं। तो हम सब यहाँ से भारत से उन सब के लिए मतलब कहा दुआ की जाए कि वह सब सुरक्षित होएं। जो सामान के नुकसान है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जान बच जाए ये भूकंप के बाद। वेनेजुएला में 1 मिनट के अंदर 2 बड़ा बड़ा भूकंप आवा, जोने के जो तीव्रता के बात करी, एक के तीव्रता 7.2 रही और दूसरे के तीव्रता 7.5 रही। और ये दोनों भूकंप इतना शक्तिशाली रहा कि देश भर के जो जनहानि रही और व्यापक तबाही रही वो पूरे बड़े स्तर पर देखे का मिली है। और इतना शक्तिशाली रहा कि मतलब का कहें। और लोग कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों के जान जा चुकी है। अभी 10,000 तो आंकड़ा बतावा जाता है, अगर ज़मीनी स्तर पे इन्हें सबका जोड़ दिया जाए तो और भी बहुत ज़्यादा आंकड़ा बढ़ सकता है। और तटीय इलाका में सुनामी के अलर्ट भी हुआ जारी हो चुका है। तो भाई बहुत बड़ा मतलब खतरा है वेनेजुएला में। तो हमें सबका कहा कहा जाता है कि बड़ी दुआ करे की ज़रूरत है वहाँ के लोगों के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा मतलब देश है आप सबका बता दी साउथ अमेरिका के पास, तो हमें सबका कोशिश करना चाहिए कि ऐसी इन सिचुएशन में जो हो सके तो मदद करे के, मदद तो हो ही जो हुई लेकिन हमें सबका यहाँ से दुआ तो ज़रूर करे के चाहिए। और ये भीषण भूकंप जो है ये मानवीय संकट और कहा जाता है ना कि आए वाले जो कहते हैं ना कि प्राकृतिक आपदा के एक
मैसेज है कि हम सब अगर ना सुधरब तो ऐसी आपदा कहूँ भी कबो भी आ सकत ही। ठीक है, भारत की तरफ से भी भाई प्रयास किए गए हैं कि उन सबका राहत और बचाव के जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई जाए।

भी नहीं लगाया जा सकत, कितना नुकसान भय। एक संगे आपका केतन अग्रवाल का जो मर्डर भय है उसके बारे में आपको बता दी कि लोगों के अंदर जैसे लगा था संवेदना खत्म हो चुकी है, कि हु भी इंसान का मतलब इतनी बर्बरता से मारे के कोई मतलब नहीं बंद कि सामने वाला आपके कुछ ना लिए हुए और आप उकरे लिए मतलब इतना बड़ा गड्ढा खोद दो, मतलब बहुत बड़ी गलती है। तो इकरे लिए तो भाई बहुत संवेदना है मैं केतन के लिए, और ये सब चीज़ें सुने के बाद में थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है, पर कहा करा जाए, ये सब दुनिया है, हर चीज़ के अपना अपना समय चलता है। और लखनऊ वाला अग्निकांड तो बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक रहा है, आप सब न्यूज़ में काफ़ी दिन काफ़ी सब मतलब बात सुने होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख के बात थी वो 15 परिवार जो ने घर के वो मासूम बच्चे वो आगमा मतलब अपनी ज़िंदगी का खोई बैठा है। का करी हैं वो रूप जिकरा में मन के संस्कार ना बाटे, प्यार तो खाली गुण से होला जेकर दिल साफ बाटे। का बात है, गुड इवनिंग आशु जी, शुभ संध्या, शुक्रिया चाय के लिए। और निज दिन रूप निहारत नाही, नेह के चुनरी बांध लें, सुंदरता ता माटी हुए, हम ता तुहरे गुण पे रीझी ले हम। का बात है, का बात है। और बहुत सुंदर अनुष्का, शुभ संध्या, श्रावस्ती से अनुष्का हमें सबका सुना थी। और अब देखा फरमाइश के समय 7:05, तो 7:05 से आप सबके फरमाइश के भोजपुरी अवधि गाना बजी। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके जो गाना हुए उसका सुने के बाद में सबका गर्व होए, ना कि किसी भी तरह के मतलब मतलब कहा जाता है असहजता महसूस ना होए। तो चला सुना जाए अगला गाना, बहुत ही प्यारा सा, हमरे पसंद से आप सबन के लिए।

0: पवन सिंह की आवाज में ये गाना सुने के बाद अभी बारी है एगो कॉल का ऑन ईयर लेके, चला सुना जाए कि आवाज की कर। हेलो
1: हेलो,
0: शुभ संध्या दीपांशी, कैसन हा आपके हाल चाल?
1: बिल्कुल बढ़िया बानी, रोवा लोग बताएं कैसन बानी।
0: बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो आज ऑन एयर बोले के विचार बना है तो का कहा चाहते ना?
1: आज बहुत कुछ
0: खुशी के तो ठिकाना नहीं है। अपने विचार का सब श्रोतागण के सामने रखे।
1: श्रोता लोगों को बताना है ये कि मतलब हम एक योजना चला रहे हैं सारी लड़कियां मिलकर। तो देखिए आजकल हर एक चीज के शिकार हम लड़कियां ही हो रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है सब औरतों से हो रहा है। तो हमारे जो हम ग्रुप बना रखे हैं उस ग्रुप का नाम है महिला सपोर्ट, महिला सहारा। जो यहाँ आपको हर एक चीज मिलेगा, मतलब आपको कोई तकलीफ है, अगर घर विवाद है तो पुलिस की भी दिक्कत हो, मतलब आपको मिलेगी।
0: एक प्रकार से आप एनजीओ के निहायत काम कर रहे थे।
1: हाँ, और इसमें आपको मतलब डॉक्टर, जैसे आपकी कोई दवाई नहीं हो पा रही है, ग्रुप पैसे लगाकर आपकी दवाई कराएगा। इसमें जैसे किसी से ब्याज ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, तो उसे हमें ब्याज देना पड़ता है। इसमें ब्याज नहीं देना है, ठीक है?
0: तो दीपांशी हम आपका निवेदन करब कि आप संपूर्ण जानकारी चैट रूम में बताए दिए श्रोतागण का, जोने से कि सबका जो जानकारी है एक साथ एक जैसन मिल जाए, क्योंकि कोई कोई के पास नेटवर्क की वजह से पूरी जानकारी ना मिल पावत हुई और ना ही पूरी जानकारी।
1: वो एक्चुअली क्या ना, मैं चैट रूम में आना बंद कर दी हूँ।
0: नहीं तो बिल्कुल प्रयास करें दीपांशी, जोने से आपके जो बात है
1: आना, मतलब इसलिए नहीं बंद कर दी क्योंकि इस वक्त मुझे टाइम नहीं मिला। मैं अभी लोगों को बताकर अभी निकली थी, तो आज मैंने मुझे याद आया कि आपके यहाँ कॉल पे है, तो मैंने कॉल कर दिया है कि हाँ मैं चैट बॉक्स में आके बता दूंगी, मुझे टाइम मिलेगा, मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। मगर मैंने सोचा कि जो लोग चैट बॉक्स में नहीं है उन लोगों को भी तो डालना जरूरी है।
0: तो ये ग्रुप के नाम का है दीपांशी जी?
1: इस ग्रुप का नाम है महिला सहारा, मतलब
0: महिला सहारा। बिल्कुल। तो भाई श्रोतागण, जेका कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या के महिला संबंधी जो सपोर्ट चाहिए, तो ये ग्रुप से आप सभी जुड़ सकते हैं।
1: हाँ,
0: तो
1: और इसमें ना आधार कार्ड लगेगा, ना पासबुक लगेगा, मतलब आपकी कोई भी आईडी नहीं लगेगी, सिर्फ इसमें लगेगा आपका फोटो, आपके गाँव का नाम, आपका नाम, आपका फोन नंबर। और आप जब अप्लाई करेंगे, मतलब इसमें ग्रुप में जुड़ेंगे, तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि
0: सो दीपांशी जी के जानकारी बड़ी ही बढ़िया रही और नेटवर्क इशू की वजह से उनके फ़ोन जो है वो डिसकनेक्ट हो गए। तो फिलहाल देखिए महिला लोगन के लिए अगर यह कोई काम करती तो इन्हें बहुत सारी शुभकामना। तो आगे भी बात होत रही लेकिन ये गाना संपूर्ण रूप से पूर्ण होने वाला है। अब आप सब इनका बारी है अगला गाना सुने के, और हम तो कही थे कि आप सब फटाफट से का कहा जाता है ना कि अपने पसंद के जो गाना है उस सुने के लिए तैयारी कर लिए और फटाफट से चैट रूम में लिख के भेज दिए।

अरे ये बात तो सही है कि जय हमार लिसनर है, चाहे यहाँ से, चाहे विदेश से, चाहे दूसरा शहर से, चाहे यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, मुंबई से, शिमला से, तमिलनाडु से, जहाँ जहाँ से, सब के सब बड़ा फुर्सत से गढ़ा बना है। और अब बारी है वो गाना सुने के जोन की बना है एगो, मतलब कहा जाता है ना कि पूरे भोजपुरी भाषा और रूप में बना है, गढ़ा है, जिमा अवधि छलक जो ने देखे सुने का मिला थी। तो चला सुना जाए दिलीप कुमार और आपके भजंती माला के ऊपर फिल्मावा गवा गाना दो हंसों का जोड़ा, जिका आपने खूबसूरत आवाज़ से सुनाई है लता मंगेशकर, और ही गाना है फिल्म गंगा जमुना से। तो चला सुना जाए।

तो शाम के सबसे बेहतरीन फरमाइश के बाद अब अगली फरमाइश की ओर चला रुख किया जाए। और अगली फरमाइश है हमने सबके अनुष्का जी के, तो चला सुना जाए कौन सा गाना है जो उन्होंने सुने के हमार दुल्हनिया। तो चला सुना जाए अनुष्का के फरमाइश के हमार दुल्हनिया।

अभी गाना सुने के बाद है रवि के फरमाइश के गाना सुने के, जो उनके बोल हैं बालम बालम बालम। तो ये गाना सुने बिना तो शाम के जान पर से शुरुआतें नहीं होती, लेकिन बड़ा बढ़िया सा गाना है, चला सुना जाए और सुने के बाद माँ एंजॉय की जाए। तीरथ प्रसाद सोनी जी, शुभ संध्या का हाल है और भोजपुरी फरमाइश करे के लिए आप सबका स्वागत।

अब बारी है हमारे सबके मुंबई वाले लिसनर के गाना सुने के। सबलू सावंत जी के फरमाइश के प्यारा सा गाना आप सबन के लिए, बदरिया से झांके चंदा।

अब अगला गाना सुनने के बारी है और अगला गाना है मुमताज़ अंसारी जी के फरमाइश के दर्द कितना पिरतिया में होला। और ये गाना सुनने के बाद आप सबके दिल के दर्द तो बिल्कुल ज़रूर मिट जाएगी।

भरला, इंतजार हो जाला, अखिया में उमर भरला, इंतजार हो जाला, दिल बस में ना रहेला जब प्यार हो जाला।

नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला, रंग नहिया के ना उतरे और चटकार हो जाला। ऐसन तीर है जे दिल के पार हो जाला।

ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रीतिया में दर्द तो बहुत होत है और एकरे बाद अब अगला गाना सुने के बारी हो चुकी है कि तीरथ प्रसाद जी सुना चाहते कोई भोजपुरी भजन, तो बिल्कुल इनके लिए अभी प्ले हो जाते हैं कुछ ही देर में एगो भोजपुरी भजन।

भजन सुने के बाद अब अगला गीत के बारी है, जो उन गीत सुने के फरमाइश है श्री देवी प्रसाद जी के, जो उनकी सुना जाते हैं एगो भोजपुरी देशभक्ति गीत। तो चला सुना जाए ई प्यारा सा गीत रंगदे बसंती फिल्म से, बोला कहिया आई बा।

बहुते प्यारा गीत सुने के बाद अब बारी है अगला गीत के, जिका सुने के बाद माँ आप सबन के दिल के धड़कन एकदम खुश हो जाई। और ये गाना के फरमाइश है अविनाश जी के, तो चला सुना जाए अविनाश के फरमाइश के ये प्यारा सा गाना, एगो नेमुआ दो चार मिर्चा लटकाला चोटी में।

शुभ संध्या राजेश, कैसन है आप? और ये प्यारा सा गाना आप सुने के बारी अनिल जी के फरमाइश के, अनिल जी सुना चाहत हैं ये बहुत है खूबसूरत सा गाना। तो चला अभी गाना के बारी का, एक समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है तो सबका आपन फरमाइश सुने के बारी है, तो चला सुना जाए प्यारा सा गीत।

0: रुक जा बेटा रुक जा, ही गांव छोड़ के ना जा।
1: हमारा के मत रोकी बाबूजी, हमारा के मत रोकी। भूख और प्यास के सिवा ई गांव ई माटी में का रखलवा।
0: ऐसन कह के बेटा ई गांव ई माटी का घारी मत दा। हे ई गांव के माटी से हम तोरा के पलनी पोसनी इतना बड़ा कैली कि तू हमार सहारा बनबा और तू ही हमके छोड़ के जात हुआ।

सो कमल नयन के फरमाइश के गाना सुने के बाद अब बारी है राजेश जी के फरमाइश के गाना सुने के, और बहुत ही प्यारा गाना मत भुलैया परदेसी। और बिल्कुल परदेस में जाए के बाद अपनन का नहीं भुलाए चाहिए तो बिल्कुल अच्छी बात है। और अब चलत चलत अब राजेश के फरमाइश के गाना सुने के बारी है।

अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, दर्द जुदाई का सह लेने दो। और ये गाना के तर्ज बना, ये गाना बड़ा है, प्यारा है। और अब अगला गाना है हमारे सबके लिसनर इम्तियाज के फरमाइश के, तो चला सुना जाए अक्षरा सिंह के गाना चुम्मा।

चलत चलत सबके फरमाइश पूरा करे के समय है, तो अब आखिरी समय के फरमाइश पूरी प्ले हुए में भाई टाइम लगा था। अगला गाना है नागेश्वर जी की फरमाइश के, राधे कौन से पुण्य किए तूने, चला सुना जाए और थोड़ा थोड़ा सा सबके फरमाइश और आगे के सब फरमाइश आप सब आपन गीत आपके नाम से बिल्कुल सुन सकते हैं। और तब तक के लिए बजावत रहे आपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

नागेश्वर जी, आज भोजपुरी दिवस है तो आप हिंदी गाना गीत आपके नाम से माँ सुन सकत हैं। आपका अगर भोजपुरी गीत सुनेंगे तो आप फरमाइश कह सकते हैं, लेकिन अभी समय हो चुका है। अगला फरमाइश अनिल जी के चला सुन लिया जाए, और गीत है बलमुआ हो तोहरा से प्यार।

नई नई फिल्मन के, तो उका जाने के लिए बिल्कुल तैयार रही हैं और बजावत रही हैं अपन रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन, आप सुनत रहे शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार आदाब एंड सशकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शफरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में खास खास खास बात जरूर बताना, एक चीज छोड़ के, कि आज आप सबका था थर्सडे स्पेशल वाला भोजपुरी गुंडा मैसेज मसाला और आप सभी ने बहुत ढेर सारे भोजपुरी गाने सुने हैं और मल्ले बल्ले मजा ही आ गया ना। पूरे पूरे पूरे पूरे पूरे हफ्ते का कसर एक ही दिन में निकाल लेते हैं। सो चले अब आपके जज्बातों की गठरी को खोलने का वक्त हो चुका है। फटाफट से अपनी फरमाइशी गठरी को खोल लीजिएगा, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिएगा। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिएगा और लगा दीजिएगा जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपकी और ये आपकी आज सिंपल नॉट सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, अनुष्का श्रावस्ती से, राजेश कुमार बेदर्दी गोंडा से, केके गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका दिल से स्वागत है, और आशा मिश्रा जी लखनऊ से, बबीता जी गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, इम्तियाज अहमद जी गोंडा से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, नवीन राजपूत जी एमपी से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हू इज नॉट सो सिंपल। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से हमारी आज की पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना तुमको जानम। सो एंजॉय करते हैं तीन मोती मूवी का ये वाला गाना, कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में 90s का हाउ रोमांटिक वाला नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन।

साथी का ये गाना कुमार सानू साधना सरवन की आवाज में लव इश्क मोहब्बत प्यार वाला नगमा हमने एंजॉय किया है अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर। इसी के साथ में इन्होंने क्या खूब कहा है, अनिल वर्मा जी का कहना है कि किस्मत पर ना सही पर खुद पर एतबार है मुझे, किस्मत पर ना सही पर खुद पर एतबार है मुझे, मेरी हर सांस में सिर्फ तेरा ही इंतजार है, दुनिया चाहे जो भी कहे हमारे इस रिश्ते को, दुनिया चाहे जो भी कहे हमारे इस रिश्ते को, पर मेरी रूह को सिर्फ तुझसे ही बेपनाह प्यार है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना लाल दुपट्टा, उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, और मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। सो एंजॉय करते हैं ओह वाव वाला नगमा, आई मीन सुपर हिट नगमा, हर तरफ लाल रंग बिखेर देने वाला नगमा, हर तरफ दिल को धड़काने वाला नगमा, अनुष्का की फरमाइश।

गाना कि तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो। हमने एंजॉय किया है ये लाल दुपट्टा सुपर डुपर डुपर हिट नगमा अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। इस गाने को सुन के हमारे एक नटखट लिसनर का कहना है कि मेरे एक बात समझ में नहीं आती है, जब दिल लेगा तो जान देने की क्या बात है। अरे पगले समझे नहीं, ये जो दिल का सौदा है ना, ये जो दिल लेने का सौदा होता है, ये जान देने के और जान लेने के ही तो बराबर होता है ना। इसीलिए चाहे दिल देने की बात करो चाहे जान देने की बात करो, बात तो सेम सेम ही हुई ना। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार बेदर्दी की। उनको सुनना है गाना घूंघट की आड़ से दिलबर का। सो एंजॉय करते हैं, हम है राही प्यार की मूवी का ये सुपर डुपर हिट नगमा कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमारे राजेश कुमार बेदर्दी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है ना।

अधूरा रहता है, और जब तक ना पड़े आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हाउ रोमांटिक नगमा हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है के गुप्ता जी की, तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। और तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से के गुप्ता जी को दिल से सुनना है सपने साजन के मूवी का गाना अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में। ये दुआ है मेरी रब से, तुम्हें आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए आए हाय। इंजॉय करते हैं फिर से एक बार इश्क प्यार मोहब्बत वाला नगमा के गुप्ता जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो गौरव इंडिया वाले और अरमान पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में सपने साजन के मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है। केके गुप्ता जी की फरमाइश पर चुकी है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ और ऐसे ही फरमाइशों का सिलसिला चलता रहेगा मेरे दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर डुपर हिट नगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से और मनीष शर्मा खुरासा गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

रास्ते टूट जाए और बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनके। हमने एंजॉय किया लता जी की आवाज में, ये गोल्ड इज गोल्ड वाला, ऑब्वियसली गोल्ड नहीं डायमंड वाला या फिर जो भी कहें, सब कुछ कम पड़ेगा, सब कुछ फीका पड़ेगा इस नगमे के आगे। हमने एंजॉय किया ये नगमा आशु मिश्रा जी की फरमाइश पे जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। एंड दोस्तों यू नो व्हाट, अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी, बबीता जी की गोंडा से। और बबीता जी को जानते हैं गोंडा से कौन सा गाना सुनना है। हो गया है तुझको तो

0: ये प्यार सजना से एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा DDLJ मूवी का सिर्फ और सिर्फ हमारी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही स्वीट सी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी बबीता जी की फरमाइश पर स्टेडियम रहा
1: हो गया।
0: और यही था अभी तक और पता नहीं कहां हो गया।
1: यही
0: होता है।

हमने एंजॉय किया है डीडीएलजे का ये गाना, बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट एसआरके और काजोल का नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों इट्स कुमार की एमपी रीवा से, और इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना कीड़ा। सो एंजॉय करते हैं एक्शन जैक्शन का ये वाला नगमा, तड़कता भड़कता सा हाई एनर्जी हाई बीट वाला नगमा, पार्टी वाला नगमा, रॉकिंग नगमा। इट्स कुमार की फरमाइश पर जो कि है एमपी रीवा से, नाउ रॉक यू।

दिली हमने एंजॉय किया एक्शन जैक्शन का ये नगमा इट्स कुमार की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना खता तो जब होगी हम हाले दिल किसी से कहीं, और किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। आय हाय कितना खूबसूरत नगमा है, भले ही दर्द भरा नगमा है लेकिन आई लव दिस सॉन्ग। सो एंजॉय करते कुमार सानूवाल का याग्निक की आवाज में नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सभी कहा ही नहीं और किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में ये दर्द भरा नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों, नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। चले चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नवीन राजपूत जी की, एमपी से। नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है गाना ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। ओ माय गॉड, एक के बाद एक सैड सॉन्ग, आखिर क्या चल रहा है। देवदास बनने का इरादा है सो प्लीज मुझे भी बुला लेना, क्योंकि मैं तो बिना मतलब के देवदास बनी फिरा करती हूँ। अगर आप लोग के साथ रहूंगी तब तो पक्का देवदास वाली ट्रॉफी तो मेरे हाथ आ ही जाएगी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर, जो की है एमपी से। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो गीता श्रीवास्तव जी। स्टे

मेरे लखन ने, राम लखन का ये गाना हमने एंजॉय किया, लता जी की आवाज में, लता जी की दर्द भरी आवाज में, नवीन राजपूत जी की फरमाइश पे जो की है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से, और अनिल शास्त्री जी को गोरखपुर से सुनना है गाना जब भी ये दिल उदास होता है। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, आई मीन शायद एक बार फिर से दर्द भरा नगमा, लेकिन इस बार मोहम्मद रफी जी की एवरग्रीन आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

आपने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर जो की है गोरखपुर से। इसी के साथ में नवीन राजपूत जी का कहना है एमपी से कि हमने भी कभी प्यार किया था, हमने भी कभी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, दिल टूट कर रह गया, दिल टूट कर रह गया जब उसने कहा कि अरे मैंने तो मजाक किया था। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है, मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और उनको सुनना है फिर से मोहम्मद रफी जी की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। सो एंजॉय करते हैं चिराग दिल का जलाओ, आहा दिल का चिराग जला तो दें, हम जलाते हैं किसी और के लिए फिर वही बुझा के चला जाता है, क्या मतलब बनता है, जिसके लिए उजाला किया उसी ने अंधेरा कर

जरा दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ बहुत अंधेरा है। मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये दर्द भरा नगमा हमने एंजॉय किया है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। इन्हीं के दर्द भरे नगमे को सुनते सुनते हमारे एक लिसनर का दर्द उमड़ पड़ा है और उन्होंने क्या खूब कहा है। उनका कहना है कि कुछ कहना था तुमसे, तुम सुनना चाहोगी क्या? जिंदगी छोटा सा सफर है, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी क्या? और जब कभी मुझे नींद ना आए, जब कभी मुझे नींद ना आए, तुम मेरे साथ, तुम मुझे गोदी में सुलाओगी क्या? वैसे तो मैंने गवाया है अपनी हर एक चीज को, वैसे तो मैंने गवाया है अपनी हर एक चीज को, तुम फिर भी वो प्यारी चीज बनना चाहोगी क्या? आए आए। ये लाइंस थी नागेश्वर धाकड़ की तरफ से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना बरसों के बाद। सो एंजॉय करेंगे ये सुपर डुपर हिट नगमा और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ दोस्तों हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आप के अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। और दोस्तों जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है उनसे गुजारिश है कि कृपया जाके फटाफट से पेट पूजा कर लीजिए और फिर अपनी फरमाइशी की महफिल में अपने जज्बातों की गठरी के साथ में और अपनी एंटरटेनमेंट की और अपने सुकून की लड़ियों की और हवाओं की फिजाओं के साथ में फिर से वापस आ जाइएगा। एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश, मीन्स मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश जो की है बाराबंकी।

0: लवली निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में

नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
6: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कमरे की हो जाए तो प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल ठर की हो।

बार थैंक यू का और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइश में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आई एम डैम श्योर आप लोगों ने पेट पूजा कर लिया होगा और परमाइशी की महफिल में फिर से एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट की लड़ियां भी छेड़ने आ चुके हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से। मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है गाना, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, और कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, मुझसे शादी करोगी। एंजॉय करते हैं मनीष शर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना, और मनीष शर्मा है खुरासा गोंडा से, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर।

0: फिल्म सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाज में हम एंजॉय किया ये नगमा मनीष शर्मा की फरमाइश पर, जो कि है खुरासा गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अरमान की पटेल नगर गोंडा से। अरमान को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना आंख से छलका सूर जा टपका शराब। स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं
1: पिला दे
0: रात की महफिल वाला नगमा, बहारी गजल वाला नगमा, अरमान की फरमाइश पर जो कि है पटेल नगर गोंडा से। बड़े अरमान निकल रहे हैं आपके अरमान जी।

हवा परवाने की जवाब में और आंख से छलका आंसू और जाटप का शराब में हमने एंजॉय किया है ये नगमा अरमान की फरमाइश पर और मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना रजिया गुंडों में फंस गई। सो एंजॉय करते हैं थैंक यू का एक बार फिर से सुपर डुपर हिट नगमा लेकिन इस बार निशा की फरमाइश पर।

अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। हम एंजॉय करिए नगमा निशा की फरमाइश पे जो की है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना तू कौन है तेरा नाम क्या। सो एंजॉय करते हैं सुरेंद्र जी की फरमाइश पर ये अक्षय कुमार वाला गाना। कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी का नगमा स्टेडियम।

कभी डूम ऐसे अक्षय अक्षय कभी बैंग कभी बूम ऐसे अक्षय। हमने एंजॉय किया है सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। और बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की, और सबीहा को सुनना है गाना मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी जिसपे आने लगा मुझको प्यार। तो हटा सावन की घटा का ये आई मीन हेलो ब्रदर का ये गाना एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ सबीहा की फरमाइश पर।

एंजॉय किया है हेलो ब्रदर का ये नगमा सभी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है कृष्णा वर्मा की, और कृष्णा वर्मा को दुखरा नाथ गोंडा से सुनना है गाना शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। स्टे ट्यून्ड।

टूट गया कि चकनाचूर हो गया। हम एंजॉय किए बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। हमारे छोटे पैकेट मींस कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, अगली फरमाइश और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की, रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। उनको सुनना है दिल पे चलाई छुरियां बेवफा सनम का। एंजॉय करते हैं ये नगमा और इसी के साथ में आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहिए आप सभी से अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वाली ऊपर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। घर जला है मेरा क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। ओह माय गॉड, नए यार के नाम, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। स्टे ट्यून, मिलते हैं कल।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जी हाँ, रात का पहर है साहब, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो चाहने वालों की इस रात में आप सभी का ख्याल मकदम है, इस्तकबाल है, आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। जी, और आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, आज जिस मौजू को हम छुएंगे, जिंदगी के जिस पहलू को छुएंगे, वो पहलू है याद। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ यादों में ही रह जाती हैं और यादों तक ही सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन उन यादों से छुटकारा पाना शायद मुश्किल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू फॉरगेट एनी बैड थिंग्स, मतलब जिंदगी के जो कड़वे अनुभव हैं वो हमको जिंदगी भर कुछ न कुछ सिखाते हैं। लेकिन जो बात एक बार हमारे जहन में पैवस्त हो गई, आकर बैठ गई, मुझे लगता है कि शायद अपनी उसी बात से मुकर जाना हम सभी के बस की बात नहीं होती। कहा कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। जाने वाला जा चुका है और किसी आने वाले की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा भी है कि अगर तलाश करूं, अगर कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं ढूंढने से भगवान मिलता है, तो अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अब दूसरा पहलू, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। जी हाँ, हम भी तो आप, हमने आपको जिस नजरिए से देखा है, शायद वो नजरिया आपको न मिले। न जाने कब तेरे दिल पे नई सी दस्तक हो, न जाने कब तेरे दिल पे नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा, और इंसान के रहने और न रहने पर जो एक फर्क महसूस होता है, जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है, और जिस वास्तविकता से इनकार हकीकत के मुंह पे खुला तमाचा है, वो ये है कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जी हाँ, जिस इंसान के साथ हमने जिंदगी के हसीन पल बिताए होते हैं, उसी की यादें हमें शायद वहाँ तक जाने नहीं देती जहाँ हम जाना चाहते हैं। आइए, यादों के नाम माजी के नाम करते हैं आज का बहारे गजल का ये सफ़र शुरू, और इस श्रृंखला में, इस कड़ी में आइए शुरुआत करते हैं जब दिल से दिल टकराता है। शुरुआत यहाँ से होती है, देखिए शुरुआत हमने यहाँ से की है, और आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती रहेंगी, तो देखिए हम इस नगमे को कहां तक पहुंचाते हैं। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए। सुनते रहिए और रेडियो गैलेक्सी 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिलता।

जी, जब दिल से दिल टकराता है। कहा जाता है कि मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, मगर मुश्किल तो ये है कि ये दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यही तो बात है साहब, आसान नहीं होता। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे गजब का संगम क्या है, मतलब मिलना क्या है, तो मैं कहूंगा कि जिसे हम पसंद करते हो वो हमें पसंद करता हो। अगर ऐसा है तो मतलब वी आर सो लकी, हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जी, हमारे साथ तो भाई इम्तियाज अहमद जी हैं। भाई कैसे हैं आप? शुभ संध्या आपको, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और रिक्स कुमार जी हमको दिखाई पड़ रहे हैं, भाई क्या बात है, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भी अच्छे होंगे। ममता कसुंदन जी हैं, नमस्ते सर। जी हाँ, नमस्कार आपको भी, शुभ संध्या। लवली सिंह जी हैं, मनु सर गुड इवनिंग। और सर ओपन माइक का प्रोग्राम किस दिन होता है? जी ये हर रविवार को होता है 1 से 2। आपका ही अपना स्टूडियो है, गली बहुत खूबसूरत है और आपका गला भी खूबसूरत होगा, आवाज़ भी खूबसूरत होगी। पधारिए किसी दिन, 1 से 2 हर रविवार को हम होते हैं आपके साथ ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना एफएम में। सविता शास्त्री जी है, जी चरस्पर्श आपको। और जी, जब दिल से दिल टकराता है और इसके पश्चात हमको लगता है कि इंसान की जो आंखें हैं वो आंखों से टकराती हैं, तमन्ना लुट गई फिर भी तेरे दम से मोहब्बत है, तमन्ना लुट गई फिर भी तेरे दम से मोहब्बत है। मुबारक गैर को खुशियां, हमें गम से मोहब्बत है। गम से मोहब्बत कर लीजिए साहब तो डर नहीं लगता गम का। हम गम से छिपे छिपे फिरते हैं तो डर सा लगा रहता है तकलीफों से, और जब अपना बना लिया तो फिर काहे का डर। तमन्ना लुट गई फिर भी तेरे दम से मोहब्बत है, मुबारक गैर को खुशियां, हमें गम से मोहब्बत है। न होता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, न होता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, अरे अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते। जी हाँ, अगर इस दुनिया में हमारे कुछ अपने हैं तो कुछ बेगाने भी हैं। बात दिल से शुरू हुई थी और अब निगाहों पर आकर अटकी है। जी हाँ, चलिए दिल से निगाह तक का सफ़र आपको इस प्यारी सी कव्वाली से कराते हैं। जी हाँ, आइए दिल से दिल टकराते हैं। अब निगाहों में क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे, जी हाँ ये बताएगी ये प्यारी सी कव्वाली, निगाहों में क्या है। जी हाँ, निगाहों में ये है। सुनते रहिए और रेडियो गणस 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत संदगमा आप सभी के लिए पेश है।

जी हाँ, बात कर रहे हैं यादों के सफर की, यादों के बारात की। आज बात कर रहे हैं इंसान के माजी पर, उसके बीते हुए कल पर। और हमको उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें जोड़ भी पाएंगे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, और जब निगाहें मिल गईं, आंखें चार हो गईं, तो फिर देखिए आगे इंसान को एक डर लगता है। आप यकीन कीजिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज होगी उसे खोने का डर आपको ज्यादा होगा। हो सकता है वो आपकी जिंदगी में कोई वस्तु हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है आपकी अपनी कोई दोपहिया चार पहिया गाड़ी हो कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो। नहीं नहीं नहीं नहीं, हमने देखा है कुछ लोगों को कि भाई एक हमारी स्कूटी खड़ी हुई है, फिर हम एक बाइक ले आए लेकिन वो स्कूटी रखी हुई है, उससे दूर नहीं जाएंगे। होता है, इंसान की ज़िंदगी में चीज़ों का भी महत्व होता है, व्यक्तियों का महत्व होता है। और कभी कभी जब हमको लगता है कि हमने गलत चुन लिया, शेर बनता है कि अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगा लिया वो दूर हो गया, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बिन पढ़े लिखे मशहूर हो गया, तन्हाइयों ने तोड़ दी हम दोनों की अना। अना कहते हैं स्वाभिमान को, वकार को, सेल्फ रिस्पेक्ट को। तन्हाइयों ने तोड़ दी हम दोनों की अना, आईना बात करने पे मजबूर हो गया, ये दुनिया मुझसे पूछ रही है अजब सवाल, ये दुनिया मुझसे पूछ रही है अजब सवाल, वो पास आ गया कि बहुत दूर हो गया। जी हाँ, मोहब्बत में इसके सिवा नहीं क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है किसी की रात होती है। तो ये बढ़ते हैं एक कदम और, दिल मिलाया, आंखें मिलाईं, और अब आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो अब अगली परिस्थिति क्या होती है, वो पंकज उदास की एक प्यारी सी गज़ल है। जी हाँ, ये आपको सुनाते हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं भाई अनिल शास्त्री जी, दादा चरण स्पर्श। गुड इवनिंग मनु जी, आज तो आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत सोनी जी हैं, गुड इवनिंग मनु सर, बहुत बहुत शुभ संध्या आपको भी। और पूर्णिमा जी, शुभ संध्या जी, मनु सर कैसे हैं आप, बहुत दिन बाद आपका ये संदेश मुझको प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा हूँ मैं। जी हाँ, और अब चलिए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल। मोहब्बत के बाद अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो शायद शायद ये भी कह सकता है, क्या कह सकता है ये हम नहीं, ये गज़ल बताएगी।

वो बन सवर के चले हैं घर से, है खोए खोए से बेखबर से, खुदा बचाए बुरी नजर से। वास्तव में अभी मैं बात ही कर रहा था कि इंसान को जिसकी परवाह बहुत ज़्यादा होती है कि हम इसे न खो दें, वो कहीं ना कहीं उसे ही खो देने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अपने आप में तो एक कहावत है कि सादगी भी कयामत की अदा होती है। अगर किसी को देखना ही आप बहुत साधारण तरीके से निकलेंगे तब भी आपको नज़र लग सकती है, और हो सकता है कोई बहुत बन संवर के निकले और नज़र ना लगे। ये तो नज़र नज़र का फेर है, वरना कुछ लोग जो ताजमहल को विश्व का आश्चर्य कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो एक कब्र है। तो देखने वालों का नज़रिया है, कोई कहेगा कि ये कीचड़ है, पानी और मिट्टी का संगम, और कोई कहेगा अगर ये ना हो तो कमल कैसे खिलेंगे। यही जाड़ा जब हमें परेशान करता है तो हम चाहते हैं थोड़ी सी गर्मी आ जाए, और यही गर्मी आ गई है तो अब चाहते हैं कि जाड़ा हो जाए। तो जो हमारे पास है उसकी कद्र शायद हम कम कर पाते हैं। एस कुमार जी आ चुके हैं भाई, और बिना किसी शायरी के साथ है। वेरी गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। और सर जी शायद काजल लगाना भूल गए होंगे, और जी हाँ, काजल लगाने से नज़र से बचना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई काजल लगा करके बुरी नज़र से बच जाता, लेकिन नज़र वाले नज़र लगा ही देते हैं साहब, आप नाक काजल लगाओ। अब एक पहलू और आगे बढ़ते हैं। अब आपको एहसास होता है कि खुदा ने बुरी नज़र से तो बचा लिया, लेकिन जो हमारा महबूब है उसकी नज़र किसी दूसरे पर पड़ गई, अब क्या होगा? अब अगला पहलू आता है कि दरिया से इख्तिलाफ़ का अंजाम सोच लो। इख्तिलाफ़ मतलब बगावत, मतलब किसी के विरुद्ध जाना, अगेंस्ट हो जाना। दरिया से इख्तिलाफ़ का अंजाम सोच लो, लहरों के साथ साथ बहो, तुम नशे में हो। दरिया से इख्तिलाफ़ का अंजाम सोच लो, लहरों के साथ साथ बहो, तुम नशे में हो। क्या दोस्तों ने तुमको पिलाई है रात भर, क्या दोस्तों ने तुमको पिलाई है रात भर, अब दुश्मनों के साथ रहो, तुम नशे में हो। बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासला रखो, जो बहुत शरीफ हैं उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, नुकसान करता है। बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासला रखो, पी लो मगर कभी न कहो तुम नशे में हो। पी लीजिए लेकिन ये मत कहिए कि नशा हो गया। बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासला रखो, पी लो मगर कभी न कहो तुम नशे में हो। कागज का ये लिबास, अब उपमा देखिएगा, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, कागज का ये लिबास चरागों के शहर में, जाना जरा संभल के चलो तुम नशे में हो। मासूम तितलियों का वो, मासूम तितलियों को मसलने का शौक है, मासूम तितलियों को मसलने का शौक है, तौबा करो खुदा से डरो तुम नशे में हो। और जी हाँ, जब बात नशे किया जाती है तो मुझे एक बहुत ही प्यारा नगमा याद आता है, रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ है। शम्मी कपूर जी पर्दे पर हैं,
फिल्म का नाम आप गेस कर लीजिएगा। और हरी शरण जी आ चुके हैं, हरी ओम सर जी, हरी ओम आपको भी। और आइए अब आपको सुनाते हैं वो प्यारा सा नगमा, पी लो मगर कभी ना कहो तुम नशे में हो। आइए पीने का एक प्यारा सा अंदाज आपको दिखाते हैं। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, ये सबने सुना है, लेकिन ये नगमा शायद हो सकता है कम लोगों ने सुना हो, हो सकता है आपको ये बेहद पसंद भी आए। जी हाँ, आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल ये नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, इंसान अपनी सारी खुशियां अपने महबूब को देख कर के भी उदास नहीं होता, खुश होता है। जी हाँ, हमारे साथ हरी शरण जी हैं। नज़र का फेर है बस, और कुछ नहीं, तुम जान हो मेरी कोई और नहीं। लाखों चेहरे हैं इस भीड़ में, लेकिन मेरी आँखों को भाए सिर्फ तुम। शक की इन दीवारों को प्यार से गिरा दो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो यकीन दिला दो। क्या बात है भाई हरी शरण जी, लिखते हैं कि आईने में तो हर कोई नज़र आता है, मुझे तो बस तुम्हारे सिवा कोई और नहीं भाता। खूबसूरत तो बहुत है यहाँ, मगर ऐ सनम मेरी आँखों की जन्नत सिर्फ तुम हो। क्या बात है भाई, कायनात जी आ चुकी हैं। मोहब्बत में उन्होंने लिखा है कि ये दिलकशी आकर्षण या लगाव की शुरुआत, उन्स अपने प्रिय के साथ अंतरंगता और अपनत्व का भाव, इश्क तीव्र और समर्पण से भरा प्रेम, अकीदत प्रियतम की प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा, इबादत पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति और पूजा में लीन होना, जुनून प्रेम की वह अवस्था जिसमें सांसारिक बुद्धि और समाज की परवाह खत्म हो जाती है, मौत सूफियों के अनुसार ये शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि अपने अहंकार या सेल्फ ईगो का पूरी तरह से मिट जाना और ईश्वर में फना हो जाना। क्या बात है भाई, प्रेम के साथ चरण साम सूफिज्म, क्या बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। क्या बात है भाई कान्हा जी, भाई बहुत अच्छे लगे। हम भी जस्ट खाके अच्छा खाना खाकर बैठे हुए। सर जी हम हैं तो गम है क्या प्यारी। जी हाँ, और आइए अब चलते हैं, आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि बाप से अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गज़ल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलते चलते जगजीत सिंह साहब की ये गज़ल आप सभी के लिए।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी चंडीगढ़ के कुलचे। अन्विता ने अस्पताल में घुसते ही सबसे पहले यही सवाल पूछा, वो ठीक है ना? आईसीयू के बाहर बैठी भाभी ने गर्दन हाँ में हिला दी। फैमिली के और भी लोग थे, सब डॉक्टर से बातें कर रहे थे। अन्विता के हाथ पैर ठंडे पड़े हुए थे। मई की दोपहर में भी आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठते ही उसने आंखें मूंद ली। जो मंत्र, जितनी प्रार्थना याद थी, सब एक एक करके अपने आप उसके मन में आती जा रही थी। और साथ ही भाभी का आया वो मैसेज, दिल्ली पहुंचते ही इस अस्पताल में पहुंच जाना, शेखर हॉस्पिटल में है। मन फिर हड़बड़ा उठा, सब ठीक होगा। अपने को समझाती हुई अन्विता ध्यान भटकाती, फिर कोई डर मन खराब कर जाता। दो आंसू गाल पर भी गिर पड़े। कब से वो दोनों नहीं मिले थे, आज मिल भी रहे हैं तो यहां अस्पताल में। वो मुलाकात याद आने लगी, करीब 2 साल पहले जब वो दोनों पहली बार मिले थे। दिल्ली के जनपद बाजार की चमक उस दिन कुछ ज्यादा ही थी। जाता हुआ नवंबर सर्दी को तेज आवाज देकर बुला चुका था। हवा में खुश्की थी लेकिन गुनगुनी धूप सब कुछ ठीक कर रही थी। अन्विता ने लगभग 10 मिनट तक मोल भाव करते हुए एक दुपट्टा लगभग एक तिहाई दाम में खरीद लिया था। अपनी इस जीत पर इतराती हुई वो आगे बढ़ी ही थी कि एक आवाज ने उसे चौंका दिया, इतने रुपए बचाकर क्या कर लोगी? उसने पलट कर देखा, ढीला ढाला कुर्ता और फिटेड जीन्स पहने हुए वो शख्स आखिर कहना क्या चाहता था और क्या वो उससे ही कह रहा था? आपने मुझसे कुछ कहा? अन्विता के पूछते ही वो बड़ी ढिठाई से हाँ कहते हुए उसकी ओर बढ़ाया, हाँ आप ही से पूछ रहा था। 1200 की चीज 400 में लाकर आपने जो 800 रुपए बचाए हैं उसका क्या करेंगी? पिज्जा पर निछावर कर देंगी या फिर किसी स्लिंग बैग पर लिपस्टिक या फिर आपको इससे क्या? अन्विता तुरंत उसकी बात काटते हुए बोली, ये होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, रिश्तेदार मान लीजिए। आप अन्विता है ना, बनारस से? अन्विता ने पूरा जोर लगाकर दिमाग के सारे कोने खोज डाले, कौन है ये? हाँ मैं अन्विता हूं, लेकिन आप? मैं शेखर, आपकी भाभी का कजिन। आपने मुझे नहीं पहचाना होगा लेकिन शादी में मैंने आपको देखा था। दीदी ने बताया था कि आप भी दिल्ली में ही हैं। ये नहीं पता था कि इस तरह यहां मिलना होगा। ओह हाँ, सब कुछ जुड़कर समझ में आने लगा था अन्विता को, शेखर भाभी का कजिन। हाँ याद आया, भाभी ने एक बार कहा भी था कि मैं दिल्ली में आपसे मिल लूं। सॉरी शेखर जी, पहचान नहीं पाई।
अन्विता ने झेप कर कहा था, सॉरी से काम नहीं चलेगा, ये जो रुपए बचाए हैं ना आपने, उसकी चाय पिला दीजिए, ठंड तो है ही। थोड़ी ही देर में वो दोनों चाय की दुकान पर बैठे बातों में मशगूल हो चुके थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है चंडीगढ़ के कुलचे। अब तक आपने सुना, एक दिन अचानक अन्विता की मुलाकात शेखर से बाजार में हुई। पहले तो अन्विता ने उसे पहचाना नहीं, फिर शेखर ने बताया कि वो उसकी भाभी का कजिन है और वो दोनों इससे पहले एक शादी में मिले थे। थोड़ी देर में वो दोनों एक होटल में बैठकर साथ में चाय पी रहे थे। अब आगे पता नहीं अन्विता के दिल में क्या आया कि उसने चाय खत्म करने के बाद तुरंत ही दो और चाय ऑर्डर कर दी। पता नहीं वो क्या चाहती थी, चाय खत्म ना हो या उनकी बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। उस दिन के बाद सब कुछ सही क्वांटिटी में मिलता रहा, चाय भी, धूप भी, बातें भी और शेखर का साथ भी। अन्विता को अभी तक एक बात समझ नहीं आई थी कि अचानक शेखर ने मार्केट में देखकर उसे पहचान कैसे लिया। जब दोस्ती ने थोड़ा और गहरा रंग लिया, तब अन्विता ने अपने मन का सवाल शेखर से पूछ लिया। शेखर ने उसकी ओर बेहद गहरी नजरों से देखते हुए एक और सवाल उछाल दिया, तुमको ये बात पूछने की जरूरत पड़ी भी कैसे? शेखर अचानक आपसे तुम पर आ गया था। अन्विता अचकचा कर रह गई और फिर ये सवाल, इसका क्या मतलब था? उसकी नजरें झुक गईं। शेखर ने फिर कहा, बताओ ना, तुम खुद इसका जवाब दो, मैं तुमको कैसे पहचान गया? अच्छा बताओ, हम किसको पहचान जाते हैं? वही ना जिसको बहुत गौर से देखा हो। शादी से आने के बाद मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता रहा, कितनी तो फोटो है मेरे पास तुम्हारी। 31 दिसंबर की शाम थी वो, पुराना साल जा रहा था, नया साल पूरे के साथ आने की तैयारी में था और इसी के साथ कुछ और भी आने वाला था अन्विता के जीवन में। शेखर जिस तरह से उससे पूछते जा रहे थे, अन्विता के पास कोई जवाब नहीं था, शेखर ही बोलते जा रहे थे। कई बार सोचा कि दीदी से तुम्हारा फोन नंबर ले लूं, फिर लगा ऐसा ठीक नहीं होगा और देखो ना आज अचानक तुम मिल गई। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है चंडीगढ़ के कुलचे। अब तक आपने सुना अन्विता और शेखर एक दिन अचानक बाजार में मिले और फिर उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन अन्विता ने शेखर से पूछा कि आखिर उसने इतने दिनों बाद बाजार में उसे अचानक पहचान कैसे लिया, तो शेखर ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और बोला कि उसने जब से अन्विता को देखा था तब से उसे भूला ही नहीं। अब आगे इतना कहते हुए शेखर ने अपनी हथेली अन्विता के हाथों पर रख दी। अन्विता ने झटके से चौंक कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। इतना सब कुछ इतनी जल्दी, यकीन करे या ना करे, मन के कोने से आवाज आ रही थी, हाथ क्यों खींच लिया, यही तो चाहती थी ना तुम भी, कह दो कि तुम भी शेखर को पसंद करती हो। अंधेरा हो रहा है, वापस जाना है, रूममेट इंतजार कर रही होगी, हड़बड़ाकर बस इतना ही कह पाई थी वो। शेखर ने मायूस होकर पूछ लिया था, कल कब मिलना है? ऑफिस है, मुश्किल होगा आना, पर्स में फोन रखते हुए अन्विता ने कहा था। शेखर हंसने लगा था, कुछ और झूठ बोल देती, संडे को ऑफिस है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं फोन का वेट करूंगा।

था जितना उस दिन। कम ऑन अन्विता, तुमने मेरी दीदी मतलब अपनी भाभी से ये क्या बकवास कर दी है? अन्विता सहम गई थी। बकवास नहीं की है शेखर, मैंने अपने रिश्ते का सच बताया है। किसी फैमिली को तो शुरुआत करनी ही होगी ना। आप थोड़ा रुककर बात करने वाले थे क्या? शेखर ने झुंझला कर कहा था, फैमिली से क्यों बात करनी है? लेकिन कहीं तुम शादी वादी के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोक पाई थी अन्विता। हाँ, शादी के बारे में ही तो शेखर। शेखर हैरानी से उसका चेहरा ताकते रह गए थे। मुझे लगा कि तुम आज की लड़की हो, प्रोग्रेसिव सोच रखती होगी। तुम तो कम से कम इन बंधनों के बारे में नहीं सोचोगी। लेकिन निकली तुम भी वही। शेखर का कहा एक एक शब्द उस पर अंगारे बनकर गिरता रहा। बंधन, प्रोग्रेसिव सोच, क्या कहना क्या चाहते थे वो? कुछ दिन तो एक दूसरे को समझने समझाने में खर्च हुए, फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, दरकते रिश्तों के बीच बढ़ती खाई थोड़ी और चौड़ी होती गई। इतनी चौड़ी कि जिसको पाटना अब पॉसिबल नहीं था। इस शहर की जगह जगह शेखर का नाम अन्विता को चिढ़ाता रहता था। नौकरी बदली, शहर बदला, दुखी था जो साथ रहा हर जगह।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है चंडीगढ़ के कुलचे। अब तक आपने सुना अन्विता और शेखर में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन जब अन्विता ने अपने परिवार वालों को ये बताना चाहा ताकि बात शादी तक पहुंच सके, तो शेखर नाराज हो गया और फिर धीरे धीरे उनके बीच में कभी भी ना पटने वाली खाई बन गई। अन्विता वो शहर छोड़कर दूर चली गई। अब आगे कुछ ही महीनों बाद अन्विता ने देश

भी छोड़ दिया। कंपनी के नए प्रोजेक्ट से जुड़कर यूएसए जाना शायद किस्मत की ही कोई चाल रही होगी। नया देश, नया ऑफिस, नए कोलीग्स। उस दिन अन्विता पूरी टीम के साथ बैठी दिल्ली की खासियत बता रही थी कि तभी एक लड़का लगभग दौड़ता हुआ आकर उसकी टेबल के पास रुक गया। तुम भी दिल्ली से हो? हाय हाय, आई एम प्रणव। उसने गर्मजोशी के साथ हाथ आगे बढ़ा दिया था। अन्विता बस मुस्कुरा कर रह गई थी। उससे बात करने में उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एक आध बार पहले भी देखा था उसे, हर समय वही हंसी मजाक, मौज मस्ती, बड़ा अजीब सा लगता था उसे। वो उसे जितना भी टालने की कोशिश करती, अन्विता को लगता कि वो उतना ही ज्यादा आसपास रहने की कोशिश करता। उस शाम को भी वही हुआ। अन्विता ने घर जाने के लिए बैग उठाया ही था कि वो अचानक दिख गया। अरे तुम अभी तक गई नहीं, चलो साथ में चलते हैं। वैसे तुम दिल्ली में कहां से हो? अब दिल्ली कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, स्टेट है पूरा, है कि नहीं? अन्विता का जवाब था। वो बोला, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली एक राज्य है, ऐसा कौन सा राज बता दिया तुमने मुझे? अन्विता कम से कम जवाब देते हुए पार्किंग तक जा पहुंची। वो अभी भी वहीं था। इस वीकेंड हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तुम भी चलो प्लीज। बहुत अच्छा खाना, छोले कुलचे, एकदम दिल्ली वाले, मना मत करना। अन्विता मना भी नहीं कर पाई। कितने दिन हो गए थे बाहर निकले हुए, ढंग का इंडियन खाना खाए हुए। उसने तुरंत हाँ कर दी। अपनी इस जल्दबाजी पर उसे हैरानी भी हुई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी प्रणव के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर हुई। वहां उन दोनों के सिवा ऑफिस का कोई भी नहीं था। बाकी सब अभी तक नहीं आए? अन्विता ने आसपास देखते हुए पूछा था। प्रणव ने नजरें चुराते हुए मेन्यू की ओर इशारा कर दिया था। बाकी लोगों का इंतजार तुम करो, मेरा इंतजार तो कुलचे कर रहे हैं। उस दिन उन दोनों ने कितना कुछ खाया, पेट भर चुका था पर मन नहीं भरा था। बातें दिल्ली की हुई, बातें दिल्ली की बाजारों की हुई, फिर घर परिवार तक बढ़ गईं। मैं दिल्ली में रही हूं काफी समय तक, फिर शिफ्ट हो गई थी, अन्विता ने बताया। उसके बताते ही प्रणव ने चौंक कर पूछा, कोई दिल्ली कैसे छोड़ सकता है? कहते हैं कि जब दिल टूटता है तभी दिल्ली छूटती है। कहते ही उसने जैसे ही एक ठहाका लगाया, ठीक उसी वक्त अन्विता का चेहरा सफेद हो गया। 10 मिनट के अंदर ही वो वहां से निकल आई थी, लेकिन पूरी रात दिल्ली की उन्हीं यादों में डूबती उतरती रही थी। अगले दिन संडे था, बिस्तर में दुबकी रही, मन भी दुबका रहा, सहमा सहमा, भीगा भीगा। कितने फोन कॉल्स, मैसेज, बीप बीप करके उपस्थिति दर्ज कराते रहे, वो जैसे वहां थी ही नहीं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है चंडीगढ़ के कुलचे। अब तक आपने सुना, अन्विता और शेखर बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन जब अन्विता ने शादी की बात करनी चाही तो शेखर ने दूरी बना ली। टूटे हुए दिल से कुछ ही दिनों में अन्विता ने देश छोड़ दिया। यूएसए में एक दिन उसकी मुलाकात प्रणव से हुई, जो स्वभाव से बहुत ही चंचल था। और एक दिन मजाक ही मजाक में उसने अन्विता के दर्द ये कह के कुरेद दिए कि दिल्ली तो कोई तभी छोड़ता है जब दिल टूटता है। अन्विता वहां से उठकर चली गई। अब आगे, अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही टेबल देखकर चौंक गई थी अन्विता। सफेद फूलों का एक गुच्छा और आई एम सॉरी लिखा एक कार्ड। उसने जैसे ही कार्ड हाथ में लिया, ठीक तभी सॉरी लिखने वाला उसके क्यूबिकल के पास आकर रुक गया। मुझे पता है मैं बोलने से पहले सोचता ही नहीं, ट्राई करूंगा कि ये आदत बदल पाऊं, आई एम सॉरी, बोलते हुए प्रणव ने अपने कान पकड़ लिए। खुद को रोकते रोकते भी हंस पड़ी थी अन्विता। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ था। थैंक्स का एक कार्ड प्रणव की टेबल पर अन्विता भी रखाई थी, जिसके बाद उसने फिर से छोले कुलचे खाने की जिद कर डाली। एक बार फिर वो दोनों वहीं बैठे थे और फिर से वही बात छेड़ दी थी। इस बार अन्विता ने उसे सब कुछ सिलसिलेवार बता दिया। बस ये सब हुआ और फिर ब्रेकअप के बाद दिल्ली छूट गई। अन्विता ने कहा, अब तुम ठीक हो? प्रणव ने बहुत भोलेपन से पूछा था। अन्विता ने एक गहरी लंबी सांस खींचकर कहा, हाँ अब ठीक हूं। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने सेंसिटिव हो सकते हो। और भी बहुत कुछ था जो अन्विता नहीं समझ पाई थी। वो वैसा नहीं था जैसा उसे लगता था। हंसी मजाक करता वो लड़का भीतर से कितना संजीदा था, ये वक्त बीतने के साथ अन्विता को पता चला। कितना ज्यादा ध्यान रखता था उसका, मानो वो कांच की बनी हुई हो। अक्सर पूछता था, तुम उदास तो नहीं हो ना? उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन प्रणव उसके घर आया और बोला, अन्विता घुमा फिरा कर बात करना मुझे नहीं आता, बस यही कहना चाहता हूँ कि आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, हमेशा। अन्विता उसका चेहरा ही देखती रह गई थी। उसने फिर कुछ परेशान होते हुए बोला, समझ जाओ ना, शादी के लिए कह रहा हूँ, अब ऐसे साइलेंट मत रहो, कुछ तो कहो। अन्विता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और ऐसे सुनहरे भविष्य को खोने का भी मन नहीं था। अन्विता कुछ तो बोलो यार, प्रणव ने फिर कहा। अन्विता बोली, प्रणव शेखर को मैं अभी भुला नहीं पाई हूं। किसी नए रिश्ते की आधी अधूरी शुरुआत नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा समय दो प्लीज। प्रणव उसके पास आया और बोला, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। इंडिया जा रही हो ना? अगर मैं बहुत याद आऊं तो वापस आकर हाँ बोल देना। उसकी इस समझदारी भरी बात से आंखें छलक आई थी उसकी। वो रास्ते भर उसी के बारे में सोचती रही थी। क्या पता था कि नया रिश्ता जुड़ने से पहले अतीत आकर इस तरह खींच ले जाएगा। भारत आकर शेखर की खबर मिली और वो सीधा अस्पताल पहुंच गई, जिसको उसने कभी इतना टूट कर चाहा था वो इस समय अस्पताल के आईसीयू में था। बस इतना सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे कि कोई तो आकर उससे कह दे कि शेखर अब खतरे से बाहर है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है चंडीगढ़ के कुलचे। अब तक आपने सुना, शेखर और अन्विता में गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब अन्विता ने शादी की बात करनी चाही तो शेखर ने उसकी तरफ पीठ कर ली। फिर अपने दुखों के साथ अन्विता देश छोड़कर चली गई। वहां उसकी मुलाकात प्रणव से हुई। कुछ ही दिनों में प्रणव ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन अन्विता अभी भी अतीत को भुला नहीं पाई थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ दिनों के लिए भारत आई थी, तभी पता चला कि शेखर अस्पताल में है। न जाने कौन सी डोर थी वो जो उसे खींचकर सीधा एयरपोर्ट से अस्पताल ले गई। अब आगे अन्विता वहीं अस्पताल के पास ही एक होटल में कमरा लेकर रहती रही और अस्पताल में जी जान से शेखर की सेवा करती रही, और कुछ ही दिनों में शेखर ठीक हो गया। एक दिन शेखर तकिया का सहारा लेकर बैठने लगा तो थोड़ा झुक गया। अन्विता ने तुरंत उसको संभाल लिया। शेखर ने उसकी आंखों में झांककर कहा, तुम्हारे बिना मैं संभल नहीं पाता हूँ। अन्विता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना पूछा, ठीक हो ना? शेखर कहीं दूर देखते हुए बोला, तुम इंडिया कब आ रही हो? मेरा मतलब हमेशा के लिए? कुछ और महीने लगेंगे क्या? क्यों? अन्विता ने पूछा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बोला, तुमसे शादी करनी है मुझे। अन्विता बोली, शेखर आपने कभी जानना नहीं चाहा कि आपके जाने के बाद मैं कैसे रही? नहीं, मैं दीदी से, मतलब तुम्हारी भाभी से पूछता रहता था, शेखर ने निश्चिंत होकर बोला। अन्विता ने बीच में ही टोक दिया, क्या पता चलता रहा आपको? शेखर बोला कि यही कि तुम दिल्ली छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद तुम अमेरिका चली गई थी किसी प्रोजेक्ट में, यही सब तुम्हारा हालचाल। अन्विता ने गहरी सांस खींचकर कहा, नहीं शेखर, हालचाल ये नहीं होता। आपके जाने के बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत दिन मैंने मेडिकल हेल्प ली, तब जाके मैं ठीक हो पाई। मैं बहुत दिनों तक बीमार रही हूँ और मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी इस तकलीफ से गुजरे हैं। शेखर एकदम हड़बड़ा गया, उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। मैं जानता हूँ अन्विता, मैं गलत था, लेकिन मेरा यकीन करो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम यहाँ मेरे लिए आई हो ना? अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भगवान नहीं है शेखर कि जब आप चाहेंगे बिगाड़ देंगे और जब आप चाहेंगे सब ठीक कर देंगे। कुछ मेरे हाथ में भी रहने दीजिए, आप अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए, अपना बिगड़ा हुआ मैं खुद ठीक कर लूंगी। इतना कहकर वो वहां से चल दी। एक बार पलटकर शेखर की तरफ देखा, उसका चेहरा उदास था, लेकिन अब वो अन्विता को विचलित नहीं कर पा रहा था। अस्पताल से होटल तक जाते हुए उसने घड़ी देखी, इस समय अमेरिका में रात होगी, तो क्या हुआ, जगा देती हूँ। उसने प्रणव को फोन मिला दिया। प्रणव ने हड़बड़ाकर वीडियो कॉल उठाई, क्या हुआ इतनी रात को, सब ठीक है, आर यू ओके? हाँ प्रणव, कुछ अर्जेंट बात थी। अन्विता अपनी हंसी रोक रही थी, वो चौंक कर बोला, जल्दी बोलो ना। अन्विता बोली, बस मैं यही सोच रही थी कि शादी के बाद हम चंडीगढ़ बस जाएं तो, वहां के छोले कुलचे बहुत अच्छे होते हैं, दिल्ली से भी ज्यादा अच्छे। इतना बोलते हुए वो खिलखिला के हंस उठी। प्रणव का चेहरा इस समय देखने लायक था, हैरानी से खुली हुई आंखें, लेकिन कोई रोशनी आकर उनको घेर चुकी थी। और अन्विता का चेहरा, वो तो इस समय खुद ही सच्चे प्यार की रोशनी से चमक रहा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी चंडीगढ़ के कुलचे। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। तो सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आज हम किसी एक गायक या संगीतकार की नहीं, खुद जिंदगी की कैसेट चलाने जा रहे हैं। वो कैसेट जो कभी रिवाइंड हो जाती है, कभी अटक जाती है और कभी बिना बताए खामोश हो जाती है। जी हाँ, आप शो सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज का ये जो सफरनामा है वो वाकई अनोखा होने वाला है। हम आज उस प्रकरण पर बात करने वाले हैं जो हमारी, आपकी, हम सभी की है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगानी। तो चलते हैं इस जिंदगी के सफरनामे पर और सुनाते हैं आपको वो सॉन्ग जो हर किसी के जिंदगी के प्यार का गीत है, यानी जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बेशक ये वो गीत है जो हम और आप गुनगुनाते हैं, चाहे मन हो या ना हो, कैसे भी हो। तो चलिए जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिर में जिंदगी को अगर गाना होगा तो कैसे गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इस गीत के पीछे का एहसास आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजी अनोखी। ये गीत उस दौर में आया जब लोगों को यकीन था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ साथ निभाना है। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों की नेटवर्किंग रेंज जो होती थी वो फुल रहती थी। यदि इस गाने को आदमी की जिंदगी से जोड़ें तो एक आम आदमी पहली नौकरी, पहली तनख्वाह और उसी तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी। उसे तब लगता था हाँ, जिंदगी सच में प्यार का गीत है। प्यार से शुरू हुई थी जो राह, अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जिंदगी। आइए चले उसी मोड़ की ओर इस गाने के माध्यम से।

श्रोताओं, अब आपकी अपनी आरजी अनोखी जिंदगी के उस सफर की बात करेगी जो प्यार के राह पे चलने के बाद में सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना है किशोर दा की आवाज में और इस गीत में मासूमियत थी। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा था। जिंदगी का किस्सा ट्रेन की जनरल बोगी, खिड़की से आती हवा और जेब में कम पैसे, फिर भी हम सभी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त सफर सुहाना था क्योंकि जिम्मेदारियां स्टेशन पर नहीं चढ़ी थी, प्यार को गले लगाया करती थी। आइए बढ़ते हैं इस और एक खूबसूरत से जिंदगानी वाले नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे।

खड़ी, इतनी गहराई, इतना एहसास, इतना दर्द, एक पैगाम और जिंदगी। इस गाने में बहुत कुछ समेटा गया है। हंसी मजाक में कही गई गहरी बात, लड्डू तब तक मीठा होता है जब तक वो टूट ना जाए, यानी उसके हर बूंद में मिठास तो होता है, पर बिखरने के बाद में क्या वही सेम स्वाद आपको मिलता है? सोचने की बात है ना, जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती, तो टूटने से पहले जिंदगी को क्यों ना समेट लें प्यार में, अपने पन में, अपने एहसासों के साथ, अपने एहसास इकट्ठा कर लें और बना लें अपनी इस जिंदगी को खुशहाल, खुशनुमा।

ये गीत उस एहसास का नाम है जब लोग साथ चलते चलते अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। स्कूल का दोस्त, कॉलेज की मोहब्बत, ऑफिस का यार, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, यानी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते मगर यादों में हमेशा सफर करते हैं। तो चले बढ़ते हैं जिंदगी के सफरनामे की ओर इस एक और नगमे के साथ।

मैं उड़ा जी हाँ, धुआं मतलब एक धुंध में खो जाना। जब फिक्र की बात हो तो उसको धुंध में छोड़ दीजिए, कहीं गुमसा हो जाए, अपने आप को एक नए सफर की ओर आगे बढ़ाइए। ये गीत हौसले की मिसाल है। दर्द आया गया पर जिंदगी रुकी नहीं, ईएमआई, बीमारियां, जिम्मेदारियां, फिर भी हर सुबह उठकर कहना खुद से कि चलो आज भी निभा लेते हैं जिंदगी को अपने तरीके से, अपने फन से।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, और मैं हूं आपके साथ में आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगानी पर, जिंदगी पर और इस जीवन पर। इसी में एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने आपके लिए चुना हुआ है, और ये गाना बेहद बेहद बेहद पसंद किया जाता है आज भी। वैसे आज के सारे नगमे एवरग्रीन हिट्स में से एक है, और जब बात होती है आपके लिए सॉन्ग सिलेक्शन करने की, तो ना जाने कहाँ से कितने सारे ख्यालात इकट्ठा तालमेल बिठाने को आतुर हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में, जिसके बोल हैं जिंदगी।

ये रुलाए, है ना। जिंदगी यही तो करती है, खेल सा करती है, हंसी ठिठोली सा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हमसे शिकवे गिले भी करती है। तो इस जिंदगी का साथ क्यों ही छोड़ना, अपने तरीके से इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो है जिंदगी का असली सफरनामा। इस गीत में सवाल है, जवाब नहीं है। कभी जो चाहिए वो नहीं मिलता, और जो मिल जाता है उसकी हम कीमत ही नहीं समझ पाते, लेकिन इस गाने की कीमत को हम समझेंगे। चलिए फिर सुनते हैं ना इस गाने।

श्रोताओं, अब ले चलेंगे आपको जिंदगी के एक और परिवेश की ओर, एक और दृश्य की ओर, एक और नगमे की ओर। नगमे के बोल हैं मैं

कभी कभी ऐसा फील होता है ना, हम सभी को होता है, हम सभी की जिंदगी में एक गहराई वाला दर्द आता है और वो दर्द हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। पर कोई कितना भी समझा ले, बुझा ले, पुचकार ले, समझते और संभलते हम तभी हैं जब हम अपने आप से मान लें कि बस अब हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भले ही ये पतंग कट गई है, इसका डोर इसके मांझे से अलग हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे उड़ान भरनी है और ऊंची, बस उड़ते जाना है और इस सफर का अंत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सॉन्ग हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग की तरह जिंदगी है, डोर किसी और के हाथ में है, कभी बॉस की डोर, कभी समाज की डोर और कभी अपनों की उम्मीदों की डोर, पर इसमें हम कहाँ हैं और हमारी डोर कहाँ है, सोचना पड़ेगा आपको। तो चलिए सोचते हैं फिर इस गाने के माध्यम से।

और अब आपके लिए वो नगमा जो आपको हर कदम एक उम्मीद से भर देता है। नगमे के बोल हैं,

बिल्कुल, खुशी भी आएगी और खुशी को हम एंजॉय भी करेंगे इसी नगमे के साथ में, जो है वो बदलता रहेगा। बेशक आज जो अपना है कल याद बनकर रह जाएगा, और यही तो रीत है, यही तो दस्तूर है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी है। आइए जीते हैं फिर इस जिंदगी को इस बेशुमार सीख वाले नगमे के साथ।

ये सफर चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत का और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। एक और नगमे की बात करना चाहती मैं आपसे, जो कि है जिन

ये गीत आईना दिखाता है, भागते भागते हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और अपने दिल को, अपने दिमाग को एक संतुलन में लाइए और उसके बाद फिर से हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी लाइफ में बाउंड्रीज के साथ साथ बैलेंस बनाने की भी कोशिश को लगातार जारी रखिए। फिलहाल ये गाना।

श्रोताओं, अब ले चलूंगी मैं आपको इस जिंदगी के एक और फेज की ओर। जब हम सोचते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है ना जिंदगी में कि

जी हाँ, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, पर बरखुदार यही तो जिंदगी है और यही तो जिंदगी का एक रोमांच है। चलिए फिर चलते हैं, इस गाने को आगे बढ़ने देते हैं

तो दोस्तों, ये सारे गीत दरअसल हम सबकी अधूरी आत्मकथा है। कभी मौका मिले तो इन गानों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी कोई नया गाना नहीं, एक भूला बिसरा गीत है जो सही वक्त पर चल जाए तो रूह तक बजने लगता है। अब दें आपकी अपनी आरजी अनोखी को इजाजत, बतौर तोहफा एक नगमा आपके लिए जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है ना, हर कदम पे, हर मोड़ पे हमेशा लेती है, पर जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इस इम्तिहान को पास कर लेता है, जिसको इस इम्तिहान को पास करने के गुर मालूम है, वो अपनी लाइफ में बखूबी कुछ अच्छा कर रहा है। और यही अंतिम सच है कि जिंदगी सवाल नहीं, जिंदगी जवाब भी नहीं, जिंदगी बस एक तजुर्बा है जो हम रोज नए इम्तिहान से लेते हैं। फिर मिलेगी आपकी आरजी अनोखी किसी नए सफरनामे के साथ, किसी और कहानी किस्से के साथ, किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब आखिर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।